ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए। अल्लाह।

अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

बिग गुड मॉर्निंग टू यू सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. मेरा नाम है हैबी और मैं आपके साथ रहूंगा 11 बजे तक. आई होप इस संडे के ब्यूटीफुल दिन की शुरुआत आप इंजॉय कर रहे हैं. अगर आप अभी अभी उठे हैं देन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. कुछ ब्यूटीफुल से गाने मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून विथ मी. आई विल बी राइट बैक एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन, दफन, फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303, ब्रेडफोर्ड 7230303।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 ब्रेडफोर्ड 7230
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
3: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274-491-442।
4: Here's what's happening across the region over the coming days. First in Bradford, Jim Moyer. Neo Fauna continues at Cartwright Hall, with wildlife-inspired artwork running through to August. Also in Bradford, Miss Saigon opens at the Alhambra Theatre from May 5th, bringing the major musical production to the city. Over in Calderdale, the Royal Photographic Society's Analogue 10 continues at Dean Clough in Halifax. Also at Dean Clough, Fur and Feathers continues through May. In Leeds, I, Daniel Blake, is at Leeds Playhouse, running through to 9th of May. In Manchester, Bank of Dave, the musical, is at the Lowry in Salford, running from 2nd to 16th of May. Over in East Lancashire, the Don Banks Afternoon Variety Show takes place at Darwin Library Theatre on 6th of May. And finally, in Milton Keynes, Al Murray, All You Need Is Gov, comes to Milton Keynes Theatre on 10th of May. And that's your Sunrise Radio event diary.

और लवली सॉन्ग, क्या गाना था यार। इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 FM एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज ऑल्सो डेडिकेटेड स्पेशली टू यू।

0: जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 3030।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
3: क्योंकि सोने बिछाई महंगाई में चांदी ले आई।
4: ओ नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274-491-442।

Welcome back after this beautiful and classic flashback only on Sonar Radio 103.2 FM. और मुझे लगता है कि जरूर कुछ पुरानी यादें ताजा हुई होंगी इस गाने के साथ साथ. Well, right now मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पर. After the news, तभी इन beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. तब तक enjoy कीजिएगा इन ब्यूटीफुल गानों को और एंजॉय कीजिएगा इस ब्यूटीफुल स्टार्ट संडे मॉर्निंग की. आई सी यू ऑन द अदर साइड. वंस अगेन वेलकम बैक इन द सेकंड आवर ऑफ दिस शो एंड वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर. सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. दिस इज एबी दिस साइड और आई होप कि आप एंजॉय कर रहे हैं इन गानों को. जी हाँ, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और कोशिश करूंगा कि अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूंगा और कुछ मीठी मीठी बातें भी हम करेंगे. The next song is right now specially dedicated to you.

मेरी पिस्तौल के अंदर किसी भी एक गोली पर कोई पैगाम लिखा है।

Once again, welcome back in the second hour of this show and welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This is Abby this side. और I hope कि आप enjoy कर रहे हैं इन गानों को. जी हाँ, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और कोशिश करूंगा कि अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूंगा और कुछ मीठी मीठी बातें भी हम करेंगे. The next song is right now specially dedicated to you.

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
2: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
1: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
3: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274-491-442।

सबको मेरा सलाम, सबको मेरा सलाम। दोस्तों ये है लाल परी, तो मैं भी हूँ गुलफाम।

अच्छा ये बात है, जब देखोगी ऐसे हमको पहचानोगी कैसे हमको। गुस्सा है ये मजबूरी का, सारा झगड़ा है दूरी का। प्यार की लज्जत तुम क्या जानो, एक दिन मेरा कहना मानो दिल। hey!

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: ओ नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274-491-442।
2: नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 Darfield Street ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।

वाह, व्हाट अ लवली सॉन्ग, क्या गाना था यार। इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 FM एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज ऑल्सो डेडिकेटेड स्पेशली टू यू।

Welcome back on for the classic flashback. Will you also rise? Radio 103.2 FM. What a beautiful classic song here. Well, right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news, और तब भी beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. Stay tuned till 11 o'clock.

welcome back after making our beautiful hit of the hour. So as you want a 3.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This is Abhi this side. 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और once again a big

बिग गुड मॉर्निंग टू यू और आशा करता हूँ कि इस दिन की आपकी शुरुआत काफ़ी अच्छी तरह से प्यारी तरह से जा रही है। इस आवर में भी काफ़ी सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आई बी राइट बैक एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
3: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
2: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274 559 565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
4: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

वेलकम बैक आफ्टर दिस अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग विलियम सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सनराइज रेडियो आप सुन सकते हैं मैनचेस्टर में भी डैब के द्वारा। सो अगर आप मैनचेस्टर में हैं तो आप डैब रेडियो ऑन कर सकते हैं और सुन सकते हैं। और हमारे ऐप के बारे में तो मैंने आपको बताया ही कि ऐप स्टोर नहीं तो गूगल प्ले पे जा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप एंड देन दुनिया के भी किसी भी कोने में आप हमें सुन सकते हैं। सो गो अहेड डाउनलोड द ऐप एंड ऑन दैट नोट द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रेडफोर्ड 723030।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: Looking for your dream home in Bradford?
5: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
4: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
5: Bellevue Residences.
4: Luxury, space and style.
5: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
6: Sunrise and Music.
7: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you? When you first

Welcome back after yet another beautiful classic flashback on your Sunrise Radio 103.2 FM. Right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news, और तभी इन beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. So I'll see you on the other side.

once again. Welcome back after the hit of the hour, only on Sunrise Radio 103.2 FM. And once again, a big good morning to you. मैं आशा करता हूँ कि इस दिन की शुरुआत आपकी काफी अच्छी तरह से जा रही है. इस शो के मेरे आखिरी आवर में आपका स्वागत है. जैसे मैंने कहा कि 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड ऑन सनराइज रेडियो 103.2 FM. काफी ब्यूटीफुल गाने आपके लिए हाजिर हैं इस आवर में भी. सो स्टे ट्यून्ड.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

व्हाट अ लवली सॉन्ग, क्या गाना था यार। इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज आल्सो डेडिकेटेड स्पेशली टू यू।

जय हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की। ई है

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे

वेलकम बैक टू द क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स टाइम टू गो। मेरी और आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले शो पर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, लव्ड वंस, बी प्रोडक्टिव, बी क्रिएटिव एंड टेक केयर।

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो के 103.2 FM स्टूडियो पर और www.sunriseradio.fm पर पूरी दुनिया के कोने कोने में सुनाई देती है। वेस्ट यॉर्कशायर में जनाब 103.2 FM के अलावा 100.6 FM पे आप सुन सकते हैं और डैब पे आप हमें सुन सकते हैं। ब्रेडफोर्ड में, लीड्स में, हैलीफैक्स में, मैनचेस्टर में, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्ले, डार्विन, नेल्सन, अक्रिंटन एंड मिल्टन कीन्स में आप सुन सकते हैं और बहुत जल्द आप पर डाबी में भी सुन पाएंगे। तो दोस्तों आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। तो दोस्तों मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 2 बजे तक। अब से लेकर 12 बजे तक आपकी डेडिकेशन होगी। 12 और 2 के दरमियान लाइव कॉल का सिलसिला होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो चलते हैं दोस्तों प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों, अभी आपने अरशद महमूद की प्यारी सी आवाज में हिट ऑफ द आवर सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही चलते हैं जनाब, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 11:17, यानी कि 17 minutes past 11। तो दोस्तों, कमर्शियल का टाइम हो गया है और कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा। अय्यूब चौहान साहब, इस गीत की आपने फरमाइश की है, गीत बड़ा प्रोग्राम में शामिल करता हूँ मैं, लेकिन आपने कहा आपका मूड कर रहा है ये गाना सुनने को, तो आप प्लीज़ मुझे ये गाना सुना दीजिए। तो जनाब, फिर डांटा आपने तो हमने कहा चलिए लगा देते हैं जनाब, आपकी पसंद का गीत आपके नाम करता हूँ, और फिर आपने कहा कि मेरे तमाम दोस्तों के नाम करना, तो जनाब आपके दोस्तों के नाम किया ये गीत, और उसके बाद अजरीना सबा शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके लिए भी गीत लगाऊंगा। उसके बाद वाजिद भाई हडर्सफील्ड से आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया आपका भी फ़ोन करने का, आपके नाम भी करूंगा। उसके बाद चौधरी मुजफ्फर साहब, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया जनाब फ़ोन करने का, आपके नाम भी करूंगा जनाब, इस उम्मीद के साथ कि आपको भी अच्छा लगेगा। अय्यूब चौहान साहब की पसंद पे ये गीत है जनाब, हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। तो जनाब, हमारी जानिब से भी तमाम सुनने वालों के नाम, अमजद अकीम भट्टी साहब आपके नाम भी, और महबूब अलाई साहब आपके नाम भी, और दीगर जो दोस्त हैं उनके नाम भी करेंगे, स्पेशली जनाब हीरा साहब हैं, तारिक जुल्फी साहब हैं, उनके नाम भी करेंगे। बड़ा प्यारा गीत है आप प्यारे दोस्तों के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद अय्यूब चौहान साहब की पसंद पे गीत, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज़ रेडियो के संग।

0: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
1: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
0: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274 559565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
4: Looking for your dream home in Bradford?
5: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
4: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
5: Bellevue Residences.
4: Luxury, space and style.
5: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। अय्यूब चौहान साहब, आपकी पसंद पे हमने ये गीत पेश किया। और बानो जी, फोन करने का शुक्रिया। माफी चाहते हैं, मैं आपकी कॉल नहीं ले पाया हूं, और अगर आप करेंगी फोन तो मैं आपकी कॉल ले पाऊंगा। तो आपके नाम करेंगे कमर्शियल के बाद जो गीत होगा, और उसके बाद इसी गीत को नजर करना चाहूंगा जनाब। हमें पाकिस्तान से जनाब फोन किया फारूक टेलर साहब। आपने कहा कि आप अपने तमाम दोस्तों को सलाम आज करते हैं, जिनमें तारिक भट्ट, तारिक जुल्फी साहब, चौधरी मुजफ्फर साहब, अय्यूब चौहान साहब और वाजिद भाई, उनके लिए गीत सुनना चाहते हैं। और लाला फारूक इस्लामगढ़ वाले जो हैं, उनके लिए आप जनाब गीत सुनना चाहते हैं जनाब। तो यानी कि फारूक साहब की जन्म से आप तमाम दोस्तों के नाम, कमर्शियल के बाद जो गीत होगा साइमा जी आपके नाम होगा, तो थोड़ा मस्ती भरा गीत है, आप दोस्तों के नाम करूंगा। और इसके साथ साथ जनाब दीगर तमाम दोस्तों के नाम भी करूंगा जो इस वक्त सन्ना रेडियो की नशियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा आप सभी दोस्तों के नाम। तो चलिए एंजॉय कीजिएगा कमर्शियल को भी, और उसके बाद गीत को भी। उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग। तो चलते हैं, सुनते हैं।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303, दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
3: Looking for your dream home in Bradford?
4: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
3: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
4: Bellevue Residences.
3: Luxury, space and style.
4: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

जी दोस्तों, अभी आपने कुमार सानू और आशा भोसले की प्यारी सी आवाजों में प्यारा सा गीत सुना। अब अगले गीत की जानिब चलते हैं। दिनेश भाई, बहुत शुक्रिया फोन करने का। दिनेश भाई, आने वाला गीत आपके नाम करूंगा। आप पुराने गीत पसंद करते हैं, लेकिन ये भी प्यारा गीत है, आप ज़रूर इसे पसंद करेंगे। और अभी इस गीत के बाद फिर पुराने गीत की बारी आएगी जनाब, तो उसके साथ भी आपका नाम ज़रूर जोड़ेंगे। तो इसी गीत को नज़र करना चाहेंगे चौधरी मुजफ्फर साहब आपकी, आप सुनना चाहते हैं आयूब चौहान साहब के लिए और फारूक टेलर साहब के लिए, और जनाब उसके बाद आप सुनना चाहते हैं जनाब चौधरी फरियाद साहब के लिए, तो उनके नाम भी गीत करेंगे। और उसके बाद जनाब इसी गीत को नज़र करना चाहूँगा मूना जी आपकी, और यही गीत सभी सुनने वालों के नाम करूँगा। बानो जी शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम एक और प्यारा सा बाद में गीत प्ले करते हैं। और इसी गीत को करना चाहूँगा। अब दो गीत हैं मेरी नज़र में, एक ड्यूट सॉन्ग है, एक अकेले गया हुआ है। अब देखता हूँ मैं प्रेस किस बटन को करता हूँ। तो जनाब चलिए ये गाना कुमार सानू का चला देते हैं जनाब।

0: जी दोस्तों, अभी आपने कमाल सानू की मत भरी आवाज में दोस्तों प्यारा सा गीत सुना, और चलते हैं इसके साथ ही टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 11:44, यानी कि 11:44। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे एक सदाबहार पुराना गीत, और वो नजर करेंगे दिनेश भाई आपकी, वाजिद भाई आपकी, बानो जी आपकी, और इसी गीत को जनाब चौधरी मुजफ्फर साहब, भाई रुखसार अहमद साहब, और जनाब ताजी जुल्फी साहब, हीरा साहब, अमजद हकीम भट्टी साहब, और सफीउल्लाह भाई और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे। और इस वक्त बाबर शाह पे तीन शहजादे काम कर रहे हैं, बशारत अली, सिकंदर अली, आरिफ अली, उनके नाम भी, और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। सदा भार पुराना गीत आप सभी सुनने वालों के नाम। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जाने बढ़ेंगे, और उसके बाद ही आप गीत सुनेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और याद रखिए जनाब, हमारे जो डेडिकेशन का सिलसिला है वो है 12 बजे तक, उसके बाद लाइव कॉल का सिलसिला होगा जनाब, जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो चलते हैं जनाब अब कमर्शियल की जानिब, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। 24
2: hours a day, अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
3: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन, दफन, फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 Darfield Street ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
5: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
6: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
5: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
7: Sunrise Radio. The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274-488-9 9-3-5.

जी दोस्तों, अभी आप दोस्तों ने तारिक जुल्फी साहब आपने फोन किया, ये गीत आपके नाम, आपकी जन्म से हीरा साहब और जनाब सभी आपके दोस्तों के नाम, और भाई रुखसार अहमद साहब आपने भी फोन किया, शुक्रिया आपका फोन करने का। आपके नाम भी करते हैं, हीरा खान साहब फोन करने का शुक्रिया। और इसी गीत को अमरीन साहब आपके नाम भी करेंगे और शाहीन भैना आपके नाम भी।

0: साथियों, ये आपका अपना सनलाइट रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। और दोस्तों, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप साथियों ने पसंद किया होगा। और अब से लेकर प्रोग्राम के आखिर तक, यानी के 2 बजे तक, आप सिर्फ और सिर्फ लाइव कॉल्स में शामिल हो सकेंगे। अगर आप अपनी पसंद की शायरी सबके साथ शेयर करना चाहते हैं या फिर कोई प्यारा सा गीत गुनगुनाना चाहते हैं, अपनी आवाज का जादू जगाना चाहते हैं, तो जरूर आइएगा। आपके लिए लाइनें खुली होंगी। नंबर होगा 01274306666। और याद रखिए, कोई डेडिकेशन नहीं होगी आप थ्रू आउट 2 घंटे जनाब। तो इसलिए जो दोस्त शायरी का शौक रखते हों, गीत गुनगुनाने का शौक रखते हों, जरूर आइएगा। आपके लिए लाइनें खुली हैं, आपका इंतजार रहेगा। इस वक्त हमारे साथ 2 प्यारी सी शख्सियात जुड़ी हुई हैं। हिट ऑफ द आवर के बाद उनसे मिलेंगे, जनाब मैनचेस्टर से आयुब चौहान साहब और ब्रेडफोर्ड से एम खान साहब। तो चलेंगे, सुनेंगे हिट ऑफ द आवर। और हिट ऑफ द आवर का गीत मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं।
1: सनराइज रेडियो hit after hit, the hits of today and the hits of tomorrow. A Sunrise Radio hit of the hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना कमार सानू और साधन सरगम की आवाजों में। इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हाँ दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 12:13 यानी के 12:13। तो चलते हैं जनाब अब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद जैसा कि मैंने कहा हमारे साथ जुड़े हुए अयूब चौहान साहब और एम खान साहब, उन्हें सुनेंगे।

0: buying or selling a property. Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
1: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
0: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274 559 565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
4: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दैट्स ब्रैडफोर्ड 7230303

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों जैसा कि कहा कि अब से लेकर ठीक जनाब 2 बजे तक लाइव कॉल का सिलसिला होगा, जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। और जैसा कि मैंने ये भी कहा शुरू से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब अयूब चौहान साहब और एम खान साहब। तो चलते हैं जनाब तालियों की गूंज में मैनचेस्टर, जहाँ अयूब चौहान साहब इस लाइन पे मौजूद हैं। अयूब चौहान साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: वालेकुम सलाम अमर शहजाद भाई, आप ठीक हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, आप सुनाएं।
1: मैं भी ठीक ठाक हूँ, बस आपका जैसे भी 11 बजते हैं बजते हैं, मेरे कानों में टलियां बजने लगती हैं कि अब अमर शहजाद आ गया प्रोग्राम करने के लिए।
0: आए,
1: तो जल्दी जल्दी उससे फोन करो,
0: करो और
1: तो
0: फरमाइश करो,
1: फरमाइश भी करो भाई। फरमाइश तो खैर आप बैठे इसलिए ना, फरमाइश
0: वो तो है ना, उसमें
1: तो आप खुद कहते हैं ना, अगर आप कहेंगे फरमाइश ना करो तो मैं नहीं करूंगा।
0: नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा आप जल्दी में फिर करते हैं कि चलिए फरमाइश कर देते हैं।
1: मैं तो सलाम दुआ के लिए आता हूँ, पर जब आ जाता हूँ तो फिर फरमाइश भी तो करनी पड़ती है ना।
0: फरमाइश तो पहले होती है,
1: खाली हाथ नहीं जाना चाहिए ना।
0: सही है, सही सही, फायदा उठाना चाहिए,
1: फायदा उठाना चाहिए। नहीं मैं खैर अपने दोस्तों से इतने फायदे नहीं उठाता, मैं खुद उनको कहता हूँ आप मुझसे फायदा उठा लिया करें।
0: वो ना आप किसी के काम आए ना कोई फायदा उठाए, बस जबानी जबानी कह दिया फिर गायब हो गया।
1: नहीं नहीं, वो एक चीज का मैं सबसे पहले ही कह देता हूँ, जहां तक पैसों का तलक है उससे फायदा
0: नहीं, नहीं पैसों की बात नहीं, वही गायब जाते हैं ना। हो ही गायब जाते हैं।
1: तो एक साहब थे ना, वो उनको कोई पैसा मांग ले ना तो वो कहते थे भाई 2 वीक ठहरो मैं आपको कुछ दे दूंगा।
0: सही सही, 2 हफ्ते ठहरो,
1: 2 वीक के सोर्स को मिलते हैं ना भाई, कुछ कहते हैं भाई दो इतने अरसे में तुम्हें किसी ने तोहफा ही दिया।
0: सही है सही है सही, इसलिए सही है सही।
1: तो ऐसा होता है ना इस दुनिया में, बस ऐसे बड़ी बड़ी अजीब सी चीजें यकीन जाना होती है।
0: सही है सही,
1: बेशुमार में देखता रहता हूँ यूट्यूब पर क्या क्या इंसान करते रहते हैं, पर
0: वैसे आजकल तो वैसे ही देखने में मिल जाता है।
1: हाँ वो बहुत सी चीजें मिल जाती हैं
0: वैसे।
1: मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें बहुत सी चीजों को बचा के रखे और दूसरों को भी बचा के रखे, बहुत सी।
0: आमीन, आमीन, आमीन, आमीन।
1: तो मैं शायरी शुरू कर देता हूँ।
0: जी जरूर जरूर जरूर।
1: बात क्या सीधे कहाँ चला गया, मैं पता नहीं
0: आप कहाँ चले जाते हैं, यही तो है, आप यही मैं तो कह रहा था आप गायब हो जाते हैं कहीं
1: जी। अच्छा इस तरह
0: जी,
1: कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर होगी जमाने को,
0: होए होए।
1: दुआ बाहर की मांगी इतने फूल खिले, जगह ना रही मेरे आशियाने को,
0: वाह वाह।
1: मेरी लहद पे पतंगों का खून होता है, हुजूर शमा ना लाया करे जलाने को,
0: वाह वाह क्या बात।
1: सुना है गैर की महफिल में तुम ना जाओगे, कहो तो आज सजा लूं गरीब खाने को,
0: क्या बात।
1: दबा के कब्र में सब चल दिए दुआ ना सलाम, जरा सी देर में क्या होगी जमाने को,
0: क्या बात है क्या बात है।
1: अब आगे इसमें तुम्हारा भी नाम आएगा, जो हुक्म हो तो यही छोड़ दूं फसाने को,
0: वाह वाह क्या बात है।
1: कमर जरा भी नहीं तुमको रसवाई, चले हो चांदनी शब में उसे बुलाने को,
0: क्या बात है।
1: तो ये तो शायरी थी, तो लतीफे की तरफ जाते हैं।
0: क्या बात है, लतीफे तो पहले होने चाहिए ना जनाब।
1: क्या आप लतीफे सुनाते हैं?
0: जी जरूर।
1: सुबह की अखबार में शराब की बहुत सी बुराइयां लिखी हुई थी, बीवी अपने करोड़पति शोर को पढ़कर सुना रही थी, शराब पीने में क्या नुकसान होता है। शोर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला ठीक है कल से बंद कर देता हूँ। बहुत खुशी के शोर की दिमाग में काम की बात आ गई। तो दूसरे दिन जब सुबह आई तो उसे मालूम हुआ कि शोर की शराब नहीं बल्कि अखबार बंद हो गई।
0: अखबार बंद करवा दी,
1: अखबार बंद कर, समझ आ गई
0: ना अखबार पढ़े कोई, ना टोके ना कुछ हो।
1: एक दौलतमंद खौतीन ने पार्टी से वापस आकर अपनी नई मुलाजमा से पूछा, फ्रिज साफ किया है कि नहीं? बेगम साहिबा सब साफ कर दिया, खास कर अंगूर और आम बहुत ही मजेदार थे।
0: अच्छा सही।
1: एक और है, बीवी खामन से, आप जरा भी रोमांटिक नहीं हैं। फौजिया का शोर उसे चांद और मेरी क्या कशां करके पकाता है। खामन ने जवाब दिया, वो हमारे फलकात है और तुम जानती हो कि मैं सिर्फ अवानों का डॉक्टर हूँ।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो ठीक है जी, इंशाल्लाह।
0: बहुत शुक्रिया।
1: फियाज साहब का मोहब्बत बड़ा सलाम।
0: सही।
1: चौधरी मुजफ्फर साहब का मोहब्बत बड़ा सलाम। और भी जितनी आपकी सनराइज फैमिली है सबको मेरी तरफ से मोहब्बत बड़ा सलाम, और आम खान साहब को भी जो पीछे लाइन पर लगे हुए हैं।
0: जी जी।
1: तो इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो फिर किसी न किसी
0: देखो इंशाल्लाह लंच देखो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये थे जनाब अपने एम खान साहब और माजे चाहते हैं अयूब चौहान साहब, और हमारे साथ जुड़ गए हैं जनाब नदीम मंसूर साहब भी। तो तालियों की गूंज में चलते हैं एम खान साहब की जानिब से, जानिब चलते हैं जनाब एम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तो अगर से आपको रेडियो सनराइज जितने सुनने वाले हैं अल्लाह सबको सलामती अता करूँ।
0: आमीन आमीन।
2: ये कदे कभी ऐसे आप कभी ये सिस्टम ठीक हो जाए, हम एक दूसरे को सुन लिया करें।
0: कोशिश तो कर रहे हैं, कहा हुआ है, लेकिन आप क्या करें कि हमारे बस में नहीं है ना, हमने आगे पहुँचानी होती है बात, वो पहुँचा दी हुई है।
2: अल्लाह आपकी जुबान में वो तासीर पैदा करे, लोगों के दिल मोम हो जाए। अल्लामा इकबाल का मैं कलाम पेश कर रहा हूँ। इकबाल इरशाद फरमाते हैं, फतवा है शेख का, ये जमाना कदम का है, दुनिया में अब रही नहीं तलवार घर, लेकिन जनाबे शाह को मालूम क्या नहीं,
0: क्या बात,
2: मस्जिद में अब ये वाइज है बेसूदो बे असर।
0: वाह वाह, क्या बात है, क्या बात
2: है। एगो तफंग दस्ते मुसलमान में है कहाँ।
0: वाह वाह वाह, क्या बात।
2: वो भी तो दिल है मौत की लज्जत से बेखबर।
0: वाह।
2: आगे मियाँ साहब का एक अपना मुकाम है, मियाँ साहब ने
0: जी जी
2: आशरे की जो बीमारियां हैं
0: जी जी
2: दूसरे से नफरत की और एक दूसरे की उसकी वो कहानी बयान करते हैं। ये हकी कर रोटी होवे दुख दूजे नू लगे, हर तोमन बदनामी करके चुगली मारन वगे।
0: वाह।
2: वीरां पैना ते परजाइयां सबना दी गल पाई, हो दसाला सारी वर्ती जिस जाई।
0: वाह वाह।
2: आगे बड़ा कीमती हर लफ्ज आपका कीमती है, फरमाते पराया पर्दा जाहिर करना, पराया पर्दा जाहिर करना नहीं कम फकीरा।
0: वाह।
2: गड़ी मोहब्बत रब मोहम्मद।
0: वाह वाह वाह।
2: वीराना पावन वाले।
0: वाह।
2: हिको जी ना करे इलाही।
0: वाह बहुत खूब।
2: ਹੁਣ ਵੀ ਬਲੇ ਬਲੇਰੇ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿੱਸਾ ਟੋਰ ਅਗੇਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਕੀ ਬਜਾਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਇਤਨਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਰ ਆ ਜਾ
0: بہت شکریہ سر بہت مہربانی آپ آئے پروگرام میں شمولیت کی اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ سر یہ تھے جناب ایم خان صاحب بیرفورڈ سے اور ان کو آپ نے سنا علامہ اقبال کی شاعری اور ہمیشہ علامہ اقبال کی شاعری کرتے ہیں اور ساتھ میں میاں محمد بخش صاحب کا جو ہے وہ کلام پیش کرتے ہیں تو یقیناً آپ سبھی محظوظ ہوئے ہوں گے بہت شکریہ ایم خان صاحب آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے دعا میں یاد رکھیے اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ندیم منصور صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں لیکن کیا ہے کہ کمرشل کا ٹائم جو ہے وہ ہو چکا ہے تو بہتر ہے کہ ہم کمرشل کی جانب بڑھیں اور چھوٹی سی کمرشل ہے جناب یوں گئے اور یوں واپس آئے سنتے رہیے گا

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास, ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
3: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं नदीम मंसूर साहब और साथ में अब जुड़ गए हैं जावेद मीर भाई भी। तो चलते हैं जनाब तालियों की गूंज में, खुश आमदीद, वेलकम, जी एनु सत बिस्मिल्लाह कहेंगे जनाब नदीम मंसूर साहब को। नदीम मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
4: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जनाब।
3: कैसे हैं जनाब?
4: बस अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं?
3: दुआ चाहिए भाइयों की, दुआ चाहिए, अल्लाह का बहुत करम है। और आप भाइयों को जनाब जब सुनता हूँ तो फिर दिल का बागीचा जो है वो ऐसे खिलता है कि जिस तरफ भी निगाह जाती है फूल ही फूल खिले होते हैं जनाब आप। और उसके बाद आज तो बड़ी अच्छी बात हुई कि हमारे साथ दो मेरे फेवरेट जो बंदे हैं वो दोनों इकट्ठे जनाब अब यके बाद दीगरे हमें कोई सुनाएंगे। आपके बाद जावेद मीर भाई हैं तो जी जी, तो आज आपकी छुट्टी है, छुट्टी का दिन है, घर जो है मौसम तो अब ठीक ही होता जा रहा है, बारिश तो मेरे ख्याल में थोड़ी देर के बाद रुक ही जाएगी। जी
4: चलिए, आज एक है गीत है या टप्पे है नदी के बारे में है।
3: अच्छा जी,
4: कि नदी दे उस पारे माया माड़ा रहंदा।
3: वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है।
4: ये आपकी नजर सबकी नजर।
3: थैंक यू सर, थैंक यू।
4: अभी कमर्शियल का टाइम तो नहीं है?
3: नहीं नहीं, कमर्शियल में ले चुका हूँ पहले। जी जी
4: चलें, ठीक है। नदी दे उस पारे माया माड़ा रेंदा, नदी दे उस पारे माया माड़ा रेंदा, झुल समय माये नाल

उस पर माया मेरा क्रिकेट खेडे, उस पर माया मेरा क्रिकेट खेडे, सोने हथा विच सोना लगे बैठे, सोने हथा विच

यार कोई मैनू ना रोके, नदी दे उस पारे छल्ला माड़ा घूमिया, नदी दे उस पारे

0: हाय हाय हाय हाय कोई मैनू ना रोके माया मेरा नदियों पार क्या बात है क्या बात है ओए होए होए होए होए होए नवीं चीजां इस तरह सुनदे हां ते बड़ा मजा आंदा जनाब नवी चीज तुसी सानू भी सुनाई है बड़ा लुत्फ आया जनाब
1: सुनया ना मैं इहदा बड़ा जबरदस्त है
0: जबरदस्त इस तरह दी नवीं चीजां हुंदियां ने जनाब ते बड़ा दिल चांदा है कि सुनिए ते तुसी जनाब अपना ख्याल रखियो ते पता नहीं किनू प्रॉब्लम पै जांदी है असली च मैं भूल जांदा पर अपना फोन स्विच ऑफ करना ते फिर कोई बंदे नू पता भी हुंदा है लेकिन चलिए कोई गल नहीं बजन दियो अस देख लवांगे पता नहीं किधर है कोई वैसे जाहिर है कोई रेडियो सुन नहीं रहा इस वास्ते बजा रहा है ते बहुत शुक्रिया नदीम मंसूर साहब कोशिश करियो जनाब अगले आवर विच ही अगर टाइम मिले तो जरूर ते बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी अल्लाह आपको सलामत रखे बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया ये थे नदीम मंसूर साहब और एक तो इनकी आवाज बहुत प्यारी है ऊपर से जनाब ये क्या कहने इनके क्या कहने जनाब ऊपर ऐसी कुछ चीजें लेकर आते हैं कि अब क्या बताएं आपको क्या सुनाएं और अब जनाब जैसा कि मैंने कहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जावेद मीर भाई भी और जावेद मीर साहब जो हैं उनको भी तालियों की गूंज में खुश आमदीद कहेंगे वेलकम कहेंगे जी अनु कहेंगे सत बिस्मिल्लाह कहेंगे ढेर सारी तालियां जनाब जावेद मीर भाई के लिए जावेद मीर भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
0: कैसे हैं जनाब
2: अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई ठीक हैं
0: हमेशा अल्लाह आपको ठीक रखे सलामत रखे हंसते मुस्कुराते रखे किसी का मोहताज ना करे जनाब आपके लिए हमेशा दुआ निकलती है
2: शुक्रिया जनाब बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी
2: तो मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को
0: जी जी
2: सुनने वालों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम जिनमें आम शहजाद साहब हैं गुलसफीना साहब हैं ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब मेरा आवाज वापस आ रहा है
0: वापस आ रहा है
2: हाँ जी
0: आई डोंट नो यहाँ तो हो सकता है कभी कभी हो जाता है
2: अच्छा जी
0: हाँ
2: ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब तो किशा तारिक भट्ट आसिफ रियासत शकील साहब अमजद कीम भट्टी हैं महबूब इलाही हैं
0: जी जी
2: शहजाद सलीम भाई हैं क्यूम परवेज ताहिर मगवल सफीउल्लाह खालिद भट्टी
0: जी जी
2: शरुद्दीन है
0: जी जी
2: और तारिक दुल्फी हैं चौधरी फरियाद हैं
0: जी जी
2: महमूद हैं
0: जी जी
2: अमीदा साहिबा हैं सादिया बहन हैं
0: जी जी
2: रजाला साहिबा हैं चौधरी मुजफ्फर साहब और रतीका साहिब हैं और अंसर महमूद शमामूरी हैं
0: जी जी
2: मेहरबान हैं और चौधरी तारक हैं आजी अयूब रफूर शकील साहब
0: जी जी
2: तमाम दोस्तों को सुनने वालों को बहुत बहुत
0: जी जी
3: घोड़ा पेशौरी मेरा

वाला, मैं हूं अलबेला टांगे वाला। आहा, घोड़ा पेशावरी मेरा, टांगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला। मैं हूं अलबेला टांगे वाला, मैं हूं अलबेला टांगे वाला। टांगे थकेंगी यारो, टांगे में आओ, ओ बैठो बादशाह, किसे चले।

काला, गुलाबी रंग काला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, घोड़ा पेशौरी मेरा, टांगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, बचना हो जाने वाले मैं तुझ पे वारी। ओ बहन जी जरा बच के, हाँ

हमारी, रोता फिरेगा घर वाला, फिरेगा घर वाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, घोड़ा पेशौरी मेरा, टांगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, मेहनत मजदूरी करूं झुकना ना जानूं, और यार जी जरा रास्ता छट के, हाँ मेहनत मजदूरी करूं झुकना ना जानूं, आंधी तूफान में भी रुकना ना जानूं,

0: मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, घोड़ा पेशावरी मेरा, टांगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला। मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला। ये मेरे भाई
1: क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। बड़ा पुराना गीत आपने सुनाया जनाब, बड़ा अच्छा लगा। ये गीत आजकल सुनने को मिलते नहीं है, यादें मन के रह गए हैं।
0: प्यार फिल्म है, प्यार का बंधन
1: जी, बड़ी बड़ा प्यारा है।
0: पुरानी फिल्म थी।
1: मेरे ख्याल में इस फिल्म पे हीरो कौन है, गा कौन रहा होता है इस गाने को?
0: अपना क्या नाम है,
1: लावदीन है? नहीं,
0: वो जो होते हैं ना, उसमें बड़ी बेहतरीन उर्दू बोलते हैं जो,
1: संतोष कुमार हैं।
0: नो नो नो नो नो,
1: अच्छा,
0: राजकुमार समथिंग,
1: अच्छा पर ये तो राजकुमार तो इंडिया के फिल्मों में आ रही है, तो पाकिस्तानी गाना था। ओ नहीं,
0: नहीं,
1: रफी साहब का, रफी साहब का गाना है। यस,
0: रफी साहब
1: मोहम्मद
0: का
1: रफी,
0: गाना
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल, आज समझ गया, राजकुमार।
0: राजकुमार
1: जी जी
0: गाना।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।
0: बहुत सारी वो उर्दू बड़ी अच्छी
1: हाँ,
0: बोलते हैं
1: बहुत अच्छी,
0: लोग।
1: बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। अल्लाह आपको सलामत रखे।
0: ओके जी,
1: बहुत शुक्रिया सर,
0: ओके जी,
1: बहुत
0: अल्लाह
1: शुक्रिया।
0: हाफिज।
1: ये थे प्यारे से भाई जनाब जावेद मीर भाई, अल्लाह इनको सलामत रखे। ढेर सारी तालियां इनके लिए। और दिनेश भाई, आप किधर आ गए जनाब?
2: आएगा अभी, अभी अभी आएगा बच्चे जी।
1: जी जी
2: अब सुनाएगा आपको भी अभी
1: जी।
2: आप भजन से अच्छा, तो भजन कोई अच्छा सा,
1: मैं
2: अच्छा कवाली, कवाली कवाली मेरे पर है, अभी आएगा ऊपर, लेट यू नो
1: क्या आएगा।
2: मैं अब शेर बज शेर शेर का तो अच्छा सा कुछ भजन जा अच्छा सा
1: मैं लगाऊं
2: अभी, हाँ लाइफ में आएगा अभी मैं
1: जी,
2: अभी आएगा मैं सुनाएगा अच्छा गजल गजल गजल
1: आप सुनाएगा।
2: हाँ
1: तो सुनाओ ना भाई, सुनाओ।
2: अच्छा अभी
1: हाँ, हाँ सुना दे सुना दे सुना दे।
2: अच्छा
1: हाँ हाँ सुनाए
2: आपके भैया
1: जी जी दिनेश भाई।
2: ओके। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
1: होए होए
2: चली जा

बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बूढ़े पा होगा असर धीरे धीरे।

तेरे हाथ पांवों में पलना रहेगा, तेरे हाथ पांवों में पलना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे,

0: थैंक यू सनराइज, थैंक यू।
1: वाह वाह दिनेश भाई, क्या बात है, क्या बात है दिनेश भाई, आप हमारे प्रोग्रामों में आते हैं, फोन करते हैं और हाल वाल पूछते हैं। ये कभी नहीं कहते कि मेरे ये गाना सुनाओ, लेकिन सिर्फ इतना ही कहते होते हैं अच्छा सा गाना लगा दो, लेकिन ये नहीं पता था आप इतना अच्छा गा सकते हैं। वाह वाह कमाल हो गई दिनेश अच्छा। भाई मैं तो हैरान हो गया आपको सुन के।
0: अच्छा
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दिनेश भाई, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दिनेश भाई, ढेर सारी तालियां दिनेश भाई के लिए। ओके दिनेश भाई बहुत अच्छा गीत गाया ये, हमें बड़े सालों से दिनेश भाई हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं और बड़े प्यार से खलूस से मोहब्बत से मेरे प्रोग्राम में बहुत शामिल होते हैं और सिर्फ हाल वाल पूछते हैं और दो बातें करते हैं मेरे साथ, बड़ा पुराना साथ है मेरा इनका, लेकिन ये कभी नहीं पता था ये गा भी सकते हैं। आज बहुत अच्छा लगा इन्हें सुन के। तो दोस्तों इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक करते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:46 यानी कि 46 minutes past 12 और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जनाब नजीब साहब पाकिस्तान कश्मीर छप्पर से, जिनका ताल्लुक है BD3 में होते हैं, वो जनाब बहुत अच्छा गाते हैं, वो भी ख़ासकर सैफ मलुक बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन आज उन्होंने पढ़ना था लेकिन तबीयत कुछ ठीक नहीं उनकी, तो चलिए जनाब आपको भी सुनेंगे नजीब भाई, आपको भी ज़रूर सुनेंगे नजीब साहब और ज़रूर सुनेंगे, आप सेहतयाब हो जाइएगा और फिर जब वॉक करने आएंगे तो जनाब हमारे साथ वॉक भी करते हैं ये, तो इस वक्त खाली सुन ही रहे हैं गा नहीं रहे हैं, तो चलिए सुनना भी बहुत अच्छी बात है, प्रोग्राम को शमूलियत करना अच्छी बात है। तो जनाब अब वक्त जो है वो हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है, कमर्शियल के बाद दोस्तों मिलते हैं, सुनते रहिएगा है।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। और दोस्तों, प्रोग्राम के दूसरे नहीं बल्कि तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे और इस आवर में भी आपके लिए लाइव कॉल का सिलसिला होगा, जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का गीत जो है, सभी सुनने वालों के नाम करूंगा, प्यारा सा गीत है, प्यारी शायरी है और उम्मीद रखूंगा सभी इस गीत को एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा।
1: In association with National Property Lawyers, one trusted team for your property and

0: जी दोस्तों, अभी आपने कमार सानू की मत भरी आवाज में हिट ऑफ द आवर सुना। यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और इसके साथ ही चलते हैं जनाब, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं कि 1:11 यानी कि 11 मिनट्स पास्ट 1, और जनाब 2 बजे तक मेरा और आपका साथ है। और मिले जुले गीत नहीं होंगे बल्कि लाइव कॉल का सिलसिला है, जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं नदीम मंसूर साहब और रुखसार भाई, आपने भी फ़ोन किया फिर चले भी गए। तो जनाब आप दोस्तों को सुनते हैं, क्योंकि छोटी सी कमर्शियल आ गई है, तो चलते हैं कमर्शियल सुन लेते हैं, उसके बाद फिर लौटते हैं जनाब, लाइव कॉल्स की जाने पड़ेंगे।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
5: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
4: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
6: Looking for your dream home in Bradford?
7: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
6: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
7: Bellevue Residences.
6: Luxury, space and style.
7: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
8: Sunrise Radio, Sunrise.
0: जी दोस्तों, सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों लाइव कॉल्स का सिलसिला है, जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी कर सकते हैं या फिर अपनी पसंद का कोई गीत जो है वो गुनगुना सकते हैं। तो हमारे साथ, जैसा कि मैंने कहा था, जुड़े हुए जनाब नदीम मंसूर साहब, और जुड़ गए हमारे साथ जावेद मीर भाई भी, और चौधरी रुखसार अहमद की कॉल थी जो मैं उठा नहीं पाया, जब मैं उठाने लगा तो वो चले गए। तो चलते हैं अब तालियों की गूंज में नदीम मंसूर साहब को एक बार फिर खुश आमदीद, वेलकम, जी अनु कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वंस अगेन मेरे भाई। जी सजनो, मखना मलाई देओ पेड़ियो, ए पिछला आवर जड़ा सी उदे ही तुसी जनाब कमाल तो भी कमाल कीती है, ते हुण पता नहीं की तुसी लै के आए हो, ए भी हुण देखदे आ हुण केड़ी कमाल हुंदी है।
9: ओ ते हम सी के नदी तो पार जाइए।
0: अच्छा, ए नदी पार पहुंच गए हो?
9: ते नदी दे पार पहुंच गए ना।
0: अच्छा,
9: फिर मैं है चलो कुछ शेर सुन।
0: हां जी जी,
9: इन्हें की मैं तरनमिश कर दिया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब है गाना नहीं है?
9: एक गाना गजल टाइप है, शेर अपने।
0: हां,
9: तो बस इसने ऐसा कि किसी का भी कभी दिल मत तोड़ो।
0: हाय हाय, ये तुसी खुद लिखे है?
9: ये मेरा अपना लिखे है।
0: वाह वाह, कमाल हो गई है नदीम मंसूर साहब, आज सनवे भी पता लग गया तुसी खुद भी लिख दे हो।
9: और नहीं, बस रब नहीं था बस।
0: वाह जी वाह, चलिए आज तोड़ा अपना कलाम जरा ना सुन दे।
9: जी
0: जी जी जी,
10: किसी

अदावत से मिलेगा क्या सिवाय दर्द हसरत के, अदावत से मिलेगा क्या सिवाय दर्द हसरत के, चलो हर

मोहब्बत की शुआओं से अंधेरा तोड़ना सीखो।

0: वाह वाह जी वाह, क्या बात है नदीम मंसूर साहब। ऐसे लग रहा था जनाब किसी बहुत ही मूवी से जनाब ये गाना सुन रहे हैं और एक एक वर्ड जो है, लफ्ज़ जो है, दिल के आर पार हो गया। क्या शायरी आपने लिखी और क्या अपने अंदाज में इसको तरन्नम में गा के, होए होए होए होए जनाब, ये तो नहीं भूलेगी कभी। बहुत ही प्यारी शायरी और मेरे तो दिल की तर्जमानी कर रहा था ये आपका कलाम। क्या बात है। अब जो जो है ना, तारीफ के अल्फाज में ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहे, क्योंकि जो मिल रहे हैं वो उससे ऊपर हैं आप। तो जनाब बस यही कहूँगा सिंपली कि जनाब आपने कमाल से कमाल कर दी, और क्या शायरी लिखी और क्या फिर आपने तरन्नम में उसको पढ़ा। वाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। अल्लाह आपको सलामत रखे जनाब। मैं तो हैरान हो गया आपकी शायरी को, इसको आपने जैसा अंदाज से गाया, एक तो शायरी इतनी कमाल की थी कि दिल के तारों को बिल्कुल छू कर चली गई, और बल्कि दिल की धड़कनों को तेज़ करके चली गई, और जनाब ऊपर से आपकी इतनी सुरीली प्यारी आवाज़ थी, और इतना आपने उसको इससे तरन्नम में पढ़ा के जैसे फील हो रहा था कि हम कोई गाना सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। अल्लाह आपको सलामत रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रखे, और किसी का मोहताज ना करे, और ये आपकी आवाज़ अल्लाह हमेशा सलामत रखे, और इसी तरह आप लोगों का दिल खुश करते रहें, और दिल से दिल को खुश करना बहुत बड़ी इबादत है। और यकीनन जिस जिस बंदे ने भी आपका ये कलाम सुना होगा उसने ज़रूर दाव दी होगी आपको। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़। ये थे नदीम मंसूर साहब जनाब, इन्होंने अपनी शायरी लिखी हुई अपनी आवाज़ में, यानी कि तरन्नम से अपनी शायरी को पढ़ा। क्या पढ़ा, ओए होए होए होए। अब सोने पे सुहागा होने जा रहा है जनाब, तालियों की गूंज में जावेद मीर भाई भी जनाब आए हैं। अब वो पता नहीं क्या सुनाएंगे, पिछले आवर में जो गीत उन्होंने सुनाया, हाय हाय क्या बात है। और साइमा जी ने फ़ोन करके कहा हमें कि जावेद मीर भाई को कहना कि ये गीत आप फिर कभी ज़रूर सुनाइएगा। जावेद मीर भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वंस अगेन।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: जी सर,
1: तो वो जिन्होंने फरमाइश की साइमा साहिबा ने, उनको नेक्स्ट संडे को सुना देंगे इंशाल्लाह।
0: जी जरूर जरूर,
1: अगर जिंदगी रही
0: तो। रही बिल्कुल, बशर्ते है जिंदगी।
1: तो तमाम सुनने वालों को मेरे तरफ से बहुत बहुत सलाम। अभी वो नदीम
0: मंसूर साहब
1: थे, उन्होंने बहुत अच्छी
0: अपनी शायरी लिखी हुई अपने अंदाज में तरन्नम से पढ़ी जनाब,
1: तरन्नम में सुनाया, बहुत बेहतरीन।
0: जी जी,
1: तो आपने मुनी बेगम की,
0: आज मैंने सोचा चलिए कभी लगाई नहीं गजल लगा देता हूँ।
1: तो बहुत अच्छी गजल थी वो भी।
0: जी जी,
1: तो मैं भी आपको एक मुनी बेगम की सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ।
0: अच्छा जी, वाह जी वाह।
1: तुम्हारे शहर का मौसम, तो तमाम दोस्तों के नाम करता हूँ सुनने वालों।
0: जी जरूर जरूर।
1: तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे,

जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो, जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो के आस पास की लहरों को भी पता न लगे के आ

कुछ इस अदा से मेरे साथ बेवफाई कर के तेरे बाद मुझे

0: वाह वाह जी वाह, क्या बात है मुनी बेगम की प्यारी गजल, सदाबहार गजल आपने सुनाई, बहुत अच्छा लगा। जावेद मीर भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी आवाज़ को भी सलामत रखे, आप हंसते मुस्कुराते रहें जनाब। बहुत शुक्रिया आप आए हमारी इस महफिल को चार चांद लगा दिए जनाब, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए जी सर।
1: और दोबारा सलाम करते हैं चौधरी मुजफ्फर को।
0: जी ठीक सर,
1: बहुत प्यारे भाई हैं,
0: बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे जी,
1: और
0: कोई शक नहीं इसमें।
1: ठीक है,
0: ठीक है मेरी जान, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे प्यारे भाई, प्यारे दोस्त जावेद मीर भाई, और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमीदा बहन लंदन से। तो जल्दी में चलते हैं, कमर्शियल सुनते हैं, फिर हमीदा बहन से मिलते हैं।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Looking for your dream home in Bradford?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
2: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
3: Kullu nafsin zaiqatul maut.
4: Muslim Funeral Service mein kafan, dafan, phoolon ka intezam Islami shariat ke ain mutabik ghusl-e-mayyit ke liye aurat aur mard maujood hain. Top quality granite marble ke headstones aur full cover ko 30 saal ki guarantee ke saath banwane ke liye bhi Muslim Funeral Service ka naam yaad rakhe. Muslim Funeral Service, 4 Darfield Street of Lumland, Bradford 1. Telephone 723030, that's Bradford 723030.
5: Sunrise Radio, Sunrise.
6: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों, जैसा कि कमर्शियल पे जाने से पहले कहा था, हमारे साथ जुड़ी हुई है लंदन से हमीदा बहन, तो ढेर सारी तालियों की गूंज में खुश आमदीद, वेलकम जी एन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू। बहना कैसी हैं आप? ठीक है
7: जी? मैं ठीक हूँ। एंजॉय योर लवली शो टुडे।
6: थैंक यू वेरी मच।
7: मंसूर साहब ने तो कमाल कर दिया आज।
6: बो मंसूर साहब ने तो आए होए होए होए, खुद लिखा और खुद तरन्नम में उसको
7: आए होए,
6: क्या बात,
7: ब्यूटीफुल। जावेद साहब की तो कोई,
6: उनकी तो मिसाल ही नहीं है,
7: कोई मिसाल ही नहीं है। वो तो नहीं आएंगे हम आपके शो में, तो लगेगा कि कोई मिस हो गया।
6: सही है, लेकिन आप कहाँ मिस हो जाती हैं, आती हैं फिर गायब हो जाती हैं, अल्लाह खैर करे।
7: आज तो बहुत कम आती हूँ रेडियो पे, आज तो घर में हूँ, मैं बड़ी जॉय वैसे सुनती रहती हूँ, लेकिन लेजी टू कम, दैट्स ऑल।
6: ओके दैट्स ऑल। हम थोड़े परेशान हो जाते हैं ना कि अल्लाह खैर करे, क्या बात है, कोई बीमार तो नहीं हो गई, और इसलिए जी।
7: पहले मैं बहुत सुनाती थी रेडियो पे गजलें वगैरह, आजकल जरा स्लो हो गई हूँ।
6: क्यों, उम्र का तकाजा तो नहीं हो गया?
7: Getting old as well, you're right.
6: Maybe when you get old you get slow.
7: Slow, हाँ, सब स्लो हो जाते हैं।
6: चलिए कोई बात नहीं, स्लो स्लो भी काम चलता रहे, ठीक है
7: जी। आज है नासिर काजमी की लिखी हुई प्यारी सी गजल।
6: जी जरूर जरूर।
7: या ग्रेट पोएट नासिर काजमी कहते हैं,
6: जी जी,
7: आज तो बेसबब उदास है जी, आज तो बेसबब उदास है जी, इश्क होता तो कोई बात भी थी।
6: वाह वाह क्या बात।
7: इश्क होता तो कोई बात भी थी, जलता फिरता हूँ मैं दोपहरों में।
6: वाह क्या बात क्या बात क्या बात।
7: जाने क्या चीज खो गई मेरी, जाने क्या चीज खो गई मेरी,
6: बहुत
7: वही फिरता हूँ मैं भी खा के बसर, इस भरे शहर में है एक गली, छुपता फिरता है इश्क दुनिया से।
6: क्या कहने,
7: छुपता फिरता है इश्क दुनिया से, फैलती जा रही है रुसवाई,
6: बहुत खूब
7: ठिकाने उन्होंने, फैलती जा रही है रुसवाई, हम नशी क्या कहूँ कि वो क्या है।
6: क्या बात क्या बात।
7: छोड़ ये बात, नींद उड़ने लगी।
6: वाह वाह।
7: छोड़ ये बात, नींद उड़ने लगी, आज तो वो भी कुछ खामोश सा था।
6: क्या कहने,
7: आज तो वो भी कुछ खामोश था, मैं भी उससे कोई बात न की, मैंने भी इससे कोई बात न की, एकदम एकदम उसके होंठ चूम लिए, एकदम उसके होंठ चूम लिए, ये मुझे बैठे बैठे क्या सूझी, ये मुझे बैठे बैठे क्या सूझी,
6: क्या बात,
7: एकदम उसका हाथ छोड़ दिया, एकदम उसका हाथ छोड़ दिया। जाने क्या बात दरमियान आई, जाने क्या बात दरमियान आई। तू जो इतना उदास है नासिर, तू जो इतना उदास है नासिर, तुझे क्या हो गया?
6: क्या बात,
7: तुझे क्या हो गया बता तो सही।
6: बहुत
7: तुझे क्या हो गया बता, बता तो सही। पूर्णा से कसमें
6: क्या क्या बात है, क्या बात है निदीम कासमी साहब की, क्या बात है इनकी। बड़ी ऐसी गजलें इन्होंने लिखी, कुछ गुलकारों ने वो गजलें गाई और उन्होंने इतना फिर अपना नाम कमाया और अपनी इतनी पहचान बनाई कि क्या कहने। जिसमें हमारे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं खलील हैदर साहब, उन्होंने भी और जो
7: अच्छा
6: वो जो गाई थी वहाँ से, वो उनका भी सितारा बुलंद हुआ, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहां बाल बनाऊं।
7: यस,
6: तो उन्होंने भी ये जब गजल गाई तो उनका भी सितारा बुलंद हुआ। नदीम कासमी साहब ने बड़े गाने वालों के लिए जो गजलें लिखी वो फिल्मों में शामिल हुई तो इतने पॉपुलर हुए वो गाने वाले भी, और कुछ तो वैसे ही कुछ जो अननोन थे उन्होंने गाई, उन्होंने नाम कमाए बहुत।
7: उनका उनके भाई भी तो पोएट हैं, बशीर नाम है उनका।
6: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बड़ा नाम कमाया।
7: उन्होंने भी हाँ, उन्होंने बहुत गजलें लिखी हैं,
6: बहुत। हाँ जी जी,
7: बहुत गजलें लिखी
6: जी जी
7: जी। हाँ, तो मेरे पास एक किताब है जिसमें नासिर काज़मी की गजलें जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया हुआ है।
6: अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड।
7: तो ब्यूटीफुल, जिन्होंने ट्रांसलेट किया है, क्या उन्होंने क्या काम किया है उन्होंने।
6: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोग ऐसे उर्दू नहीं पढ़ सकते ना
7: जी। हाँ,
6: तो वो शायरी से महरूम हो जाते हैं
7: जी। हाँ,
6: क्योंकि उर्दू पढ़े तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि वो अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट किया, ताकि जो उर्दू नहीं पढ़ सकते वो भी शायरी से लुत्फ उठाएं।
7: और मिर्जा गालिब की भी तो गजलें लोगों ने बहुत ट्रांसलेशन किया हुआ है इंग्लिश में। मिर्जा गालिब बहुत बड़े ट्रांसलेटर थे जिन्होंने मिर्जा गालिब का ट्रांसलेशन किया।
6: जी, जी, जी।
7: क्या और क्या वो ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन है, यू नो, बहुत मजा आता है पढ़ने में इंग्लिश और वो दोनों पढ़ने में। तो दोनों मुझे दोनों पसंद है, इंग्लिश पढ़ना और फिर उसका उर्दू भी पढ़ना। आई कैन अंडरस्टैंड इट बेटर देन अ गजल।
6: ठीक है, बहुत शुक्रिया।
7: मैं तो चली
6: जी, बहुत शुक्रिया बहना, बहुत शुक्रिया। आप आई प्रणाम को रौनक बख्शी, आप मिस होती हैं तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा टाइम निकाल के आइएगा जरूर, तो अच्छा लगता है जी। बहुत शुक्रिया, यू टू थैंक यू अल्लाह हाफिज। ये थी अमीदा बहन लंदन से, और इन्होंने नदीम कासमी साहब की लिखी हुई गज़ल हम सब के लिए पेश की। और दोस्तों, आप कोई कॉल नहीं ले सकूंगा मैं, और ना ही कोई इस वक्त थोड़ी देर के लिए बंदा कोई कॉल करे, क्योंकि अभी जोहर की अजान का वक्त हुआ जाता है और साथ में ही फिर ऊपर से कमर्शियल भी आ जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा वक्फा हो जाएगा। और मेरा प्रोग्राम भी जो है बिल्कुल इख्तिताम पज़ीर होने ही वाला है, थोड़ी देर है और मेरे बाद काशिफ आपके लिए प्रोग्राम पेश करने आएंगे। उनको ज़रूर सुनिएगा और जो है इंतज़ार कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं जोहर की अजान और उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग।
4: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी दोस्तों, अभी आपने जहर की अजान सुनी और इसके साथ ही जनाब चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:46 से, यानी कि 46 पास्ट वन। तो चलेंगे, अब कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। कमर्शियल के बाद दोस्तों आप सुनेंगे कोई सदाबहार गज़ल या गीत, उसके बाद आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा है।

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेज, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
3: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014। सोफी ज्वेलर्स।

0: जी दोस्तों गजल सुनाती, लेकिन क्या है कि हमारे साथ दो प्यारी सी शख्सियात जुड़ गई हैं, एक अब्दुल कयूम साहब फ्राइजिंग हॉल से और एक जनाब भाई रुखसार अहमद साहब। तो चलेंगे मैनचेस्टर में जहां जनाब भाई रुखसार अहमद साहब इस लाइन पे मौजूद हैं। ढेर सारी तालियां उनके लिए जनाब। जी भाई रुखसार अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर जी इस्लाम जी
1: जनाब मोहतरम अली जनाब इज्जत माब मेरे नहायत ही ग्रामी कदर साहब सदर इज्जत माब अहमद शहजाद भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर जी कैसे हैं, ठीक हैं?
1: मेरी माजरत कबूल फरमा।
0: कोई बात नहीं सर, आया कहते ना देर आए दुरुस्त आए।
1: अल्लाह तआला, मैंने तो गुजारिश की थी कि मैं बोलता कि मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए था कि आपको प्रोग्राम मैं शुरू से ही सुन रहा था और माशाल्लाह इतने अच्छे माशाल्लाह शायरो शायरी भी हुई है और नदीम मंसूर साहब ने कमाल की
0: है। ओए क्या बात है, क्या
1: भी। और जो लास्ट में हमारी मोहतरमा हमीदा ना मेरा
0: हाल जी हमीदा जी जी
1: उन्होंने नासिर काजमी की जो गजल माशाल्लाह क्या खूबसूरत अंदाज है उनका और क्या खूबसूरत उन्होंने जनाब उसके साथ इंसाफ किया है। तो मैं तो सिर्फ आके प्रोग्राम की तारीफ करी थी, मैं आपकी एयर भी कर सकता था लेकिन आपने हुक्म दिया कि नहीं आप एन डी आर आई में आपको ले लेता हूँ।
0: मैंने सुना नहीं ना, मैंने जब आपको हेलो कहा तो मैंने कहा आप जाहिर है सुनाएंगे, तो मैंने आपको जल्दी में कहा कि मैं आपको ऑन एयर ले जाता हूँ, तो मुझे नहीं पता था ना आपने खाली तारीफ करनी है। मैंने सोचा कुछ सुनाना है आपने।
1: जी मैं सुना देता हूँ, टाइम है तो मैं
0: हाँ सुना दें जल्दी। आपके साथ अब्दुल कयूम साहब हैं फ्राइज हॉल से, लेकिन टाइम बहुत है, ठीक हो? इधर इधर काशिफ आया ना, उसको बोला ठीक हो जी।
1: लो जनाब हुण बड़े लोग आ गए तो फिर मेरा ख्याल हम चलते
0: हैं। नहीं जी जी सर, तुसी सुना के जाओ उन्हूं, मैं कह जाना बह जाए आराम ना दो मिनट ना। अच्छा जी
1: काशिफ भाई आ गए तो समझ लो कि अब ना मैं और ज्यादा आपके स्टूडियो में मैं
0: जी बिल्कुल बिल्कुल वो तो मेरा लाडला है ना, तो पता है ना। अच्छा
1: सर वो मैं कहता हूँ कि उनके आने से पहले खुशबू इतनी ज्यादा थी तो वो खुद लगा के भी आते हैं ना साथ में।
0: बिल्कुल बिल्कुल खुशबू तो होती है ना जी।
1: तो सर ये मैं उनको भी डेडिकेट करना चाहता हूँ और आपके भी और तमाम रोशन समातों की नजर करना चाहता हूँ।
0: जी जरूर जरूर जरूर।
1: शेर लिखता है जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे बाद।
0: हाय हाय हाय हाय क्या बात है।
1: हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद।
0: वाह वाह वाह क्या बात है।
1: कौन घूंघट को उठाएगा सितमगर कह के
0: हुई हुई।
1: और फिर किससे करेंगे वो हया मेरे बाद।
0: वाह वाह क्या बात है।
1: फिर मोहब्बत की जमाने में ना पुरसिश होगी।
0: वाह।
1: रोएगी सिसकियां ले लेके वफा मेरे बाद।
0: वाह क्या बात है क्या बात है।
1: शेर लिखता है हाथ उठते हुए उनके ना कोई देखेगा।
0: हाय हाय।
1: किसके आने की करेंगे वो दुआ मेरे बाद।
0: वाह क्या बात है क्या बात है।
1: शेर लिखता है किस कदर गम है उन्हें मुझसे बिछड़ जाने का।
0: वाह बहुत खूब।
1: हो गए वो भी जमाने से जुदा मेरे बाद।
0: क्या कहने जनाब रुखसार भाई।
1: आखिरी शेर जनाब आपकी और तमाम
0: जी, रोशन समातों को नजर करना। जी जरूर जरूर।
1: वो जो कहता था कि नासर के लिए जीता हूँ। वो जो कहता था कि नासर के लिए जीता हूँ उसका क्या जानिए कि क्या हाल हुआ हो मेरे बाद।
0: क्या बात क्या बात है क्या बात है।
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी आप आए, बहुत अच्छा लगा भाई जान, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। ढेर सारी तालियां हमारे भाई रुखसार अहमद साहब के लिए और ढेर सारी तालियां जनाब हमारे अब्दुल कयूम साहब फ्राइजिंग हॉल से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है मेरे भाई का, ठीक ठाक?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, भाइयों की दुआ से अल्लाह का करम है। आप सुनाएं आप कैसे हैं?
2: बस शुक्र है अल्लाह का, जिन जिन समातों तक मेरी आवाज पहुंच रही है मैं सबको सलाम कहता हूं।
0: जी
2: वक्त तो भी कम है और गजल भी जो मैंने चुनी है वो भी एक दो मिनट की है।
0: मैं नहीं नहीं नहीं अभी अभी भाई पाँच छह मिनट है हमारे पास, आराम सुकून से सुनाइएगा।
2: पता नहीं किसकी ये गजल लिखी है, मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा।
0: जी जरूर
2: जी। भड़का रहे हैं आग लबे नगमा घर से हम, भड़का रहे हैं आग लबे नगमा घर से हम, खामोश क्या रहेंगे जमाने के डर से हम।
0: वाह।
2: भड़का रहे हैं आग लबे नगमा घर से हम,
0: क्या बात,
2: खामोश क्या रहेंगे जमाने के डर से हम।
0: हा हा हा।
2: और कुछ और बढ़ गए जो अंधेरे तो क्या हुआ।
0: वाह।
2: कुछ और बढ़ गए जो अंधेरे तो क्या हुआ। हाँ। मायूस तो नहीं है तुलुए सहर से हम।
0: क्या बात है, क्या बात है जी।
2: शुक्रिया जनाब। कुछ और बढ़ गए जो अंधेरे तो क्या हुआ।
0: हाँ।
2: मायूस तो नहीं है तुलुए सहर से हम, और ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है।
0: हाँ।
2: ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, तो देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम।
0: आहा, बहुत खूब।
2: शुक्रिया जनाब। ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, तो देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम।
0: क्या बात।
2: और आखिरी शेर है, माना कि इस जमी को ना गुलजार कर सके।
0: आहा।
2: माना कि इस जमी को ना गुलजार कर सके, कुछ खार तो कम कर गए गुजरे जिधर से हम।
0: वाह वाह वाह, क्या बात।
2: माना के इस जमी को गुलजार न कर सके, खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम।
0: क्या बात है।
2: भड़का रहे हैं आग लबे नगम घर से हम, खामोश क्या रहेंगे जमाने के डर से हम।
0: क्या बात है।
2: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत
0: शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपका, जो आप आए इतनी प्यारी शायरी की जनाब, अपने प्यारे मखसूस अंदाज में, अच्छा लगा।
2: बहुत
0: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ये थे जनाब अब्दुल कयूम साहब फ्राइजिंग हॉल से, बहुत ही प्यारी शायरी, बड़ी प्यारी शख्सियत। तो जनाब अब मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है यहीं आकर जनाब इख्तिताम तक पहुंचता है, और मेरे बाद जैसा कि मैंने प्रोग्राम में कहा कि काशिफ जो है मेरे बाद प्रोग्राम पेश करेंगे, तो काशिफ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब हल्ला गुल्ला शुरू होगा जनाब, हम भी लगा अल्लाह गल्ला सुनते हुए घर जाएंगे। क्या बात है, बहुत इंतज़ार होता है इस नौजवान का मुझे भी, कि साथ में ये भी होता है यार मेरे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाएगा तो वो आएगा, तो फिर थोड़ा ये होता है। लेकिन फिर जब बोलते हैं नहीं नहीं काशिफ, कोई बात नहीं, प्रोग्राम 10 ख़त्म हो जाए कोई बात नहीं, वो ज़रूर आए। तो जनाब मुझे अमर शराद को इजाज़त दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात जनाब कल सुबह 11:30 होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

जी जनाब। घर में है, मकान में, सड़क पे, खुले मैदान में, हमारी तरह कलम कल्ले बैठे हैं।

कबूल कीजिए काशिफ की तरफ से। जी जनाब, मैं हूं आपका अपना काशिफ और आपके अपने सनराइज रेडियो पे आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं 100.6 एफएम और 103.2 एफएम के जरिए यॉर्कशायर के गिरदोनवा में।

ब्रेडफोर्ड लीड्स हैलिफैक्स मैनचेस्टर में आप सुन रहे हैं ईस्ट लंकाशायर में ब्लैकबर्न बर्नली डार्विन नेल्सन एकरिंगटन और मिल्टन कीन्स तक आप हमें सुन रहे हैं और जनाब दुनिया भर में आप हमें सुनते हैं सनराइज रेडियो .fm के जरिए। और इसके अलावा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, बिल्कुल ऑफ एयर कॉल्स होती हैं जनाब, मेरे और आपके दरमियान गपशप होती है, कोई तीसरा नहीं होता है। अगर आपने हमें याद किया हो और जो पूरा हफ्ता हमें चींकें आती रही हैं उसका बहाना अगर आप हैं तो बताइएगा। अगर आपने हमें याद किया हो, अपनी दुआओं में याद रखा हो, अपनी यादों में थोड़ी सी जगह दी हो, अपनी बातों में कभी हमारा जिक्र छेड़ा हो, हमें छेड़ा हो या ना छेड़ा हो मगर हमारी बातों का जिक्र जरूर छेड़ा हो आपने किसी अपने के साथ या खुद के साथ, तो जरूर बताइएगा। जनाब संडे का दिन हमारा आपके नाम होता है, 2 से लेके 5 बजे तक का टाइम सिर्फ आपका होता है। इसके अलावा जनाब चंद घड़ियां हमारे नाम होती हैं हमारे प्यारे से बड़े भाई हैं जनाब, लेकिन आपके साथ 3 घंटे का 7 दिन निभाते हैं, हमारे लिए सिर्फ 3 घड़ियां होती हैं उनके पास। जब हम आते हैं तो एकदम से वो घड़ी देखना शुरू कर देते हैं, घड़ी घड़ी एक नजर हम पे डालते हैं, एक नजर घड़ी की तरफ, फिर एक नजर मुझ पे डालते हैं, एक नजर घड़ी की तरफ, और ये काम वो करते हैं घड़ी घड़ी। और वो कौन हो सकता है जनाब, आपके और हमारे, जी हाँ जी, अमर शहजाद भाई की बात हो रही है। उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बड़ी शफकत से हमें, बड़े हौसले से, बड़े प्यार से, बड़े मान से वो हमें एक जिम्मेदारी सौंप के जाते हैं जनाब, और वो होती है आप सबको एंटरटेन किए रहने का, करते रहने का। जो काम वो बड़ा बखूबी सर अंजाम दे के गए हैं वो जिम्मेदारी वो अब हमें दे के चले जाते हैं, और फिर जनाब जी हाँ हम कोशिश करते हैं उनकी तरह तो नहीं लेकिन किसी हद तक आपके अगले 3 घंटों को बनाएंगे शानदार, जानदार, अपनी टूटी फूटी बातों से जनाब, जिनका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही बेतुकी बातें। दिल के अंदर एक बच्चा रहता है, अभी तक वो बचा हुआ है, देखें कब तक बचा रहता है वो बच्चा। उस बच्चे की कुछ ख्वाहिशें, कुछ बातें, कुछ जिद्दें, उसके कुछ ख्यालात होते हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। आपके दिल के अंदर भी एक बच्चा होगा जनाब, उसका गला ना घोंटिएगा, पूरे हफ्ते में एक बार सही उसकी गपशप हमसे लगवाइएगा, फिर देखिएगा उस बच्चे की शरारतें, वो बच्चा जनाब आपके चेहरे पे समाल ले आएगा, आपकी जिंदगी में रौनक मजीद ज्यादा हो जाएगी। चलें जनाब आपको बताएं, आज मौसम रहेगा बारिश का इसी तरह, और जिन्हों कहते हैं ना झड़ी लगी रहेगी, कदे तोला ते कदे माशा, की लाया हुआ इस मौसम ने साडे नाल तमाशा। चले जनाब मौसम को, मौसम के वो जो तेवर हैं वो देखते हैं कब तक ऐसे रहेंगे। आज यहाँ हमारे यॉर्कशायर में ब्रेडफोर्ड में मौसम बारिश का है, और आपको पता है मुझे बारिश के मौसम का सिर्फ एक इशारा चाहिए होता है बारिश के गाने लगाने के लिए, और फिर शो खत्म करके उसके बाद पुदीने वाली चटनी के साथ पकोड़े खाने के लिए सिर्फ मुझे एक इशारा, मौसम का इशारा चाहिए होता है, और वो इशारा हमें मिल गया। अभी लगाते हैं गाने, बारिश को सेलिब्रेट करते हैं, बारिश भी क्या सोचेगी।
यकीन जनाब जी, दारू से जिंदा दिलों से वास्ता बड़ा है।

0: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक
1: जी जनाब, सनराइज रेडियो के स्टूडियो की चमकती दमकती घड़ियां बता रही हैं। टाइम हो चुका है दिन के 2:21।
2: सनराइज म्यूजिक।
3: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
4: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
3: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally. Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
4: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
3: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
5: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
6: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
5: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
6: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.

0: जनाब आपको वेलकम कहते हैं और आपको बताएं कुछ कॉलर्स हमारे साथ और आज बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं ऐसी जो पहले हमें सुना करते थे लेकिन काफी टाइम के बाद आप वापिस आए। जनाब जिक्र कर रहे हैं हम बानो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अंदाज एक अपना ही है और आप जब कहती हैं ना कि मेरी जान कैसे हो, हाय साड़ी तो जान ही निकलन लग पैंदी है। पर बहुत अच्छा लगा आप कि एक खास शफकत है, एक खास प्यार है, खास लगाव है हमारे साथ और हमारी पूरी टीम के साथ। और जैसे आपके सर पे वो जो होते हैं ना, बड़े होते हैं तो आपको पता होता है कि बड़ों की शफकत और प्यार मोहब्बत आपके साथ है तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसी तरह बानो जी हमारे साथ हमेशा से बहुत सालों से मेरा हौसला बढ़ा रही हैं और आज बड़े दिनों के बाद तो वो आई हमेशा की तरह। उन्होंने हमें बातों में लगाने की कोशिश की और उनकी कोशिश कामयाब हो गई और हम बातों में लग गए जनाब। और इसलिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक सुनना पड़ा। अच्छा और कोई पता नहीं जनाब कौन कौन से कॉलर्स आई जा रहे हैं, स्क्रीन पे नाम आता है और चला जाता है और थोड़ी सी स्पीड मुझे मेरे ख्याल में तेज करनी पड़ेगी। ये बारिश की वजह से ना काम थोड़ा सा होला होला है। अच्छा जनाब एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद एक गाना आ रहा है। हमें बानो जी ने कहा है कि मेरे लंदन से मेहमान आए हुए हैं तो हमारे लंदन के जो मेहमान हैं उनके लिए एक फड़कता हुआ गाना आपने बोला है। अब आपने मुझे जो है ना वो क्या कहते हैं दुबिधा नहीं पता आपको, गूगल करें गूगल। तो आपने हमें दुबिधा में डाल दिया यानी कि कंफ्यूजन में डाल दिया। गाना तो ठीक है जनाब, इनू गाने नू फड़काइए किवें, मतलब भड़कता हुआ आपने गाना कहा है। अब मैं ढूंढ रहा हूं जनाब के भड़कता हुआ गाना किस किस्म का होगा। मैं ठहरा सीधा साधा जलेबी की तरह और आपकी फरमाइश और उसके ऊपर उसको आपने मजीद आजमाइश में डाला है। चलें जी कोई भड़कता हुआ गाना ढूंढता हूँ मैं इस ब्रेक के दरमियान। और कुछ कॉलर्स भी साथ हैं और कॉलर से गपशप भी लगानी है। और जनाब आज की बात हमें बर्मिंघम वालों ने कहा था कि जब भी आप आते हैं रेडियो पे तो आप जैसे अपनी टिकटॉक की वीडियोस में लोगों से सवाल करते हैं यहाँ भी सवाल किया करें। हर बार आती हैं और वो हर बार ये बात मुझे कहती हैं। तो आज जनाब एक सादा सा सवाल ये है कि आप ये बताएं कि आज आप इस टाइम पे क्या खा रहे हैं, या आज आपने सुबह क्या खाया है, या आज रात को आप डिनर में क्या खाने वाले हैं। कुछ भी एक आध हमें बता दें ताकि हम बर्मिंघम वालों के सामने सच्चे हो जाएं। सुन तो वो रही हैं, खुद तो वो बनाया उन्होंने चूजे वाले चावल, साथ में चटनी है, कबाब हैं जनाब चिकन वाले, और गोभी गोश्त जो उन्होंने बनाया है वो बड़े मज़े का बनाया है। पहले तो हमें समझ ही ना लगे, गोभी के आगे का लफ्ज़ हमें समझ ही ना लगे, फिर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट करके दोबारा कॉल की तो वो जो ब्रेकिंग हो रही थी ना वो गोश्त पे आती थी तो वो कॉल कट जाती थी, तो उनकी आवाज़ मुझे समझ नहीं थी आती। मैं समझा सिर्फ गोभी पकाई है ना, तो मैं आगे से जवाब देता था बार बार कि जी गोभी पकाई है, तो उनको इस बात पे बड़ा गुस्सा चढ़ रहा था कि मैंने गोभी गोश्त पकाया इसको गोभी समझ लग रही है। तो होता क्या था जनाब, वो टेक्निकल फॉल्ट था, वो जो लाइन थी ना उसमें कोई एरर था, तो वो गोभी कहती थी तो वो आवाज़ उसके आगे कट जाती थी। तो जनाब ये थोड़ी देर ये साइंस फंसी रही और उसके बाद साइंस हमने उसका हल ढूंढा, उन्होंने डिस्कनेक्ट करके फिर फटाफट बताया कि जनाब गोभी नहीं काशिफ, गोभी गोश्त बनाया है और वो खुद नहीं खा सकती हैं क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम है। कहती हैं बनाया है सबके लिए और सब खाएंगे मज़े ले लेके, मैं नहीं खाऊंगी। तो जनाब आज हमने सवाल छोड़ा है बर्मिंघम वालों की तरफ से, बताएं जनाब आपने भी कहीं गोभी गोश्त तो नहीं बनाया ना, तो बताइएगा क्या खाया आपने या क्या खाने वाले हैं, रात का मेन्यू आपका क्या है। बानो जी जनाब कहती हैं पुलाव बनाया है, जर्दा बनाया है, और लंदन से मेहमान आए हैं, उनको पुलाव जरदा खिला रही हैं आप। ठीक है जी, आप खाएं। ब्रेडफोर्ड वालों के वो खाने वैसे भी बड़े मशहूर हैं, लंदन वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे जब ब्रेडफोर्ड वालों के खाने खाएंगे। अच्छा जी, छेती छेती ब्रेक हाथ से निकलती जा रही है, तो ब्रेक लेने हैं। ब्रेक के बाद गाना भड़कता हुआ और आशा जी हमारे साथ हैं, वो गुस्से में आ जाएं तो फिर आशा जी का गुस्सा बहुत तेज़ हो जाता है। तो इससे पहले कि वो गुस्से में आ जाएं और उनसे बात करते हैं, वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हैं। और जो कॉलर्स जनाब जिनकी कॉल्स मिस हो गई हैं वो भी प्लीज़ दोबारा कॉल कीजिएगा। अच्छा, यासर भाई की कॉल आई थी और मैं क्या करूँ जनाब, ब्रेक पर जाते जाते मुझे बहुत सारे नाम लेने पड़ते हैं क्योंकि सब बड़े प्यार से मुझे कॉल करते हैं। अगर आपने कॉल नहीं की तो फिर आपने कख भी नहीं किया आज के दिन। 01274306666 के जरिए आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी हांडी रोटी आज क्या कर रहे हैं इस बारे में बता सकते हैं, कोई गाना सुनना है तो वो बता सकते हैं, कोई गिला शिकवा शिकायत किसी तीसरे बंदे के साथ है तो मुझ पे उसकी भड़ास निकाल सकते हैं।
1: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300,
4: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
5: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
4: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
5: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
6: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
7: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
6: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
1: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.

0: जी जनाब सोनी लगदी है तू मैनो हुसन तेरा लीथल कॉम्बिनेशन कुछ ते चन चढ़ाएगा कुछ इस तरह का जनाब गाना था मगर टाइम बड़ा नाजुक मोड़ पे आ गया है और जनाब हमें बताना है आपको टाइम क्या है बाकी की रुदाद रुदाद का मतलब चेक कर लीजिएगा गूगल पे और कुछ दोस्त अहबाब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और उनके बारे में भी बात करेंगे जनाब इससे पहले कि हम भूल जाएं उनसे बातें क्या हुई हमारी लेकिन पहले आपको बताते हैं कि हुन टाइम शैम की होया है
1: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
0: जनाब टाइम हो गया है दिन के 2:45 यानी के 2:45 हो गए
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
3: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ
4: मैं जानती हूँ उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था
3: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है
4: Sophie Jewelers 119-2121 Oakland Bradford 9 telephone 01274056014 Sophie Jewelers
5: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
6: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रैडफोर्ड 7230303
7: Buying or selling a property. Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
8: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
7: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
7: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback as we go down memory lane.

0: मैं यहीं पे हूँ स्टूडियो में, कहीं गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे कहीं जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा मुझे चौधरी रुखसार भाई की तरफ, और पता लगवाना पड़ेगा कि असल में पता है कुछ कॉलर्स आते हैं वो गपशप लगाते हैं, कुछ कॉलर्स आते हैं हमारे साथ, आप ही में से सभी दोस्त बहन भाइयों में से छोटे बड़े जनाब आप सभी आते हैं, कॉल करते हैं, कुछ गीत सुनने के लिए आते हैं, कुछ बताने के लिए आते हैं कि हम सुन रहे हैं, कुछ हाल अहवाल बताते हैं, कोई कोई होता है जो दिल की बड़ास निकालने आता है, आशा जी की तरह जनाब वो कोई शायरी लिखती है ना तो फिर वो सबसे पहले मुझे सुनाती हैं, फिर जब मुझे कहती है ना कि काशिफ आप इसमें से गलती निकालो, तो मैं अपना सिर दोवा हथां नाल फड़ के ना तो मैं वेखदा वा आसमान वाल, मैं कहना या दिल्ली च दिल च कहना यार अब्बा ए मेरे कोलों भी कोई पूछेगा एक दिन के गलती कड्डो एदे चों, एडा सियाणा मैं कदों दा हो गया, या तुहानू ये वहम है कि मैं सियाणा वा, आशा जी को बहुत बड़ा वहम है मेरे बारे में कि मैं कुछ ना कोई बड़ा किताबी समझदार सियाणा बंदा हूँ, चले किसी को तो वहम है ना। बहरहाल आशा जी आपकी शायरी आपने सुनाई, तो हाले दे अभी आप कह रही हैं अभी बाकी है कोई शायरी, वो अगले आवर में सुनाइएगा। अच्छा जी, चौधरी रुखसार भाई की तरफ जाना पड़ेगा मुझे भाग के, उन्होंने कहा है कि जनाब सोंचल उन्ना खादी है सोंचल, हूँ मैं नाल गूगल खोले हो या, पता ला रहा मैं कि जनाब गूगल ते सानू पता लग जाए कि सोंचल है की, हूँ दसो जनाब। मैं क्या ना कोई कुछ कॉलर आते ने गपशप लाण, कुछ कॉलर आते ने सानू छेड़न आते ने, तो मैं वैसे भी तैयार बैठे होना कि मैनू कोई आके छेड़े सही, पूरा हफ्ता वेट करी दा कोई तो छेड़े, गली महल सड़कों पर खवार हो जाए तो कोई छेड़ता ही नहीं, सारे अपने अपने काम में बिजी ने, पौंड छापण के भी जनाब कदे इधर जाते हैं तो कदे उधर जाते हैं, नोटों में खेड़ते हैं सारे जनाब, सारे फुरसत ही कोई नहीं किसी कोई छेड़े, तो फिर मैं इतने आना इस आस के कि इतने मैं कोई छेड़ेगा, और सब तो पहले मैं छेड़न गए जनाब साढ़े भाईजन रुखसार। वो कहें पहले तो ये दसो तुहानूं कॉल करिए तुसीं पहले पुछदे हो पकाया की कहंदे ने तुसीं ते इंज पुछदे हो जिस तरह बंदा घर जा के बेगम कोलों नहीं पुछदा कि बेगम अज पकाया की है तुसीं जबरदस्त बहुत हसाया आपने, कहंदे यार तुसीं ते इंज पुछदे हो जिवें मैं तुहाडी बेगम हाँ जनाब अज पकाया की है, बहुत हंसाते हैं जनाब वो, बहुत मज़ा आता है, बड़ा प्यार भी करते हैं हमारे साथ और बड़ी इज्जत देते हैं, रब उनकी इज्जतों में इजाफा करे, आप सबकी इज्जतों में इजाफा करे जनाब, आपकी जिंदगियों में खुशियों में इजाफा करे रब की ज़ात, आमीन। तो जब कोई आपसे प्यार करता है ना तो एवें उस बंदे पे ज़्यादा प्यार आता है ना, मुझे तो एवें ना डर लगता है कि किसी दिन मेरे सामने आ गए चौधरी रुखसार भाईजान तो मैंने पा जफ्फी देनी है जादू की जफ्फी, तो फिर रुखसार भाईजान ने मेरे को ना छुड़ाना है अपने आप नू कि काशिफ छड़ दे लोग वेखते पे ने, तो फिर मैं कहना रुखसार भाई नू लोग कड़ा सानू महीने का राशन पा के देंदे ने, मेरे वालिद साहब का अक्सर हम कहा करते थे थोड़े से शाही हुआ करता था बचपन में मैं, अभी तो नहीं मेरी हरकतें शर्मीली, लेकिन उस वक्त थोड़ा शर्मीला होता था मैं बचपन में, आप माने या ना माने मेरी बातों से लगता नहीं है कि कभी मैं शर्मीला रहा हूँगा, तो मैं अपने डैड को कहा करता था कि यार ईद पे ना ये कौन सा रंग मैं पहनूंगा, नहीं नहीं ये नहीं लोग क्या कहेंगे, तो कभी वो कहते थे ये वाली जैकेट तुम्हें बड़ी अच्छी लगेगी, बड़ी डैशिंग और हीरो लगोगे, तो मैं कहता था यार डैडी लोग क्या कहेंगे भाई बहुत ज़्यादा ओवर और डैशिंग हो जाएगी ना, तो वो गुस्से में आ जाते थे, वो कहते थे तो यार काशिफ और लोग सानू महीने का राशन पा के देंगे ने या सानू आटा पा के देंगे ने महीने का, लोगों तू तू क्यों एंडा फिक्र करता है, लोग की कहेंगे लोग की कहेंगे, तो जनाब हमारे रुखसार भाई को हमने डालनी है जफ्फी और उन्होंने फिर शर्मा के कहना है काशिफ भाई लोग क्या कहेंगे। अब मुझे पता है अब वो कॉल पे मेरे साथ होल्ड पे हैं, अभी तक उनकी बातें मुकम्मल नहीं हुई हैं क्योंकि वो आते हैं ना तो फिर रज के गपशप लगाते हैं, मेरा भी दिल नहीं करता कि वो जाएं, बाकी बहुत सारे और कॉलर भी हैं जनाब हमारे साथ, उनका भी नाम लेंगे। मेजर ताशफीन यूसुफ साहब हैं जनाब, उनकी गपशप भी जारी और सारी है हमारे साथ, दोबारा कॉल पे आएंगे। वो भी कह रहे हैं खाली अभी अपना खड़ाक करने आए थे कि वो हमें सुन रहे हैं। अच्छा लगा आपको सुन के जनाब, मेजर ताशफीन यूसुफ जी। अभी एक ब्रेक है और अभी हमारी बातों से अंदाज से आपको पता लग गया होगा कि हम चार्ज हो चुके हैं और अगले दो घंटों में रब आपकी खैर करे।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day. This is Sunrise Radio. On the hour, every hour.
2: Police are investigating what they're calling a suspicious explosion at a house in Bristol that's left two adults dead. A major incident has been declared and nearby homes have been evacuated. One of Sir Keir Starmer's top team says Labour colleagues rumoured to be challenging the Prime Minister's leadership should, in her words, give their head a wobble. Transport Secretary Heidi Alexander insists the PM is the best person to lead the country. MP Carl Turner's had the Labour whip suspended.
3: I'm afraid to say I think things are moving and I think there is inevitably a contest on the horizon.
2: Two women have died trying to cross the English Channel in a small boat. French authorities say three other people are critically ill. Fewer empty planes will run in favour of follow-ons under government plans to protect jet fuel supplies. Flight consolidations will be allowed on routes where there are multiple services to the same place on the same day. The Green Party leaders admitted he was wrong to use social media to criticise the actions of police, but Zach Polanski says a conversation should still be had after footage emerged of the arrest of a stabbing suspect in North London on Wednesday. In sport, two teams chasing European football next season are going head-to-head as Bournemouth host Crystal Palace in the Premier League. Live to Peter Hood at the Vitality Stadium.
4: And it's half-time here. Bournemouth 2, Crystal Palace 0. The home side have dominated the first half. Palace haven't managed a shot on target. The goals have come from Ivar Nielsen with a header from a corner. And then a controversial VAR call that gave a penalty. Krupa slotted it home to double the lead. Bournemouth 2, Palace 0.
2: It's third versus fourth when Manchester United and Liverpool kick off at Old Trafford later this hour. And Celtic have moved level on points with Scottish Premiership leaders Hearts with a 2-1 victory at 10-man Hibs. That's the latest. I'm Anna Bates.
5: Thank you. Thank you for making Sunrise Radio your favourite Asian radio station.
6: Hit off the hour, brought to you in association with Pakistan Jewelers, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD9 5ER. Call now 01274 491 442.

0: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: जी जनाब, सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि टाइम हो चुका है दिन के 3:07.

जी जनाब वेलकम बैक, आपको कहते हैं, आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो। मैं हूं आपका अपना, सिर्फ आपका काशिफ। जी जनाब, मुझे कहते हैं काशिफ, और गुस्से से भी काशिफ और प्यार से भी काशिफ। और जनाब, हर संडे के दिन 2 से लेके 5 बजे तक मेरा और आपका साथ रहता है, और जैसे ही आपको मेरे तेवर बदले हुए महसूस हो, अंदाज बदला हुआ महसूस हो, आवाज में एनर्जी महसूस हो, तो समझ जाया करें कि मेरा कसूर नहीं है, ये आप सबका कसूर होता है। जो दोस्त हमें कॉल्स करते हैं जनाब, आप काम को चुक के बिल्कुल रख देते हैं, और अब काम बिल्कुल अपने जोरों शोर से हम अंजाम देंगे आपको एंटरटेन करने का। चौधरी रुखसार भाई जी से बड़ी बड़ी ही गपशप हुई, और उन्होंने कहा जी यकीन करो, जब असी जाने ना पार्क च खेडन क्रिकेट, केड़ा पार्क है जिते क्रिकेट खेडते हो तुसी, असी तो समझे पार्क च लोग जाते ने वॉक शॉक करन जाते ने, कोई रनिंग करन जाते ने, कोई फुल बूटे वेखन जाते ने, कोई ताजियां ताजियां खिलियां कलियां वेखन जाते ने, कोई ताज़ा हवा लैन जाते ने, तुसी क्रिकेट खेडन जाते हो, ऐवी गल ठीक है। उन्होंने कहा यार बेली नाल आते हैं, तो असी कन्न च टूटी ला के तो जो क्रिकेट खेडते होंने काशिफ जी, तो यकीन करो जे बॉलिंग कराने तो ताड़ियां गल्लां सुनते सुनते बॉलिंग कराई दा, कन्न च टूटी लगी होंदी तो बाल सीधी नहीं जाती। मैं क्या ये गिला तो तुसी लास्ट वीक भी किया सी, कहंदे ने गल इत्थे तक मुक नहीं ना जांदी, ताड़ियां गल्लां दे असी वल्लां च ऐसे वल्लण जांदे हां, ऐसे फस जाने हां कि जे फील्डिंग करने हां ते कोई चौका छक्का मारदा ते जनाब साडे कोल बाल ही नहीं फड़न होंदी, ओ फिर यार बेली वाजा मार देने कि बाल ते फड़ना, ते मैं उन्हां नूं कहना कन्न वाल इशारा करके टूटी वाल कि ए जड़े बंदे ने मैनू इस कन्न दे विच फड़िया होया है, पहले मैं इहदे कोलों पिछा छड़ावांगा ते फिर बाल भी फड़ांगा, कि ऐसे असी मसत हो जाने, मसत आहो ऐसे असी मसत हो जाने ताड़ियां गल्लां दे विच। जनाब ये तो ताडे साइड की स्टोरी हो गई, तो जड़े असी मसत होए पे हाँ, बावले होए पे हाँ, चले होए पे हाँ, जमाना सुनता पाया साडा।

ਚੱਲੇਪਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਤ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ਵ ਜੀ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੋਚਲ ਇਹ ਸੋਚਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਲਿਸਨਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸੋਚਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ अच्छा जनाब आप बताएं अगर आप भी जानते हैं कि सोंचल खा बैठे हैं आज हमारे रुखसार भाई तो सोंचल क्या चीज़ है क्योंकि मेरे तो पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं सोच सोच के कि जनाब सोंचल है क्या भला मतलब ये कोई स्वीट डिश है कोई स्पाइसी डिश है कोई पकोड़े समोसियां की तरह की चीज़ है चिकन से बनती है या फिर कोई वेजिटेरियन शह है क्या आप बताइएगा जनाब अगर आपको पता हो हिम्मत कीजिएगा शर्माइएगा नहीं क्योंकि कि शर्माने पे बात आई आगे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैं शर्माता अच्छा जनाब यासर भाई ने कॉल कर रखी है वो बीडी सेवन में इस वक्त पाउंड्स छाप रहे हैं और उनसे बातचीत हुई बड़ा अच्छा लगता है हमेशा हमारा साथ देते हैं तो उनके लिए जनाब एक होगा खूबसूरत सा गीत होगा जनाब उनके लिए अच्छा जनाब आपको बता रहे थे आशा जी हमारे साथ थी और उन्होंने गिला किया उन्होंने कहा आपने सबको बता दिया कि मैं गुस्से की तेज हूं मैंने कहा अपनों से क्या पड़ता तो उन्होंने कहा अब सारे क्या सोचेंगे तो मैंने उनको बताया जनाब जो गुस्से के तेज वो लोग होते हैं ये तो हमने तारीफ की है आपकी जो गुस्से के तेज लोग होते हैं ना वो दिल के मन के बड़े खरे होते हैं तो फिर जनाब वो हमारी बातों में आ गई और उन्होंने कहा अच्छा आपका मतलब है कि गोल्डन हार्ट मैंने कहा मैंने दिल ही दिल में शुक्र किया मैंने कहा बच गया काशिफ मैंने कहा हाँ जनाब गोल्डन हार्ट हैं आप तो जनाब आशा जी गोल्डन हार्ट हैं और उनके मन में भी गोल्डन गोल्डन किस्म की शायरी आती है और अभी दोबारा उन्होंने कॉल करने का वादा कर रखा है और गाना एक उनके नाम लगाते हैं और यही गाना मेजर ताशफीन यूसुफ जी आपके नाम लगाते हैं लंदन वाले मेहमान आए हैं ब्रैडफोर्ड में जनाब बानो जी के घर में तो वो हमारे भी मेहमान हुए ना तो लंदन वालों के नाम लगाते हैं चौधरी रुखसार भाई आपके नाम लगाते हैं तुसी कहंदे हो बारिश विच ते अज पार्क नहीं जा सके अज घर बैठे तानू सुन दे पे हां सुनो जी मेरियां खरियां खरियां और जनाब हमारे साथ रही गजल आपने पहली बार हमें कॉल की बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और आप कह रही हैं कि आप खाएंगी नांचोज एक ही नांचोज की शय होती है जी साड़ी जाने बल्ला मरला सी भी हूं हां कर दी थी मैं क्या पहली बारी तुसी कॉल की थी है तो तुसी कहोगे किन्नू कॉल कर बैठी हां की गलती कर बैठी हां जिन्हों नांचोज का नहीं पता खैर जनाब आप डिनर में नांचोज खाएंगी और अगर आपको पता है नांचोज क्या शह है तो मुझे जरूर बताएं ये कौन सी डिश है आज बड़ी बड़ी अनोखी डिशें आ रही हैं ऐसी ऐसी डिशेज आ रही हैं जनाब जिनका हमने कभी सुना ही नहीं है ओ कोई सोंचल खा रहा है कोई रात को कहते हैं जी उन्होंने प्लान किया हुआ नांचोज खाना है नाचोज तो मैं पूछ तो बैठा हूं सवाल लेकिन जनाब ये सवाल आज मेरे गले पड़ गया है सवाल ये है कि जनाब आपने क्या खाया है या आपने शाम को क्या खाना है मेनू की है आज आपका मेनू बताना है आपने मेनू क्या है आज आपका खाने पीने का

0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014. सोफी ज्वेलर्स।
3: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
4: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
3: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
5: You are listening to Sunrise Radio, the greatest Asian radio station in the world. Sunrise Radio, enjoy!
6: जी जनाब, ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं और आपको बता दें, आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो पे अपने काशिफ को। और जनाब, ये गाना खास तौर पे गजल जी, एक और गाना आपके नाम, आपने इंकशाफ किया, हमें बताया, आपने कहा ब्यूटी पार्लर में हैं इस वक्त और आप तैयार हो रही हैं कहीं शादी वगैरह ब्याह की तकरीब पे जाना है, साथ में आपकी नंद है। और जनाब, ब्यूटी पार्लर वालों का शुक्रिया जिन्होंने कहा कि जरूर कॉल कर सकती हैं आप साथ में। और हम नाम नहीं ले सकते हैं उन ब्यूटी पार्लर वालों का, माजरत, आपने नाम बताया, बहुत शुक्रिया जनाब। आपने कहा ब्यूटी पार्लर पे जनाब सनराइज रेडियो लगा हुआ है और हम सुन रही थी, बहुत इंजॉय किया और आप हमारी बातों पे हंस रही हैं, इंजॉय कर रही हैं सभी। चलिए जनाब, इतना तैयार होइएगा कि जब आप घर वालों के सामने जाएं तो वो कम से कम आपको पहचान ले। बाज़कात होता है ना, बंदा ज्यादा भी खूबसूरत लगे, ज्यादा भी तैयार हो जाए ब्यूटी पार्लर से, तो वो घर वाले ही ना पहचाने तो फिर क्या फायदा, वो कहेंगे जनाब ये क्या। और बहरहाल जनाब, आप इंजॉय करें ये खूबसूरत सा गीत, आपने कहा कोई मस्त सा गाना लगाएं, हम सबका मूड यहाँ पे बहुत अच्छा है और आपको सुन रहे हैं और ज्यादा अच्छा हो गया है। चले जनाब, उम्मीदें काफी भारी हो गई हैं हमारे ऊपर, काफी उम्मीदें आपने डाल दी हैं और आप एंजॉय कीजिएगा शादी पे भी, जिसकी भी जा रहे हैं बहुत सारी बेस्ट विशेस उनके लिए भी और आपके लिए भी। आइंदा भी गपशप कीजिएगा, खाली ये नहीं कि जब नेक्स्ट टाइम कभी ब्यूटी पार्लर पे आए तो फिर कॉल करें। एनीवेज जनाब, आप सब जो ब्यूटी पार्लर पे नहीं जा सकी हैं खवातीन, आप सब भी बड़ी खूबसूरत हैं जनाब, नेचुरल ब्यूटी इज ऑलवेज द बेस्ट। और जो हमारे भाई लोग सुन रहे हैं जिनको ब्यूटी पार्लर पे हम मर्दों को जाने की जरूरत नहीं होती है जनाब, हम तो पैदाइशी खूबसूरत होते हैं, एक जीन्स, एक चिट्टा गुड़दा और एक जनाब गोल्डन वास्कट और जनाब एक खूबसूरत सी, वो क्या कहते हैं, पाकिस्तानी स्टाइल की खूबसूरत सी चप्पल हो जाए या खुसा हो जाए, आते जनाब गोल्डन रंग की कड़ी हो जाए, ते बस असी तैयार हैं जनाब, आ थोड़ी जी जेल हो गई ला लांगे वालां ते, जे वाल है गए ने ते, जे नहीं है गए ता भी कोई गल नहीं, चांद तो चांद होता है चाहे बादलों में हो, क्या ख्याल है। तो जनाब ये खूबसूरत सा गाना सभी दोस्तों के लिए जो आज जिनको लग रहा है कि वो बड़े खूबसूरत

0: जी जनाब, सोनी लगदी मैनू सारी दी सारी, ब्यूटी पार्लर जावे या ना जावे। अच्छा जनाब, बर्मिंघम वालों ने बता दिया है कि सोचल किसको कहते हैं। लग गया पता जनाब, बहुत शुक्रिया बर्मिंघम वालों। आपने कहा, आपने अपने देवर को कॉल की और इस मुश्किल का हाल हमें बताया। आपने कहा आप हस्बैंड को कॉल करती हैं ना जब मेरी बातें सुन के, तो वो उनको गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं ये कहाँ से तुम फटीकें लेके आती हो, ऐसी ऐसी बातें मुझसे पूछती हो, मैं काम पे होता हूँ। तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। तो फिर मैंने अपने देवर को कॉल की है, नंद को भी कॉल की है। और अच्छा, नंदों का जिक्र आज ज़्यादा नहीं हो गया शो में। एनीवेज, आपने कहा कि आप के देवर ने बताया है कि सोचल, कितने गया मैं थे लिखे सी, हाँ सोचल जनाब, उन्होंने कहा है कि फलियां टाइप की कोई सब्जी होती है और नाम आपको उन्होंने बताया था। तुसी भी मेरे यार ना बादाम खाया करो, कसमें तुसी भूल गए हो। उन्होंने आपको अभी तो फ़ोन पे बताया था, फलियां टाइप की वो कोई होती है, लेकिन सोचल को कुछ और भी कहते हैं। तो वो जो देवर साहब है ना, उन्होंने बताया है इनको मैडम को, लेकिन वो भूल गई हैं। देखो जी, चटकड़ी तुसी भूल गए हो। कहते हैं जी खवातीन मल्टी टास्क होती हैं, तो तुसी तो एक टास्क भी सही नहीं किया। बहरहाल फिर आपने कहा है कि आपने नंद को भी कॉल की हुई है, तो वहाँ से अभी रिस्पॉन्स आना है। तो वो आपकी नंद जो है ना, वो नाम ढूंढ रही है सोचल का। तो आपने मुझे 3-4 बारी कॉल कर दी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। सोचल वाला स्यापा जो है ना, वो बस अब तोड़ लगने वाला है। तो फिक्र ना करें, आवाम मेरे साथ है, मुझे पता है। और किसने कॉल की थी, कॉल की थी ना जनाब किसी ने, लह चले जनाब कोई बात नहीं, मेरा ध्यान ब्रेक की तरफ है। और किसी ने मुझे कॉल की है, नहीं गज़ल ने कॉल की थी दोबारा, वो तो हमने उनके लिए गाना लगा दिया है दोबारा से, और वो इन्जॉय कर रही हैं जनाब, सुन रही हैं साथ में, तैयारियां जोरों शोर पे हैं जनाब। आज जो है ना, आज कुछ ओसी ते जनाब, हाँ हाँ जी जनाब, बर्मिंघम वालों ने भी कॉल की थी, उनका भी होगा, लेकिन एक आध नाम रह गया है। मुझे पता है इस वक्त जो मेरी आएँ बाएँ शाएँ मैं कर रहा हूँ ना, उसकी वजह यह है कि किसी ने बड़े प्यार से मुझे कॉल की थी और मैं जो है ना वो लिखना भूल गया हूँ नाम। और देखें अभी क्या होता है मेरे साथ, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। लेकिन जनाब जो भी होगा, ज़माने के सामने होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद एक खूबसूरत से गीत के साथ, और तब तक मैं याद करूँ कि मैंने होर किने कॉल की थी।
1: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
4: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
5: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
4: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
6: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
7: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
6: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
7: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 Oak Lane, Bradford 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
1: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.

जी जनाब, आपको वेलकम कहते हैं। आप सुन रहे हैं काशिफ को सनराइज रेडियो पे। और जनाब, कॉल आई चौधरी रुखसार भाई की दोबारा से, उन्होंने मुश्किल में डाल दिया। उन्होंने कहा ना जी, सोचल फलियों वाली सब्जी नहीं होती है। फलियों वाली सब्जी जो होती है ना, वो तो मैं आई होप कि मैं सही इसको प्रनाउंस करूं। बड़े बड़े अजीब नाम सुनने को मिल रहे हैं जनाब। मतलब वो होता है सवांजने की फलियां होती हैं, वो जो फलियों वाली सब्जी होती है ना, वो सवांजने की फलियां होती हैं। आई होप आई एम प्रनाउंसिंग एग्जैक्टली एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज एक नुक्ते ने मैरम से मुजरम कर देना है। जनाब हूँ सवांजना क्या है, ये मैंने कभी नहीं देखी सब्जी, लेकिन जिन्होंने हम पे सवाल डाला था कि सोंचल, आज उन्होंने सोंचल खाया है, सब्जी है वो, बरल ये वो मान गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि जी बर्मिंघम वालों को बता दें, उनके देवर को भी बता दें, उनकी नंद को भी बता दें, सब सुनने वालों को बता दें, बताएं सोंचल क्या है, सब्जी है, किस तरह की सब्जी है। उन्होंने कहा फलियां जो है ना, वो तो समांजने की होती हैं। ना जी ना, सोंचल की फलियां नहीं होती हैं। एक गेम कोई और पासे जा रही है जनाब। अच्छा सोहा, आपने कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने कहा, आपने पूछा कि हम क्या खाया या क्या खा रहे हैं, तो आपने कहा जी क्रिस्प खा रहे हैं। हाय, जेन जी आवाम जड़ी है ना, ये जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं जनाब, इनके खाने पीने के अंदाज कुछ और ही हैं। असी पाए शाए खाने हैं जनाब वीकेंड दे, ये आवाम जनाब क्रिस्प खान दी है। की करां ते की ना करां, इन्हां दा हाल वेख के दिल करदा ठंडा पानी पी पी मरां। और जनाब आपने कहा, आपने पूछा, किसी ने कहा था हमें कि हम शाम को नाचोस खाएंगे, किसने कहा था? अपनी हैंडराइटिंग नहीं मुझसे पढ़ी जाती, मैं क्या करूं।

0: अच्छा जी, उन्होंने कहा नाचोस जनाब ये एक तरह के वो क्रिस्प टाइप की चीज होती है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने समझाया हमें। बहुत बहुत शुक्रिया सोहा, आप खुद क्रिस्प खा रही हैं और आपने नाचोस के बारे में बताया। तो वो जनाब कहती है थोड़े स्पाइसी से होते हैं, तो मैंने कहा कोई हांडी होती है या क्या होता है, तो उन्होंने कहा हांडी नहीं होती है, ये भी क्रिस्प की तरह की कोई शय होती है, बस मुझे इतनी समझ आई। तो वो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नाचोस खाने वाले, तुम राती नाचोस मतलब क्रिस्प शिस्प खाओगे, डिनर को नहीं करते हो, कोई हांडी रोटी, कोई दाल रोटी, कोई चिकन बिरयानी, कोई गोश्त पुलाओ की करते हो तुम, साढ़िया तो मैं फिक्र मार चलिया ने। बहरहाल जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और हमारे रुखसार भाई इन्जॉय कर रहे हैं हमारे शो को, बार बार उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो बार बार मुझे कॉल करता है उसका नाम बार बार लेना पड़ता है। सोहा आप क्रिस्प का एक और पैकेट खोल लें क्योंकि आने वाला गीत होगा आपके लिए। और आशा जी आपने अभी हमें शायरी सुनानी है, आपने कहा जो ब्यूटी पार्लर में तैयार हो रही हैं जितनी भी खवातीन उनके लिए आपने एक शायरी तैयार की है, वो आपने हमें सुनानी है क्योंकि ऑन एयर तो ये शो होता नहीं है, तो इसलिए आप हमें ही सुनाएंगी। और जनाब जैसा मैंने कहा मर्द तो उनको मेकअप की जरूरत नहीं होती है, वो पैदाइशी सोने होते हैं हमारी तरह, कुदरती हुस्न है ना। अच्छा इस बात का मुझे पता कब से पता लगा, एक बार मुझे याद है पाकिस्तान हम सड़क पार कर रहे थे तो हमारा ध्यान पता नहीं किसकी तरफ था, किसी ना किसी पास से मेरा ध्यान रहता ही है, वेला नहीं मैं बहंदा, तो मैं अपने ध्यान में था, अपनी मस्ती में मगन था, तो एक टांगे वाले साहब जो है ना वो पीछे से आ रहे थे सड़क पे, तो उन्होंने जोर से आवाज लगाई, ओ सोनिया पीछे ते वेख ला। और ना माने उस दिन के बाद मुझे यकीन हो गया क्योंकि गल है साढ़े बिच, तो टांगे वाले भाई ने मुझे कहा था सोनिया, तो जनाब मुझे तस्दीक मिल गई थी कि कोई बात तो है हम में। उसके बाद भी तीन चार बार तस्दीक हुई है पर वो यहां पे बता नहीं सकता हूं यार। तो ये वहम एवें नहीं बंदे को पड़ता कि बंदा सोना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी आपको ये वहम डालूं कि बनाया रब ने है आप सबको, तो जो बनाने वाली जात इतनी खूबसूरत है जिसने क्या कुछ बना दिया कायनात में, तो जब उसने आपको बनाया तो आप कितने सोने होंगे, आप सभी खूबसूरत हैं जनाब, कोनी जरूरत आपको ब्यूटी पार्लर की। मीन टाइम जनाब आपको एक खास बात बतानी है, किसी और को नहीं बताना आपने, पक्की बात है ना, ये मेरे और आपके दरमियान रहनी चाहिए, और वो बात है ये वाली।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जनाब सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक टाइम हो चुका है दिन के 3:45।
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है, शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सूफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
5: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
4: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally. internationally.
6: Kullo Nafsen Zaikatul Maut.
7: Muslim funeral service mein kafan, dafan, phoolon ka intizam Islami shariat ke ain mutabik ghusl-e-mayyat ke liye aurat aur mard maujood hain. Top quality granite marble ke headstones aur full cover ko 30 saal ki guarantee ke saath banwane ke liye bhi Muslim funeral service ka naam yaad rakhe. Muslim funeral service, 4 Darfield Street of Lumland, Bradford 1. Telephone 723030. That's Bradford 723030.
8: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
9: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD94QU. Call 01274-488-935.

जी जनाब, मैं हूँ आपका अपना काशिफ कहते हैं मुझे जनाब, और आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो। और जनाब चांद से पर्दा कीजिएगा, शीशा देखते हैं तो ज्यादा ना देखा करें, आईने के सामने ज्यादा बार बार ना आया करें। कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर, मुफ्त में दे रहे हैं आपको ये एडवाइस जी हजूर। दिल अपना सादा सा है, बस इतना सा है मेरा कसूर। और जनाब हमें कॉल की बरली से, जी बरली वाले शकील भाई जनाब हमारे बड़े मशहूर हैं, आपको पता है, हमसे ज्यादा चाहने वाले हैं उनके, और हम भी उनके मदाहों में से एक हैं। और उन्होंने कॉल की और मुश्किल आसान की, उन्होंने हमें बताया जनाब सोचल क्या चीज है। सोचल जो है ना वो खाने वाली एक सब्जी है, पर है क्या सदके। अवाम इस वक्त जनाब बहुत सारी, आपको पता है, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो बरली वालों का, शकील भाई आपका, आपसे बातचीत की बड़ा मजा आया, आपने बड़ी गप्पे लगाई, बड़ा बड़ा ही अच्छा लगता है हमेशा आपसे बातचीत करके। और एक बात खास आपकी थोड़ी देर बाद सुनाते हैं गाने से पहले, जो कि हमें न्यूज ब्रेक की तरफ लेके जाएगा, लेकिन उससे पहले जनाब तारिक जुल्फी भाई जान से बड़ी मुख्तसर सी बात होती है, बड़ी जामे और बड़ी खूबसूरत बात होती है। उनके सभी दोस्तों के नाम आने वाला गीत होगा। बहुत शुक्रिया तारिक जुल्फी भाई जान, आपने कहा रेडियो से टोन किया, आपकी आवाज़ सुनी, आपकी बातें सुनी, मज़ा आ गया, हमें आपकी आवाज़ सुन के मज़े आ गए जनाब, मज़ा नहीं मज़े। और अब्दुल कयूम भाई जान जनाब, आपने फ्राइजिंग हॉल से कॉल कर रखी है और आपने बताया कि आपके घर वाले भी हमें सुन रहे हैं, और उन्होंने बताया है कि सोचल क्या है, ये कौन सी सब्जी है, और जरा आप बताएं जनाब आखिर ये कौन सी सब्जी है। और किसी ने जनाब अपने कजन को अपनी कजन को कॉल की, उनकी कजन ने तस्दीक की है गूगल पे सर्च करके कि सोचल फलियों वाली सब्जी नहीं है। हाँ जी सब्जी है, पर ये सोचल कौन सी वाली सब्जी है, कभी आपने खाई है या देखी है, किसी के घर पकी हो और आपने चखी हो किते पकी होवे ते तुसी चखी होवे दस्यो। और जनाब जो बात हमने कहा जिसकी वजह से हमें 440 वोल्ट का झटका लगा, झटका लगा, वो ये थी कि जनाब किसी की बेल खराब हो गई थी, उन्होंने जनाब बेल वालों को बुलाया के फोन किया, उन्होंने कहा जनाब हमारा जो डोर बेल है ना वो खराब है। बड़ी देर इंतजार किया, बड़ी देर इंतजार किया, घंटे गुजर गए कहीं, उन्होंने कहा था जनाब थोड़ी देर में बंदा पहुंच जाएगा आपके पास, बेल आपकी ठीक हो जाएगी, लेकिन जनाब बड़ा इंतजार किया उस बंदे ने, कोई नहीं आया। तो वो बेल ठीक करने वाले की दुकान पे गए, उसको बोला जनाब हमने बड़ी देर पहले आपको बोला था और आपने कहा जी कुछ मिनटों में बंदा पहुंच जाएगा। वो जो दुकान वाला था ना बॉस, उसने अपने मुलाजम को आवाज दी गुस्से से। वो मुलाजम आया तो उसने पूछा भाई मैंने तुम्हें बोला था कि शकील भाई के घर की बेल खराब है तो ठीक करनी है, तुम्हें भेजा भी था, तो क्या किया तुमने, बेल तो अभी भी खराब है। तो उसने बोला जनाब हम गए शकील भाई के घर की तरफ, हम गए उनके घर पहुंचे, हमने बेल बजाई, किसी ने आगे से जवाब ही नहीं दिया। तो फिर मैं वापस आ गया, हाय मैं समझा मैं कल्ला ही सादा हूं।

0: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: जी जनाब, तो सनराइज रेडियो के जो स्टूडियो की घड़ी है वो बता रही है कि टाइम हो चुका है दिन के 4:05, 4:05.

जी जनाब, आप सुन रहे हैं काशिफ को सनराइज रेडियो पे। आज है दिन संडे का और 2 से 5 मेरा और आपका साथ रहता है। आज भीगा भीगा सा मौसम, कहते हैं मौसम दिल का अच्छा होना चाहिए, हर मौसम अच्छा लगता है। बारिश हो, धूप हो, बादल हो, आंधी हो,

जी जनाब, कभी कभी दिल करता है आपसे दिल की बात कर ली जाए, शायद आपके काम भी आए अगर आपके सीने में एक दिल है। मदीहा, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरात वाली मदीहा जनाब, आपसे हमने पूछा जी कौन बात कर रहा है, तो आपने कहा पहचाना नहीं, लास्ट वीक आपसे बात हुई थी तो हम आपको नहीं भूले, आप हमें कैसे भूल गए। चले मान लिया कि आप हमें नहीं भूले, भूले हम भी नहीं थे। अब कोशिश करेंगे आपकी आवाज पहचान लिया करें। वैसे मान लिया कि आप हमें नहीं भूले और दिल से मान लिया, तो बता रहे थे हम आपको। जी हाँ मदिया, ये गाना आपके लिए होगा खास तौर पे, और आशा जी ये गाना आपके लिए भी होगा। जितनी भी शायरियां आपने हमें सुनाई, उन सब शायरियों के जवाब में जनाब ये गीत आपके लिए। पहले मजाक मजाक में गीत थे, ये सच्ची मुच्ची का गीत है आपके लिए। आपने बड़ी मेहनत से जनाब रात को बैठ के वो कुछ लिखा हमें सुनाने के लिए। आपकी तीनों गजलें बड़ी प्यारी थी, बिल्कुल आपकी तरह की, मेरी तरह की नहीं, फिर तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगी ना, आपकी तरह की यानी कि खूबसूरत। और मान लिया कि ये तीनों गजलें आपने हमारे लिए लिखी थी, मान लेते हैं ना। और जनाब यही गीत सोहा आपके लिए, चौधरी रुखसार भाई आपके लिए, गजल आपके लिए, और ब्यूटी पार्लर से जो तैयार होके निकल चुके होंगे अभी तक उनके लिए, अब्दुल कयूम भाई फ्राइजिंग हॉल वालों के लिए, शकील भाई बरले वालों के लिए, और तारिक जुल्फी भाई के लिए, और चौधरी रुखसार के सभी दोस्तों के लिए, बर्मिंघम वालों के लिए, उनके कजन के लिए, उनके देवर के लिए, उनकी नंद के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, और जो नाचोस खाएंगे शाम को डिनर में उनके लिए, जो क्रिस्प खाते खाते हमें कॉल कर रहे थे उनके लिए, और जो कीथली जाते हुए यासर भाई और या कीथली पहुंच चुके होंगे अभी तो, शो के शुरू में आपने याद किया था, अदनान भाई आपके लिए, लीड से हमें कॉल की थी वो साजद भाई, नहीं जनाब माजद भाई, की कर रहे हैं काशिफ, जब जब तू जज्बाती होता है ना काशिफ, कोई ना कोई चन चढ़ाता है, वापस आ जा ट्रैक पे। दिल की गलियों में खो जाने का कोई खास फायदा नहीं, बाज आ जा काशिफ। चले जनाब, दिल के तार छेड़े हैं आपको, दिल के तार और साज कुछ सुनाई देंगे हमारी बातों में और इस गीत में। वाजिद भाई लीड्स में हमें बड़े प्यार से आप कॉल करते हैं, बहुत शुक्रिया, आप हौसला अफजाई करते हैं, बहुत सालों से आप हमें सुनते हैं लेकिन अभी आपने कॉल करनी शुरू की है बताने के लिए कि आप बहुत सालों से हमें जानते हैं, बहुत शुक्रिया। और जनाब मेजर ताशवीन यूसुफ जी आपके लिए, और जनाब हमें इस मौके की तलाश थी कि जब हम थोड़ा सा दिल की बात कर सकें। हमें लास्ट वीक कॉल की थी जीत कौर जी ने, बड़े सालों से हमें कॉल करती हैं वो, आपने उनका नाम सुना होगा, उनके साथ हुआ करते थे प्यारा सिंह जी। लास्ट वीक मैं बात करना चाहता था लेकिन मेरी इंसान है हम भी, हिम्मत नहीं हुई। आज कोशिश की, आज मैं सोच के आया था कि वो उदार मोहब्बतों का कर्ज मैं चुकाने की कोशिश करूंगा जो प्यारा सिंह जी जब हम में मौजूद थे। जीत कौर जी ने जब लास्ट वीक मेरे साथ जिक्र किया तो मुझे एक शौक सा लगा, क्योंकि जब भी जीत कौर जी कॉल करती होती थी या हैं तो पहले फिलबदी हम पूछते हैं प्यारा सिंह जी कैसे हैं, और कभी कभार जब प्यारा सिंह जी कॉल किया करते थे तो हम एकदम से पूछते थे कि जीत कौर जी कहाँ हैं, तो वो कहते थे वो किचन नीचे यार, तो वो मुझे हमेशा यार कह के बुलाते थे, और हमेशा प्यारा सिंह जी जब हम

अंदाज और उनका प्यारे अल्फाज और वो जो टाइटल और वो जो लकब उन्होंने मुझे दिए हुए थे, कुछ खास तौर पे वो मुझे यार कहा करते थे। और जो कभी आपके साथ अच्छा हो या बुरा भी हो, तो जब वो याद आता है ना, जब आप में ना रहे, तो फिर दिल थोड़ा सा गमगीन होता है। तो वो मुझे कहा करते थे, जब भी कॉल करते थे तो बड़े ही खुश होके, यार मैं तेरियां गल्लां सुनना पिया ते हसन लगियां मैं ते जीत कौर, ते तां तैनूं कॉल कीती है दसण वास्ते कि असी सुनन लगे हां। कमाल है, आज तक इतने सालों में उन्होंने कभी कोई कड़वी बात, कोई खोरी बात, कोई दिल दुखाने वाला लफ्ज नहीं बोला था। लेकिन वो हमसे दूर हो गए, हम में नहीं रहे। मेरे लिए ये एक शौक था। और जीत कौर जी, रब तुहानू हौसला देवे, हिम्मत देवे। जिसका नाम प्यारा था वो खुद भी बड़ा प्यारा था। जो हम में नहीं रहा, उसकी बातें भी फूलों जैसी थीं। जब उसके मुंह से जड़ती थीं तो लगता था फूल जड़ते हैं। चलें जनाब, जिस रौनक के साथ वो हम में रहे और जिस रौनक का और खुशियों का और एनर्जी का बायस वो बनते रहे हमारे लिए, उसी एनर्जी से उनको याद किया, कोशिश की हमने। और जनाब, हमें पहली बार आपने आज फरमाइश की, और जरूर जनाब ये गीत आपके नाम, जितने भी नाम हमने लिए, और जो हम में नहीं रहे हो के भी हैं या नहीं हैं, कुछ लोग मर के हम में जिंदा रह जाते हैं और कुछ लोग जिंदा रह के भी हमारे लिए मर जाते हैं। अच्छा, जो हम में ना रहे और दुनिया से चले जाएं लेकिन जिंदा रहें, उनका दुख कम होता है। और जो जिंदा तो हों लेकिन हमारे लिए मर जाएं, उनका दुख बड़ा गहरा होता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा लोग हैं जो जिंदा होते हुए भी आपके लिए मर गए हैं, तो याद रखिएगा, मैंने जहां से बात शुरू की थी वहां पे उस नुक्ते पे बात लेके आया हूं, ताकि आपका भी भला हो। कभी हम भी जनाब दिल की सुनते थे और खो जाते थे उन लोगों के गम में के जो जिंदा तो हैं लेकिन ऐसे जैसे मर गए हों हमारे लिए। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए आप अपने आप को गमगीन ना किया करें। पता, जिंदगी रब ने दी है, ऐसे लोगों ने नहीं दी होती आपको। और जिनके लिए आप बेमायनी हो जाएं, उनकी जिंदगी में आपकी कदर ना रहे, आपका कोई होना ना होना एक बराबर हो जाए ना, ऐसे लोगों के लिए आप भी ऐसा दिल से और दिमाग से कबूल करके उनकी हसीयत इतनी सी जरूर रखा करें कि उनके होने और ना होने से हमें भी फिर फर्क नहीं पड़ता। बस ये सोचिएगा कि ये टू वे ट्रैफिक है, जिसके लिए आपका होना ना होना बराबर है। अगर उसके लिए आप दिल में बहुत सारी जगह रखें और उसको याद करते रहें हर वक्त, तो ये आपके जज्बों की, आपके जज्बात की तोहीन है। तो ये इन जज्बों की तोहीन ना कभी होने दीजिएगा। जो आपको बुला दे उसको उस जगह रखें। कि जब कभी आप अपना जूता भी पहने लगें, तो आपको पता है जूते के नीचे वाली साइड कभी आपको नजर नहीं आती है। तो याद रखिएगा, बात कड़वी है लेकिन ये आपकी जिंदगी में बड़ी अहम है। इस पे अमल कीजिएगा, आपकी जिंदगी गुलो गुलजार है, रब ने बनाई है आपके लिए। इसको एक्सपीरियंस करें और अपनी जिंदगी में मुस्कुराएं और खुश रहें। क्योंकि याद रखें, इस वक्त जो आपके पास है, जो आपकी सांसें हैं, जो आपकी सेहत है, जो आप खुशबू महसूस कर सकते हैं, जिन कानों से मुझे सुन सकते हैं, जिन आंखों से आप देख सकते हैं, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो मिलियंस
मिलियंस की जायदाद और प्रॉपर्टी और पैसा देके आपके साथ आपकी जिंदगी स्वप करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं कि आप उनकी जगह चले जाएं और वो आपकी जिंदगी जिसको आप रोज सुबह उठ के कोसते हैं कि फिर वही बिल, फिर वही परेशानियां, फिर वही मजबूरियां, फिर वही दुख। तो यकीन माने बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, बड़े बड़े मिलीनियर, बड़े बड़े ओहदों पे जिन्होंने मुल्कों पे राज किया है, आज उनका हाल ऐसा है कि वो आपकी इस जिंदगी पे, 9 to 5 वाली जिंदगी पे, उसको आपके साथ स्वैप करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं और अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिलियंस और मिलियंस आपको देना चाहते हैं उसके बदले। लेकिन खुद आपके बदले ये मिडिल क्लास की जिंदगी, जिसको आप नेमत नहीं जहमत समझते हैं, वो चाहते हैं कि आप उसके बदले वो जिंदगी उनको मिल जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए जो आपके पास है उसकी कदर कीजिएगा, समझिएगा मेरी बात को, फिर देखिएगा आप ग्रेटिट्यूड और थैंकफुल कितने शुक्रगुजार होंगे और आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी आपको।

0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
4: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
3: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
5: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
6: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रैडफोर्ड 723030।
7: You are listening to Sunrise.

जी जनाब, बहुत ही खूबसूरत सफर रहा आज का, साथ रहा आपके साथ। और चौधरी रुखसार भाई ने दिल की बातें हमारी सुन ली, समझ ली, और आपने इस तरीके से उनको बयान किया कि हमें पता लग गया कि आपको बिल्कुल हमारा लफ्ज बा लफ्ज समझ आ गया। बात के दो रुख थे, एक बिछड़ने वाले, बिछड़ के भी साथ रहते हैं हमेशा आपकी सांसों में, और कुछ बिछड़े तो नहीं होते लेकिन इस तरह के होते हैं कि जैसे वो है ही नहीं, थे ही नहीं कभी। तो बिल्कुल आप सही समझे जनाब, आपको बातें हमारी अच्छी लगी, समझ लगी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आशा जी, आपने दोबारा से कॉल की, आपको भी हमारी बातें अच्छी लगी। जनाब इस नियत से बात नहीं की थी कि आपको अच्छी लगे या कोई वावा कार या जे जे कार के लिए, बस दिल की बात होती है और कभी कभी हम भी दिल के समंदर में गोता लगा लेते हैं। दिल की माननी चाहिए कभी कभी, और जो आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस होता है उसका फायदा अगर दूसरों को ना पहुंच सके कि आप पे क्या गुजरी और वो जो कार गुजारी थी उसमें से आप कैसे निकले और बाकी रब की मखलूक को उसका फायदा ना पहुंचे और वो मखलूक भी उसी तरह चरखी में पिसे और रगड़ा खाए, तो फिर आपके इल्म का कोई फायदा ना हुआ, क्योंकि वो आप तक ही रहा। इल्म रोशनी है, ये रोशनी फैलनी चाहिए, नॉलेज हो, आपका एक्सपीरियंस हो। खैर मैं तो आपसे सीखता हूँ जनाब, हमारे पास एक्सपीरियंस कहाँ, बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ आज आपसे और बहुत कुछ समझा भी, बहुत कुछ महसूस भी किया। बड़ी प्यारी घड़ियां गुजरी, बड़ा प्यारा वक्त गुजरा, बड़े प्यारे पल हो गए आज के, बड़े कीमती हो गए। हाजरा जी आपका शुक्रिया, आपकी दुआएं मेरे साथ होती हैं, आपका प्यार, आपका हौसला हमें दलेर से शेर कर देता है, पर शेर बगैर दुम वाला। वाजिया करना जरूरी है ना, तुसी कितने शेर पिक्चर करते रहो, इमेजिन करते रहो, वो भी दुम वाला। हमारी तो सारी बनी बनाई साख पे पानी फिर जाएगा ना, कोई पता नहीं लगता मुझे बात मेरी किधर से किधर चली जाती है। मुझे शक हो रहा है, मुझे कुछ हो गया है, कहीं मुझे प्यार तो नहीं हुआ। तुझे ना

0: जनाब, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, और ज़बरदस्त गीत आपने सुना और कुछ दोस्तों ने कॉल की। मोहम्मद भाई, पहली बार आपने कॉल की और आपको हमारी बातें दिल को लगी, इसलिए आपने पहली बार हमें कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद गीत आएगा हमारे मोहम्मद भाई के लिए, और आपको हमारी बातें समझ आई और उनकी सच्चाई महसूस हुई, बहुत शुक्रिया। नीयत रब जानता है जनाब, और बर्मिंगम वालों बहुत शुक्रिया, आपको रुलाना हमारा मकसद नहीं था। और काफ़ी मतलब अब दुखी नोट पे पहली बार ऐसा हो रहा है, वैसे मैं आप सबको चीयर अप करने आता हूँ, पर आज जनाब बात हमारी आपको अच्छी भी लगी, दिल को भी लगी, लेकिन बहुत सारे कॉलर्स जो हमारे साथ आए वो काफ़ी गमगीन हो गए, और बहुत शुक्रिया। ऐसा मकसद नहीं होता है, लेकिन कोई बात सच्ची होती है, ऐसी होती है ज़िंदगी में दूसरों के काम आ सके। तो आप रोज़ाना उठती हैं, आप अपनी अम्मा को याद करती हैं, और वो जहाँ पे भी हैं वो आप पे फ़ख्र करती होंगी, ये याद रखिएगा। जैसी आपकी तरबियत है, जैसी आपकी बातें हैं, जैसा आपका दिल है, ये सब आपके पेरेंट्स की वजह से और रब का करम है। और जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं रहीं जनाब, यही कहेंगे कि रब उनके दर्जात बुलंद करे। और बर्मिंगम वालों, कीप स्माइलिंग, मेरा मकसद आप सबको चेहरे पे मुस्कुराहट लाना होता है, लेकिन मेरी बात आप इस तरह से सारे लेंगे तो मुझे जो है ना थोड़ा सा गिल्टी भी हो रहा है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है कि आपको मेरी बात दिल को लगती है, चाहे जैसी भी हो। और धोखे की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, असल ज़िंदगी में आपकी वालदा या जिनकी माएँ या जिनके पेरेंट्स दुनिया से चले गए हैं, या जितने भी प्यारे दुनिया से चले गए हैं, चाहे जीत गौर जी के हम सफ़र जो रहे, हम सबके बड़े चहीते प्यारा सिंह जी, असल ज़िंदगी उनकी है। ये हम आरजी धोखे की ज़िंदगी में हैं और एक टेस्ट में हैं, और अगर हम इसकी नज़ाकत को समझ जाएं तो यकीन माने हम जो है ना बहुत परेशान हो जाएं कि ये एक टेस्ट है हमारा, कि हम कैसे किसी की तरफ़ देखते हैं, कैसे किसी की तरफ मुखातब होते हैं, कैसे किसी के लिए रोड पे चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, रास्ते में किसी राह गुज़र के लिए आसानी पैदा करते हैं, कैसे रब की मखलूक के हम काम आते हैं। और जैसा हमारी एक और सिस्टर आई थी, उन्होंने बात की कि उनको बात इसलिए अच्छी लगी कि हमने कोई मज़हब का बैरियर बीच में नहीं आने दिया, इंसानियत के नाते हमने बड़े जिस अंदाज में किसी के बारे में बात की, उनको अच्छा लगा कि वाकई इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, बनाने वाला सबको रब की ज़ात है। और हाजरा जी, आपको भी बड़ी अच्छी लगी बात, और कुछ और तरह की बातें आपको अच्छी लगी, आपने हमें दुआएं दी दो जहानों में भलाई के लिए, अल्लाह पाक आपकी सुने जनाब, और सबके लिए दो जहानों की भलाई हो। बहुत शुक्रिया हाजरा जी, आपको अपनी पास्ट की ज़िंदगी हमारी बातों में जो है ना वो महसूस हुई, और आपने कहा काश ये बातें बहुत सालों पहले किसी ने हमारे साथ की होती तो हम सब कुछ लुटा ना चुके होते। तो बहुत सारी बातें हैं जनाब, बहुत सारे जज्बात हैं सबके हम तक पहुंच रहे हैं, और जो है ना बहरहाल कोशिश हमारी जो वो आपको खुश करने की होती है, लेकिन इसीलिए मैं दिल की बातें नहीं करता हूं, क्योंकि दिल की बातें फिर बहुत सारे दिलों पे जाके लगती हैं, और मैं ऐसे ही हंसने हंसाने आता हूं। बाकी मेरे बाकी साथी प्रेजेंटर्स बड़े कमाल की जॉब करते हैं, मेरी एक जॉब जो है ना वो एक समझे एक मदारी की तरह एक जोकर की वाली नौकरी है मेरी, और बस वो एक जोकर और सर्कस और एक मदारी वाला काम करने में अब आता हूं इस नीयत से। लेकिन चलें, आइंदा दिल की बातें करने से पहले हम ज़रा दो बार चार चार बार सोचेंगे जनाब। बहरहाल जनाब, ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं खूबसूरत से गीत के साथ, फिर मजीद गपशप को आगे बढ़ाते हैं।
1: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है, महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी कुशादा सादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
3: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
4: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
3: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
5: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
6: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
5: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
6: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 Oak Lane, Bradford 9, टेलीफोन 01274-056-014, सोफी ज्वेलर्स।
7: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
8: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दैट्स ब्रैडफोर्ड 723030।
9: Sunrise and music.
0: जी जनाब, ये गीत आप सबके नाम होगा। जाने से पहले एक बात हमेशा की तरह कहता हूँ, घड़ी आन पहुंची जुदाइयों की, वो छोड़ों की। आपसे दूर जाके आपके पास, आपके दिल में रहने की घड़ी आन पहुंची। अपनी यादों में, बातों में, चाहतों में और सबसे बढ़ के अपनी दुआओं में मुझे काशिफ को जरूर याद रखिएगा। अगली मुलाकात बशर्ते जिंदगानी, बशर्ते सेहत एक बार फिर जनाब आपके साथ होगी। संडे के दिन 2 से लेके 5 बजे तक। जी जनाब, बशर्ते जिंदगानी, बशर्ते सेहत। फिर से महफिलें सजेंगी, फिर से गप्पें होंगी, फिर से रौनकें सजेंगी। मगर तब तक के लिए काम कीजिएगा मेरा, आप अपना बड़ा खास ख्याल रखिएगा। रखेंगे ना?

जो भी गीत होंगे सारे आपके नाम होंगे, सभी सुनने वालों के नाम होंगे। आपका और मेरा, मेरा और आपका, अल्लाह ने के बाद।

0: इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
3: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
2: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.

0: selling a property. Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
1: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
0: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274 559565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ, जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे, जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
3: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुआ के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: buying or selling a property. Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
1: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
0: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274 559565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 3010, ब्रेडफोर्ड 7230 3010।
4: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।
4: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
5: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
4: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
6: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
3: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
4: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
3: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
5: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
6: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
5: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
6: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता छाया, कुछ नहीं हो सकता। मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता जिसे लड़ने से पहले ही आदमी हार जाता है। मैं हार गया हूं छाया।
1: सुदीप।
0: हाँ छाया, लगता है यहां तो सिर्फ दूसरों के सर पे पांव रख के ही आदमी ऊपर चढ़ सकता है। सीधा रास्ता तो सिर्फ वहां जाता है जहां गुहा चला गया। इस शहर के लोग रोने के लिए कंधा नहीं देते, मरने तक इंतजार करते हैं कंधा देने के लिए।
1: मैं तुम्हारे साथ हूं सुदीप, तुम्हारे साथ छोटी सी खोली में भी अपना घर बसा लूंगी।
0: झूठे आदर्श की बात मत करो, चिढ़ होती है मुझे। घर बना लोगी, कपड़े की लीर का दिया जलाओगी और शाम को आधी सूखी रोटी खिलाकर सोचोगी कि हम लोगों ने घर बना लिया। हाथों में पेट लिए घूमोगी तुम, और मैं पेट पे हाथ रखे घूमूंगा। इसे घर कहती हो तुम? नहीं छाया, बहुत देखा है ऐसे पीले चेहरों वाला आदर्श।
1: तुम निराश होगे सुदीप, मुझे विश्वास है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा।
0: हाँ, विश्वास, विश्वास, तुम्हें विश्वास है ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा? है, एक रास्ता है। हाँ छाया, मैंने भी अपनी सीढ़ी चुन ली। मोदी,
1: मोदी
0: तुमसे शादी करना चाहता है ना, कर लो शादी। समझने की कोशिश करो छाया, कितने दिन जिएगा और कितने दिन जी सकता है। हाँ छाया, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ इसके बाद ही हम लोग अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं।
1: छे, किसी की कब्र पे अपना घर बनाऊंगे?

0: buying or selling a property. Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
1: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
0: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274 559 565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

0: Ladies and gentlemen, party people in the place to be, all you listeners.
1: Salaam namaste, salaam namaste.
2: जिससे दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा, हो ऐसी
3: खान
4: हम शरीफ क्या हुए,
5: मैं वापस
4: पूरी दुनिया ही बदमाश
5: देखो मैं हूँ कहाँ
4: आ रहा हूँ पलट के

0: Assalamu alaikum and namaste. Khush aamdeed. Welcome to Sunrise Radio 103.2 FM. Aapka host dost yahan pe hazir hai. Mera naam hai Beza. I'm here till 11 o'clock p.m. aur aap sabke naam rang mehfil ka program hai 01274-30-96-96 pe. Aur bahut shukriya aap sab doston jo mera saath de rahe on your listening to radio on 100.6 FM, 103.2 FM across the West Yorkshire and DAB Plus Bradford, Leeds, Halifax, Manchester, East Lancashire, Blackburn, Burley, Devon, Nelson, Accrington, Minton, Keene, Keighley, Ilkley, Skipton, or yahan pe aap sun rahe hain www.sunriseradio.fm aur bahut bahut shukriya aapka bhi aur आज का दिन जो बहुत ही खूबसूरत दिन है टुडे इज द 3rd ऑफ मई 2026 द वेदर हैज बीन सच अ अमेजिंग मौसम है लवली डबी रोमांटिक मौसम है कहां पे जा रहे हैं कहां पे आ रहे हैं व्हाट इज योर ब्यूटीफुल प्लान फॉर ब्यूटीफुल इवनिंग और यहां पे हमारे कंप्यूटर जी तो थोड़ी सी मस्ती मौज में आज और अल्लाह खैर ही करे और यहां पे इट जस्ट सम रीजन इट जस्ट फ्रीज ऑन मी आई डोंट नो व्हाई एंड कोशिश कर रहा हूं कि इसको शॉर्ट आउट करूं कि क्यों फ्रीज हो रहा है और यहां पे हम कोशिश करेंगे प्लान फॉर योर अमेजिंग And if you want to give me a call, it's 01274-30-96-96 pay. And I'm going to be playing for you the hit of the hour. I hope you're going to enjoy this wonderful tune. One of my favorite tune. Bahut hi khoobsurat geet hai. Aur aapke doston ke liye pesh karunga. Aur line chamak rahi hai, damak rahi hai. Aur hamari khush naseebi hai ki aap hamara saath de rahe hain. Bahut bahut shukriya aapka bhi. And if you are driving and drive with a car, if you're out and about, make sure to stick around with the Sunday Radio 103.2 FM. And this is the track that I will be playing, Hit of the Hour. Enjoy.
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Pakistan Jewelers. 1 Duckworth Lane, Bradford, BD9 5ER. Call now, 01274 491 442.

0: Right, that was the hit of the hour. आपने पसंद किया, enjoy किया, बहुत बहुत शुक्रिया. In the meantime, you are flashing away. बहुत बहुत शुक्रिया आपके सबका भी जो अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं. और यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन दिल भाग भाग हो गया कि आप सब हमें फ्लश कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं. बहुत अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है यहाँ पे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक.
1: Sunrise Radio. Your soundtrack, your time check.
0: Right, time in the studio is 13 minutes past the 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the Parviz Khan. Yeah, thodi si break ke foran baad, I'm going to mention all your beautiful names jo hume phone kar chuke hain, kar rahe hain. Bahut bahut shukriya aap sab ka bhi. Aur yahan pe choti si nanni munni si break, keep it locked.
2: Sunrise and music.
3: नफसेन जायकातुल मौत.
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक. गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं. टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें. मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1. टेलीफोन 7230300. दास ब्रेडफोर्ड 7230300.
5: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
6: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney.

0: money and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
1: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274 559565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Radio, and definitely on 103.2 FM and 100.6 FM across the West Yorkshire. और हमें अच्छा लगा, लाइनें काफ़ी जम आ चुकी हैं और काफ़ी बिजी भी हो चुकी हैं और काफ़ी हमारे दोस्त बाबा अजीज आ रहे हैं और हमारी खुश नसीबी है कि आप हमारा साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैड अ लवली कॉल फ्राम गिदन भाई, हमारे गुरु जी हैं, वेलकम जी हैं, खुश आमदीद है फ्राम मिल्टन कीन्स से हमारा साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, गुफ्तगु करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। देन वी हैड अ लवली कॉल फ्राम टिकट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमें याद कर रहे हैं, दुआएं दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू वेरी मच वाजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सिमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें याद किया। अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं। और यास्मीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमें याद किया है और हमें, हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा गिदन भाई और हमारे पापी जान, ये गीत आपके लिए भी गा और सब सुनने वालों के लिए गा। मुझे उम्मीद है यकीन के आप इंजॉय करेंगे, बहुत खूबसूरत गीत है। और यास्मीन, नो फॉरगेट यू एज़ वेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ हैं। नो फॉरगेट ऑल द चोरी चोरी छुपके छुपके लिस्टनर्स वेल, ये वो खूबसूरत गीत है, इंजॉय द ट्रैक।

Right, that was a wonderful tune, one of my favorite tune. आपने enjoy किया, बहुत शुक्रिया आपका भी. Thank you very much. Moving on to another beautiful track, और बहुत अच्छा लगा कि आप हमारा साथ दे रहे हैं. और ये भी गीत होगा आशीष जी आपके लिए, अतिकर साहब आपके लिए, coming from गिदन भाई हमारे मोहतरम में, और हमारे पापी जान सुमित्रा जी, बहुत शुक्रिया आपका भी. और आई बिलीव आशीष जी इज गोना कम एंड सी यू टुमारो. और ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ मिलने के लिए जा रही हैं, और ये भी हमारी कुछ नसीबी है कि वो आपके साथ जा रही हैं. माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, और हम आपके आपके लिए और उनके लिए दुआ गो हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और आशीष जी आपने उनकी देखभाल करनी है, लुक आफ्टर करनी है, ये गीत आपके लिए होगा. बहुत अच्छा लगा वाजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. आने वाला गीत आपके लिए पेश करूंगा, और आपके दोस्तों के नाम होगा, मुझे उम्मीद यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें याद कर रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपका भी, और हमें अच्छा लगा कि आपने हमारा साथ दिया और दे रहे हैं. माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया. चौधरी फरियाज साहब हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और चौधरी फरियाज साहब ये गीत आपके लिए, और चौधरी आसिफ फरियाज साहब हैं यह गीत आपके लिए. चौधरी फरियाज साहब हैं, और परवेज खान जी हैं, और महबूब लाई साहब हैं, तारक जुल्फी साहब हैं, और जवेद मीर साहब हैं, तारक भट्ट जी हैं, शकील साहब हैं, इरा खान हैं, आमिर शहजाद साहब हैं, चौधरी एम उस्मान साहब हैं, सफीउल्लाह जी हैं, वाजिब भाई हैं, होटल स्पेस से हैं, अयूब जवान साहब हैं, चौधरी मनीस चक्की वाले हैं, शफीद्दीन हैं, और ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब हैं, सलीम जी हैं, अतिकर साहब हैं, जंगीफ मजीद ब्रिश हैं, और चौधरी मुजफ्फर साहब यह गीत आपके लिए हो गया. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारे साथ दे रहे हैं, और शुक्रिया शुक्रिया. और ये वो गीत आपके लिए, और आपने इंजॉय करना है. Keep it locked with Sunrise Radio.

0: Right, that was amazing a tune और आपने enjoy किया बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी और यहाँ पे हम छोटी सी break करेंगे break के फौरन बाद आने वाला गीत होगा मोहम्मद रफी साहब आपके लिए होगा मोहम्मद सलीम साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी आप हमारा साथ दें thank you very much और हमें अच्छा लगे कि आप हमारा साथ दें thank you very much आपका भी और ये सुन के कि आप हमारा साथ दें और शाहनवाज बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी आप हमारा साथ दें thank you very much शफील से प्रोग्राम सुन रहे बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ छोटी सी break करेंगे करेंगे और keep it locked Sunrise and music
1: Buying or selling a property. Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
2: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
1: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally
3: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे पता नहीं कहां से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां
4: मैं जानती हूं उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था
3: सोफी ज्वेलर्स वो कहां है
4: Sophie Jewelers, 119-2121, Oak Lane, Bradford 9, telephone 01274-056-014, Sophie Jewelers.
5: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस चार छह और आठ बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल बेलव्यू रेजिडेंसेस लग्जरी कुशादगी और स्टाइल अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें
0: और आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करेंगे मुझे उम्मीद है यकीन कि आप एंजॉय करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और थैंक यू वेरी मच टू लवली कॉल अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप हमारा साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हमें अच्छा लगे कि आप हमारा साथ दे रहे हैं थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली कॉमेंट इज वेल बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी थैंक यू वेरी मच और ये सुन के कि आप हमारा साथ दे रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली और हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं और ये भी सुन के कि आप इंजॉय करें प्रोग्राम को गाने को एंजॉय करें और बहुत बहुत शुक्रिया और सईद एहसान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आप लंदन में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी फोन करने का हौसला अफजाई करने का दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब ये आने वाला गीत थोड़ी देर के बाद आपके लिए होगा मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे बहुत ही खूबसूरत गीत होगा आप दोस्तों के लिए होगा और मुझे उम्मीद है यकीन कि आप ही इंजॉय करेंगे वंडरफुल ट्यून फॉर ऑल दोज वंडरफुल कॉलर्स जो हमारा साथ है जो मेरी अपनी फैमिली है चौधरी रफार भाई ये गीत आपके लिए भी होगा आई होप यू कैन एंजॉय द वंडरफुल ट्यून एज वेल और बहुत अच्छा लगा कि हमारे मोहतरम डॉक्टर राय अजहर हुसैन साहब वो भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी नदीम मंसूर साहब हमारा साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी ये गीत मैं आपके लिए पेश करूँ नदीम मंसूर साहब ये गीत आपके लिए आप ही क्या याद करेंगे मेरे भाई अल्लाह पाक में शाम को खुश रखे शादाबाद रखे और ये गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा आई होप यू कैन एन्जॉय दिस वंडरफुल ट्यून और बहुत ही खूबसूरत गीत है और यहाँ पर ये नहीं पता लग रहा है कि यहाँ पर क्योंकि अजान जो अभी मुझे फ्लश हो रही है ये अजान अभी क्यों फ्लश हो रही है ये इसका क्या महीना है कि अभी टाइम तो नहीं है अजान का और ये अभी मुझे फ्लश हो रही है यहाँ पे और इसको भी हम काटेंगे यहाँ पे क्योंकि अजान अभी टाइम नहीं है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों को जो भी मेरे बहन भाई हैं साथी हैं दोस्त अहबाब हैं अजीज़ हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ ममनून उनका सबका कि आप ही हमारा साथ दें थैंक यू वेरी मच कीप इट लॉक्ड विद सुन रहे रेडियो 103.2 FM

राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, और हमें अच्छा लगा और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि हमने मसले को हल कर दिया, अदरवाइज इट गोना गो ऑन एवरीवेज एंड इट्स नॉट नाइस इज इट। एनीवे दैट वाज अमेजिंग एज वेल, और बहुत शुक्रिया आप सब का कि जो हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आई मिस्ड क्वाइट फ्यू कॉलर्स, आई डू अपोलोजाइज टू द लिसनर्स जो हमें याद करते हैं, उनकी लाइन जो ड्रॉप हो चुकी है, जो लाइन मिस हो चुकी है, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मुझे जो बहुत ज़रूरी काम करना था यहाँ पे और वो मैंने कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एंड दैट इज अमेजिंग एज वेल। और वो खूबसूरती है माशाल्लाह, ये हमें भी पता है, और ये जो है देखा है, और माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर द लवली लिसनर्स। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये गीत पेश करना है शब्द सुनने वालों के लिए होगा, नदीम मशहूर साहब आपके लिए, आतिका साहब आपके लिए होगा, गिदन भाई हैं, हमारी पापी जान हैं, वाजिद भाई हैं, अली भाई हैं, चौधरी रुखसार भाई हैं, गीत आपके लिए, अब्दुल कयूम साहब ने गीत आपके लिए गया, मुझे उम्मीद यकीन है कि आप इंजॉय करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पर हमने गीत पेश करना है ये

0: buying or selling a property. Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
1: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
0: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274 559 565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रैडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: राइट, वेलकम बैक लिसनर्स, एंड दैट वाज द हिट ऑफ द आवर। और यहां भी हमने करना है टाइम चेक, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: Well, our time in the studio is 12 minutes past 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep a lockdown, keep a lockdown with the Parviz Khan. Yahan pe choti si nanni munni si break hogi, break foran, and by the way, we're going to go back with a live call ka silsila hoga from now till 11 o'clock. Beautiful sham, aur aap sab ke naam yahan pe choti si nanni munni si break hogi. Keep a locked.
2: Sunrise Radio.
3: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
4: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
3: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted.
5: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
6: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
5: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
6: Sophie Jewelers, 119-2121, Oakland, Bradford 9, telephone 01274-056-014, Sophie Jewelers.
7: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

0: राइट वेलकम बैक लिसनर, योर लिसनर सुन राइज, और यहाँ पे लाइव कॉल का सिलसिला होगा और यहाँ भी हमारे साथ दे रहे हैं तीकर साहब हैं ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर से, वेलकम जी एन खुश आमदीद, वेलकम कहेंगे जी एन कहेंगे खुश आमदीद कहेंगे सत बिस्मिल्ला कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: माशाल्लाह कैसे थी बिदर शेख, सही ठीक है आपकी?
1: सब आपकी दुआएं।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कहने जी,
1: सबको सलाम करते हैं
0: रंगे
1: महफिल की
0: जी,
1: महफिल में जितने भी सितारे हैं
0: जी
1: और चांद है
0: जी,
1: सबको सलाम करते हैं।
0: वाह जी वाह,
1: तो एक खूबसूरत महफिल आपने सजाई हमेशा की तरह आज भी,
0: वाह जी वाह,
1: और खूबसूरत सॉन्ग सुनाए,
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत ही हसीन
0: बड़े प्यारे गीत थे माशाल्लाह, क्या कहने वाह।
1: जब भी आप लगाते हैं पता नहीं या तो चुन चुन के लाते हैं या फिर
0: बस देखता हूँ कि यहाँ पे बैठता हूँ ना तो मैं कहता हूँ कि ठीक है ये गाना होना चाहिए, और क्या सोचता हूँ ना कि क्या कौन सा मौसम है कौन सा दिन है, और उसके हिसाब से मैं हाँ गाना यहाँ पे पेश करता हूँ, और काफ़ी दोस्तों की माशाल्लाह वो खुश हो जाते हैं माशाल्लाह
1: है।
0: और फरमाशी किया कि वो हम जो ना वो मैं पेश करता हूँ वो खुश हो जाते हैं, तो मैं कहता हूँ ठीक है अच्छी बात है बड़ी बात है।
1: फरमाइश करने का वहाँ कोई ऐसा नहीं होता कि फरमाइश करे, क्योंकि सॉन्ग इतने खूबसूरत होते हैं
0: माशाल्लाह
1: कि वो उनको सुन के ही सारी फरमाइशें पूरी हो जाती
0: है। वाह जी वाह क्या कहने,
1: तो बहुत खूबसूरत आप स्टार्ट लेते हैं और इस तरह जाम भी उसका बहुत ही खूबसूरत सीन हमेशा की तरह होता है
0: जी,
1: तो आज भी होगा तो ये सब आपकी वजह से होता है कि आप इतने खूबसूरत महफिल सजा के बैठते हैं
0: जी,
1: तो अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे हमें
0: और
1: ऐसे ही सजाते रहे ये महफिल। तो सबकी सबको सलाम करते हैं, खासकर मेरी सखी सहेलियां हैं सरा जी हैं, गिदर भाई हैं, सलीना जी हैं, आसिया जी हैं, रशीन जी हैं, शाहपरी हैं, जुलेखा जी हैं, रुखसाना अफजल हैं, सितारा जी हैं, और चौधरी फरियाज साहब हैं, और चौधरी फरियाज साहब तो आएंगे और हमेशा
0: बड़ा ही खूबसूरत है वो वैसे ही करते हैं और गाना भी गुनगुनाते हैं आजकल, वो शायरी शेर शायरी बड़ी कमाल की करते हैं बड़ी खूबसूरत,
1: बहुत खूबसूरत उनकी पंजाबी शायरी होती है। आपके पूरे प्रोग्राम में एक ही शायरी पंजाबी की जो पेश करते हैं वो चौधरी फरियाज साहब है
0: जी,
1: तो इंशाल्लाह आएंगे और सब उनकी सुनेंगे जो शेर शायरी करेंगे
0: जी,
1: और जवेद मीर साहब हैं, नदीम मंसूर साहब हैं, उनके टप्पे
0: नदीम साहब तो आज कुछ धमाका करेंगे, आज धमाका करेंगे और क्या कहने,
1: धमाका तो वो हर रोज ही करते हैं
0: जी जी, क्या कहने
1: मतलब जब भी आपका प्रोग्राम होता है वो हमेशा खूबसूरत सॉन्ग और टप्पे वगैरह सुनाते हैं जिनको कभी कभी सुनने को मिलते हैं।
0: वाह जी वाह,
1: और पापा जी हैं उनको बहुत बहुत सलाम, और शकील जी हैं उनके आने से तो फिर सज जाती है शायरी
0: जी,
1: उनकी भी सलीम भाई हैं, अब्दुल कयूम साहब हैं
0: जी,
1: और मुदस्सर कियानी साहब हैं, अब्दुल कयूम साहब हैं
0: जी,
1: वाजिद भाई हैं, सजाद साहब हैं, साजिद पहलवान साहब हैं,
0: फिर
1: रहमान साहब हैं, और महबूब इलाही साहब जब आते हैं खूबसूरत
0: आज वो गाना कुछ ना कुछ लेके आएंगे, डेफिनेटली गाना तो लेके आएंगे, वाह क्या कहेंगे उनके इंतजार है,
1: शायरी भी उनकी बहुत
0: बड़ी खूबसूरत है, और आज मैंने सुना है कि वो आज आएंगे वो गाना सुनाएंगे क्या कहेंगे जी।
1: तारिक भट्ट साहब हैं, राणा नवीस साहब हैं, आसिफ रियासत साहब हैं, राव अजहर हुसैन साहब हैं, चौधरी रुखसार साहब हैं, और चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, सबको बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम,
1: तो शायरी है सबकी नजर करेंगे
0: जी जी,
1: कहते हैं होंठों पे प्यास आंख में पानी लिए फिरूं, मैं दश्त में किसी की निशानी लिए फिरूं,
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: मैं दश्त में किसी की निशानी लिए फिरूं, इसका पता कोई भी बताता नहीं मुझे,
0: वाह,
1: तस्वीर उसकी बरसों पुरानी लिए फिरूं,
0: वाह क्या कहने,
1: तस्वीर इसकी बरसों पुरानी लिए फिरूं,
0: वाह,
1: मुझको शदीद धूप का एहसास ही नहीं, मुझको शदीद धूप का एहसास ही नहीं,
0: वाह,
1: मैं अपने साथ शाम सुहानी लिए फिरूं,
0: वाह,
1: मैं अपने साथ शाम सुहानी लिए फिरूं, मुझे अगर सुने तो जमाना भड़क उठे,
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: मुझे अगर सुने तो जमाना भड़क उठे, सीने में एक ऐसी कहानी लिए फिरूं,
0: बहुत खूब,
1: इस बात का समझने का मौका नहीं मिला,
0: वाह,
1: जिस बात के बहुत से मानी लिए फिरूं, दुनिया तुझे मैं देख चुकी हूँ करीब से,
0: वाह।
1: दुनिया तुझे मैं देख चुकी हूँ करीब से,
0: वाह।
1: यूं ही नहीं मैं शोला बयानी लिए फिरूं,
0: वाह जी वाह।
1: महबूब मेरे उम्र कट गई लेकिन मैं आज भी,
0: वाह।
1: महबूब मेरे उम्र कट गई लेकिन मैं आज भी तेरी गली में अपनी जवानी लिए फिरूं,
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: यूं ही होंठों पे प्यास आंखों में पानी लिए फिरूं, मैं दस्त में किसी की निशानी लिए फिरूं,
0: वाह वाह क्या कहने।
1: तुझको क्या हो गया है कि चीजों को कहीं रखता है ढूंढता है कहीं, जो यहाँ से कहीं ना जाता था वो यहाँ से चला गया है कहीं,
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: आज शमशान की सी बू है यहाँ,
0: वाह।
1: आज शमशान की सी बू है यहाँ,
0: वाह।
1: क्या कोई जिस्म जल रहा है कहीं,
0: वाह।
1: हम किसी के नहीं जहाँ के सिवा,
0: वाह जी वाह।
1: हम किसी के नहीं जहाँ के सिवा, ऐसी वो खास बात क्या है कहीं,
0: वाह।
1: तू मुझे ढूंढ मैं तुझे ढूंढूं,
0: वाह वाह।
1: तू मुझे ढूंढ मैं तुझे ढूंढूं, कोई हम में से रह गया है कहीं, कोई हम में से रह गया है कहीं,
0: वाह।
1: कितनी वहशत है दरमियाने हजूम,
0: वाह वाह वाह।
1: कितनी वहशत है दरमियाने हजूम,
0: वाह।
1: जिसको देखूं गया हुआ है कहीं,
0: वाह।
1: मैं तो अब इस शहर में कहीं भी नहीं, मैं तो अब इस शहर में कहीं भी नहीं, क्या मेरा नाम भी लिखा है कहीं,
0: वाह।
1: इस कमरे से कोई होके विदा, इस कमरे से कोई होके विदा, इस कमरे में छुप गया है कहीं,
0: वाह।
1: मिलके हर शख्स से हुआ महसूस, मिलके हर शख्स से हुआ महसूस,
0: वाह।
1: मुझसे ये शख्स मिल चुका है कहीं,
0: बहुत खूब।
1: तुझको क्या हो गया है कि चीजों को कहीं रखता है ढूंढता है कहीं,
0: वाह क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब।
1: मैं हूँ तुम हो रात है और खामोशी,
0: वाह।
1: मैं हूँ तुम हो रात है और खामोशी,
0: वाह।
1: कानों में आवाज का रस तुम घोल रही हो, कोयल बोल रही है या तुम बोल रही हो,
0: बहुत खूब।
1: मैं हूँ तुम हो रात है और खामोशी,
0: वाह।
1: शाम तेरी आवाज में खोई खोई सी, मौसम पल पल तेरे सपने बनता है,
0: वाह वाह क्या कहने।
1: बहते पानी के मीठे हलकारों में,
0: वाह।
1: दिल मेरा और तुम्हारी सुनता है,
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: कलियां खिलती हैं या तुम लब खोल रही हो,
0: वाह।
1: कोयल बोल रही है या तुम बोल रही हो,
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: मैं हूँ तुम हो रात है और खामोशी, यूं तेरे होंठों से लफ्ज निकलते हैं,
0: बहुत खूब।
1: काली रात में जैसे चांद निकलता है, साज अधूरा है तेरी आवाज बिना,
0: वाह।
1: नगमा तेरा हाथ पकड़ कर चलता है,
0: बहुत खूब।
1: तुम अनमोल हो और सदा अनमोल रही हो, कोयल बोल रही है या तुम बोल रही हो,
0: वाह जी वाह क्या कहने।
1: मैं हूँ तुम हो रात है और खामोशी,
0: वाह वाह।
1: तू खुशबू है बिखरी है इतराफ मेरे, मैं दीवाना तेरे सुरों पे मरता हूँ,
0: वाह।
1: मैं दीवाना तेरे सुरों पे मरता हूँ,
0: वाह।
1: इससे बरकर और मोहब्बत क्या होगी,
0: वाह क्या कहने।
1: मैं तेरी आवाज को सजदा करता हूँ,
0: बहुत खूब।
1: इससे बढ़कर आवाज मोहब्बत क्या होगी, मैं तेरी आवाज को सजदा करता हूँ,
0: वाह वाह।
1: मैं हूँ तुम हो रात और खामोशी,
0: वाह क्या कहने।
1: कानों में आवाज का रस तुम गोल रही हो,
0: बहुत खूब।
1: कोयल बोल रही है या तुम बोल रही हो,
0: क्या कहने, बहुत खूब।
1: चांद बादलों में छुपा है, रात भी हैरान सी है, चांद बादलों में छुपा है, रात भी हैरान सी है, खामोशी में डूबी फिजा दिल की भी पहचान सी है,
0: वाह।
1: रोशनी मद्दम सी होकर कुछ कहानी कह गई, रोशनी मद्दम सी होकर कुछ कहानी कह गई,
0: वाह।
1: हर किरण में आज तेरी याद की पहचान सी है,
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: हवा भी आस्था चली जैसे राज कोई सुनाए, हवा भी आस्था चली जैसे राज कोई सुनाए,
0: बहुत खूब।
1: हर सिम तेरी खुशबू हर तरफ अरमान सी है,
0: वाह।
1: चांद बादलों में छुपा है, रात भी हैरान सी है।
0: वाह जी वाह, क्या के?
1: शुक्रिया, बहुत
0: ही खूबसूरत शायरी आपने की है, बड़े अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, और बड़ी कमाल की शायरी की है, कमाल ही हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। वाह, दैट वॉज अतिका साहिब, और बहुत शुक्रिया इनका भी। और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हैं नदीम मंसूर साहब, हमारा साथ दे रहे हैं, वेलकम कहेंगे, जी हां कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे इनको यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाई, क्या स्थिति भी ठीक ठाक से? ठीक है आपकी? माशाल्लाह, क्या कहने जी।
2: चलिए आज आपके लिए चंद मैये हैं।
0: हाय हाय, क्या कहने, सदके जावा सदके जावा, क्या कहने, वाह।
2: मौसम भी हल्का हल्का सा ठंडा सा है।
0: हाय हाय, क्या कहने।
2: और उस हवाले से एक नदी दे उस पारे माया मड़ा रहंदा।
0: हाय हाय हाय हाय, क्या कहने जी, क्या कहने, बड़ा ही खूबसूरत, वाह जी वाह।
2: तो ये आपकी नजर आपकी नजर खास सुनने वालों के लिए, और जो आ चुके हैं उनको भी सलाम, और जाने वाले हैं उनको भी सलाम।
0: जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर, माशाल्लाह, क्या कहने जी।
2: नदी दे उस पार माया माड़ा रेंदा, नदी दे उस पार माया माड़ा रेंदा, झुलसा में माये नाल।
0: वाह

0: हाय हाय हाय हाय, कमाल कमाल कमाल कमाल ही हो गया जी। वाह, आपने मेरे भाई कमाल ही के छिक्के छिक्के मारे ने। क्या कहना, सोना चांदी हर चीज आ गई, क्या है ला? और जबरदस्त, और कहां कहां से ये ढूंढ के लेके आ रहे हैं मेरे भाई, इतने खूबसूरत और कमाल ही करते हैं। और फंड मौला हो गए, और हर फल मौला हो गए माशाल्लाह, और बड़ी खूबसूरत आपकी आवाज भी है, और आजकल जो लेके आ रहे हैं कमाल कर दिए मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, और इतनी खूबसूरत है, ओए होए क्या आवाज़ है मेरे भाई की, आपने बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में, बड़ा ही प्यारा अंदाज है। आपने भी इंजॉय किया और हमने भी इंजॉय किया, और अगले आवर भी हम सुनेंगे कुछ ना कुछ आपको सुनेंगे, क्योंकि अभी दिल बुरा नहीं है, और दिल के लिए हम कहते हैं कि आप दोबारा आए माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये थे हमारे मोहतरम भाई दोस्त जितनी की मैं तारीफ करें, नदीम मनसूख, और यहाँ छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं और वेलकम कहेंगे, यहाँ छोटी सी ब्रेक की, और कीप इट लॉक्ड विद सनराइज रेडियो 103.2 एफएम।
1: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
2: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
1: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted.
3: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 Oak Lane, Bradford 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
5: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ, जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे, जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें। Sunrise Radio.
0: और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और हमने क्या करना है कि क्योंकि अभी जो ना यहाँ पे अजान शो हो रही है, वो भी इशा की, अभी जल्दी टाइम है और टाइम बहुत ही है, और यह मेरे ख्याल में गलत है, और यहाँ पे हम अजान नहीं पेश करेंगे क्योंकि अभी टाइम काफ़ी है। और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्त अहबाब हैं, अजीज़ हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया सबका भी। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं, और जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे मोहम्मद रफ़ी साहब, हमारा साथ दे रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, नाइस टू हैव योर कंपनी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा कि आपने इंतजार किया, वेट किया, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच,
6: बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी।
0: ये
6: और आप ठीक ठाक हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वेरी नाइस माशाल्लाह कि आपकी आवाज़ सुन के मैं बहुत अच्छा हो गई हूँ आगे से, और ये आपके लिए पेश करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ पेश नहीं कर सकूँगा, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर थोड़ा मस्ती मौज में आज थोड़ा ख़राब हो गया है, तो इस वजह से मैं कुछ नहीं पेश, ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया, और यहाँ भी मैं आपके लिए ये पेश करूंगा, ठीक है? मेरी तरफ
6: बड़ी मेहरबानी,
0: थैंक यू,
6: अल्लाह आपको खुश रखे
0: जी, आमीन।
6: सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम, मुझे सुनने वालों पे लाखों सलाम, और हमेशा की तरह आपकी अकीदत में ये पेश करने चला हूँ, सभी से जुदा जिसका अंदाज है,
0: वाह,
6: जमीन ता फलक जिसकी परवाज है, वही जिस पे हमको नाज है, परवेज खान जी आप ही की तो वो आवाज है,
0: हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने।
6: और हमेशा की तरफ फरमाइश करने वाले हैं आप, मुबीन अमीर
0: जी,
6: इब्राहिम साहिल साहिब, मौजम चौधरी मुजफ्फर, गुरु जी बाबी सेबा, डॉक्टर मलक, डॉक्टर हिम्मत कुमार, डॉक्टर बशीर पाशा, नर्स फरजाना एंड मिसेस जूली
0: जी,
6: रुस के तू चली गई कानुए नी दूर नी रुस के तू चली गई कानुए नी दूर नी सजना ददस देना सी केड़ा सी कसूर नी रुस के तू चली गई तू नए

0: जान सकी सारा जग जानदा प्यार विच मजा होंदा रुसण मनानदा नी रुसण मनानदा दिल वाला शीशा कीता कानू चूर चूर नी सजना ददास देना सी केड़ा सी कसूर नी रुस के तू चली गई
1: वाह वाह वाह
0: तू ते

0: किथे गए तेरे ओ कोल ते करार नी सजना दा दस देना सी केड़ा सी कसूर नी रुस के तू चली गई
1: क्या खेले
0: जुल्फ लहराई तेरी
1: वाह वाह
0: और मेरी तकदीर बनी
1: वाह
0: कोई देखे तो जरा क्या प्यार की तस्वीर बनी
1: क्या कहने
0: जब कभी बढ़ने लगे शाम के ठंडे साए तेरे देह के हुए रुखसार वहां काम आए गर्दिशे देहर ने जब जब भी उछाला मुझको तेरी महमूर निगाहों ने संभाला मुझको
1: आहा क्या कहने
0: कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो मेरे प्यार की एक असी इल्तिजा हो कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो मेरे प्यार की एक हसी इल्तिजा हो कोई मुझसे पूछे
1: वाह
0: मेरे दिल ने सजदे में गिर के जो मांगी मेरे दिल ने सजदे में गिर के जो मांगी मोहब्बत की पहली दुआ हो कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो

0: अगर एक चमन है तो फिर जान मन तुम भी बादे सबा हो। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो, मेरे प्यार की एक असी इल्तिजा हो। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। ओके सर जी,
1: वाओ वाओ वाओ, क्या कहने मेरे भाई, क्या कहने, कमाल ही कर दिया। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वाह, कमाल ही कर दिया मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस, ऑलवेज। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे गुरु जी हैं, वेलकम कहेंगे, जी हैं कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे उनको। यहाँ पे हमारा साथ दे रहे, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और हमें अच्छा लगा, ओ देखो ये मामेरी महफिल में कौन आ गया, हमारे गुरु जी आ गए। वेलकम जी, वेलकम, वेलकम, वेलकम, सत बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
2: वालेकुम सलाम भाई जान, कैसे हो?
1: मैं तो ठीक है, मजे में, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, मुझे दिल गार्डन गार्डन, दिल बाग बाग हो गया, क्या कहने। और ये वीकेंड हॉलिडे है
2: हमारे, तो मोहम्मद रफी साहब ने और आतिका जी की आवाज सुन के हम तो गार्डन में पूरा गुलाब का फूल आ गया,
1: गुलाब का फूल आ गया, क्या कहने जी, क्या कहने, वाह जी वाह वाह वाह वाह वाह वाह। और उस फूल में खुशबू आ रही है, बड़ी खूबसूरत खुशबू आ रही है आपकी, माशाल्लाह, सबकी आ रही है माशाल्लाह यहाँ पे। और हमें अच्छा लगे कि आपने हमें याद करें जी।
2: बहुत खुशबू है गुलाब के फूल में और मेरे गार्डन में लाइट भी जमजम हो रही है।
1: हाय हाय, जमजम हो रही है, वाह जी वाह, क्या कहने, वाह जी वाह, क्या कहने।
2: अच्छा, तो अतिका जी की पूरी लिस्ट वाले को, सबको हमारा बहुत बहुत सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम, वाह।
2: तो ये है मेरे महबूब का गाना है।
1: हाय हाय हाय, क्या कहने, मेरे महबूब का, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह।
2: तो ये अतिका जी के लिए और आशिया जी के, दोनों के लिए।
1: वाह जी, और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके घर में मेहमान आने वाला है और मेहमान को हम ही वेलकम कहेंगे। वाह वाह वाह वाह जी, वाह, क्या कहने,
2: बहुत खुशी की बात है,
1: बड़ी खुशी की बात है। और हमारा भी उनको सलाम पेश करना है, हम उनको भी वेलकम कहते हैं जी। जी
2: अच्छा, तो मैं शुरू करता हूँ
1: जी। जी,
2: याद में तेरी जाग जाग के हम,
1: वाह,
2: रात भर करवते बदलते
1: हैं, हाय
2: हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के, दिन दिन में चिराग जलते हैं।
1: क्या कहने,
2: जब से तूने निगाह फेरी है,

0: माता सितारे भी कम निकलते
1: क्या कहने क्या कहने
0: याद में तेरी याद जाग के हम रात भर करवते बदलते हैं लुट गई वो बहार की महफिल
1: क्या कहने
0: हम से प्यार की मंजिल जिंदगी

0: हैं, याद में तेरी जाग जाग के हम
1: वाह
0: करवटें बदलते हैं,
1: क्या क्या
0: तुझको पाकर हमें बहार मिली, तुझसे
1: वाह
0: छूटे कर मगर ये बात खुली, बागवान
1: वाह
0: ही चमन के फूलों को
1: वाह

0: तेरी जाग जाग के हम रात भर चलते बदलते हैं। क्या कहे तुझसे क्यों हुई दूरी, हम समझते हैं अपनी मजबूरी। तुझको मालूम क्या के तेरे लिए दिल के गम आंसुओं में डलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवते बदलते हैं। थैंक यू।
1: वाओ वाओ, क्या कहने मेरे भाई का, क्या कहने, इतना खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। क्या मेमोरी आपने रिफ्रेश कर दी है मेरे भाई, आपको मैं सलूट करता हूँ यहाँ पे हवा के दोष में, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमें अच्छा लगा इतने खूबसूरत गीत आप गुनगुनाने, और बहुत एक से बढ़कर एक गीत है, और वो भी क्या गीत आपने गुनगुनाया आज के प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई दोबारा ये आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी ब्रेक करेंगे, उसके बाद हम बाबी जान का सुनेंगे, एक गाना सुनेंगे और दो गाना सुनेंगे, और बाबी जान वी ऑल लव यू, और थोड़ा सा होल्ड करेंगे, छोटी सी ब्रेक करनी है, थोड़ा सा मैं लेट हो चुका हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया बाबी जान, वी ऑल लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक,
2: सनराइज रेडियो your soundtrack, your time check.
1: But right, the time in the studio is 47 minutes past 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night. Wherever you are, keep it locked on with the Babi Khan. And here we will break it for a bad. Our saath de rahe hain, Babi Jaan hain, hamare saath de rahe hain. And sab taiyar ho jao, ready ho jao, kyunki ek awaaz sunne ko milegi, wo hamari Babi Jaan ki hogi. Aur badi hi kamaal ki awaaz hai, badi hi khoobsurat, badi hi nayab awaaz hai inki hai. Aur ek aur hamare chahne wale, wo hamara saath de rahe hain. वो आपके लिए सरप्राइज होगी, वो कौन हैं और कहाँ से हैं और क्या उनकी आवाज़ है, क्या शायरी है। और मुझे इतने कॉल्स आ चुके हैं कि कहते हैं कि कहाँ पे गए, किधर गए, किधर गए, तो वो आ गए और बाबी जान भी आ गई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, बहुत बहुत शुक्रिया।
3: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
4: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
3: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
5: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
6: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
5: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
6: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रैडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ, जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे, जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
8: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274-488-935.

0: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम, और यहाँ भी हमने हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे भाभी जाने वन एंड ओनली वन सुमित्रा जी हैं ऑल द वे मिल्टन किंग्स से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम सलाम भैया।
0: भाभी जान, हाउ आर यू? आर यू गुड? वाह जी वाह वाह वाह वाह, ये सुन के मुझे अच्छा लगा। और ये आपके दोबारा ये देखो एनर्जी आ गई है, एनर्जेटिक हो गई है, माशाल्लाह क्या कहने, जबरदस्त जबरदस्त। जी वाह जी वाह, क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: सबको पहले मैं सलाम बोल दो।
0: जी जी गो अहेड।
1: हमारा शकील भाई है बलिंग द्वारा।
0: जी जी।
1: जावेद भाई है।
0: जी।
1: भाई है।
0: जी जी।
1: साजिद भाई है।
0: जी।
1: चौधरी फलिया भैया है।
0: जी जी।
1: बाजिद भैया, सजाद पहलवान भैया, इकबाल भैया, पापा खुशी भैया।
0: जी।
1: मोहम्मद रफी भैया।
0: वाह जी वाह, क्या कहने,
1: लोग आते हैं सबको मेरा सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम,
1: सबको मेरा सलाम।
0: जी जी। वालेकुम अस्सलाम। जी।
1: कितना लोग आने वाले हैं?
0: जी।
1: सभी तरह सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम। जी
1: भैया, वो लंदन वाला भैया आया था, गाना गाया था लंदन से।
0: हाँ हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं फोन करने के लिए। सईद इरफान जी जी जी जी जी जी,
1: बहुत अच्छा लगता है,
0: बड़ा ही खूबसूरत। जी वाकई
1: होगा तो जरूर आएंगे।
0: जी जी, वो तैयारी में है और वो कोशिश करेंगे फोन करने की। जी जी
1: जी, सलाम बोल दिया।
0: जी
1: मेरा पुराना गाना है, थोड़ा सेट है गाना।
0: कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
1: गुजरा हुआ जमाना,
0: माशाल्लाह क्या
1: कहने, आपकी खुदा तुम्हारा।
0: वाह वाह,
1: आपकी खुदा तुम्हारा।
0: वाह वाह वाह, क्या कहने,
1: खुशियाँ थी चार दिन की, आंसू है उम्र भर
0: की,
1: तन्हाइयों में अक्सर रोएंगे याद कर के, वो वक्त जो के हमने एक साथ ये किया, माफ़ खुदा तुम्हारा, माफ़ खुदा तुम्हारा।
0: वाह,
1: तुमको कसम है मेरी, तुम बेवफा न समझे।
0: वाह वाह, क्या कहने,
1: दूर सी मोहब्बत सब कुछ पड़ा सहेना।
0: वाह,
1: झूठा है जिंदगी का, झूठा है जिंदगी का,
0: अब
1: तेरी कहा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। मेरे लिए सहर भी आई रात बन कर, चला मेरा जनाजा मेरी बार के, अच्छा हुआ तुमने, अच्छा हुआ तुमने देखा नहीं नजारा, खुदा तुम्हारा।
0: वाह वाह,
1: तेरा हुआ जमाना, आता नहीं दोबारा, खुदा तुम्हारा।
0: वाह,
1: खुदा तुम।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बहुत ही खूबसूरत आपने गाना गुनगुनाया, बहुत अच्छा लगा। और हमारी प्यारी बहना है यास्मीन साहिबा हैं, वो आपका शुक्रिया अदा करने, इतना प्यारा गीत आपने गुनगुनाया। और जी जी, और बहुत अच्छा लगा। और सिमी जी आपका शुक्रिया अदा कर रही हैं, अतीका साहिबा हैं वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और गिदन भाई का शुक्रिया अदा करेंगे। कौन?
1: सिमी जी।
0: हाँ सिमी जी वहाँ आएंगी और वो कहती हैं कि आप साहब आ जाएं, और अच्छा लगता है कि वो जब वो फ़ोन करती हैं वो कहती हैं कोई बात नहीं कि किसी और को टाइम दे दे मेरा, तो वो आती हैं और प्रोग्राम में शिरकत करती हैं, तो हवा के दोष में इंशाल्लाह अभी वो आएंगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। और बहुत अच्छा लगा भाभी जान, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आई हैं और इतने खूबसूरत गीत लेके आई हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है, बड़ी प्यारी आवाज़ है। और नहीं भाभी जान जब भी आप गाना गुनगुनाती हैं ऐसा लगता है कि अभी गाना रिलीज हुआ है, और जब भी आपकी आवाज़ सुनते हैं अच्छा लगता है, सब सुनने वाले पसंद करते हैं आपकी आवाज़ को, तो बहुत अच्छा
1: लगता है। लता जी जैसे वो लता जी हमारी आए ना जल्दी जल्दी,
0: नहीं नहीं आपकी कौन कहता है कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं, कौन मुझे पहले ये बताओ, कौन कहता है ये मुझे पहले बताओ। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये आपकी गलत फहमी है, और ये आपकी इतनी प्यारी आवाज़ है, बड़ी खूबसूरत न्याली आवाज़ है, बड़ी प्यारी आवाज़ है, और हमें अच्छा लगता है जब आप शिरकत करते हैं प्रोग्राम में, और माशाल्लाह इतने खूबसूरत गीत लेके आते हैं हमारे गुरु जी भी, आप भी माशाल्लाह। नहीं नहीं नहीं आपके गाने की शौक मुझे पता है, आपकी शौक है और हमें भी शौक है, आपके सुनने की आवाज़ में सुनेंगे और इतने अच्छे गाने गुनगुनाते हैं और तैयारी करते हैं, इंतज़ार करते हैं हमारे लिए कब आएंगे, तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरी भाभी जान बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ देखो देखो ये खूबसूरती होती है, देखो ये आपका प्यार है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और गॉड ब्लेस यू दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी जो प्यारी बहन है वो कल को आएंगी, तो उनको हमारा हमारी तरफ से सलाम पेश करना, उनकी देखभाल करनी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, यू लुकी, यू बहुत लुकी है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Wow, that was हमारे भाभी जान और हमारे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, हमें अच्छा लगता है कि वो आए, और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह आज हमारा जो प्रोग्राम है, ओए होए होए होए होए होए, क्या कहेंगे क्या कहेंगे, देखो हमारी महफिल में आज कौन आया और किसकी खूबसूरत आवाज़ है, बड़ी प्यारी आवाज़ है, और यहाँ पर आवाज़ सुनने के मिलेगी यहाँ पर आप दोस्तों के लिए, यहाँ पर देखते हैं कि हमारा वो साथ दे रहे हैं, और जो और यहाँ भी हमारा साथ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू चौधरी फरियाज साहब, बिस्मिल्लाह करम चौधरी साहब, चौधरी साहब मरहबा चौधरी साहब, सुन रहे हैं प्रोग्राम को माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त हैं, और वो भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, माशाल्लाह माशाल्लाह, नाइस टू हैव योर कंपनी, हमारे सुपरस्टार आ गए और हमारे जाने वाले आ गए, और आप हमारी खुशी होगी, ये आपके लिए, देखो ये आपके लिए, वाह मुझे खुशी हुई कि आपको लाइन मिल गई है, और हमारा काम हो गया कि हमारी जो भाभी जान है हमारे गुरु जी हैं वो कहते हैं कि कहाँ चले गए, आपको इतना पसंद करते हैं, इतनी आवाज़ को पसंद करते हैं, आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट आवर में लेके जाऊंगा, और बहुत अच्छा लगा कि आपकी आवाज़ सुन के कि आपने गाना लेके आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी, आप थोड़ा होल्ड करेंगे, वहाँ पर खामोशी होगी, आपने वहाँ पर होल्ड करेंगे ना तो आपने कहीं पर जाना नहीं है, वहाँ पर खामोशी होगी, ठीक है, आपने माइंड नहीं करना है, वहाँ पर खामोशी होगी, ये ना है कि आप चले जाएँ, आपने लाइन पर छोड़ना, आपको लाइन को छोड़ना नहीं है, लाइन को ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है, आप वहाँ पर इंतजार करें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और वाह जी वाह, क्या कहने जी, आज हमारा प्रोग्राम जो है ना वह क्या कहेंगे, चार चार चांद लग गए, और बहुत बहुत शुक्रिया इन सबका, थैंक यू वेरी मच।
2: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
3: From Sky News Centre at 10, a woman and a man have died in what police say was a suspicious explosion at a house in Bristol this morning. Three people, including a child, have been taken to hospital with minor injuries after the blast in the Frenchay area. Detectives aren't treating it as terror-related. Nearby residents have been evacuated. Superintendent Matt Ebbs from Avon and Somerset Police had this update.
4: Officers are also carrying out inquiries at another property in Speedwell, which is linked to the man who died. We know this incident will be of great concern to those living in the affected communities, and our neighbourhood policing teams will be carrying out patrols to provide reassurance.
3: The Foreign Office says it's ready to support British nationals if needed after a suspected hantavirus outbreak on a cruise ship. Three people have died and one other's in intensive care in South Africa. Hantavirus is typically spread from contact with rodents. A 16-year-old girl and a woman have died trying to cross the channel by small boat. French officials say a dinghy carrying 82 passengers ran aground on a beach this morning after a reported engine failure. Manchester United scored late to get past rivals Liverpool 3-2 in a dramatic Premier League clash at Old Trafford. The result secures the third-place side a Champions League spot. Boss Michael Carrick says their hard work's been rewarded.
5: It's not something we over-celebrate. I think it's a step. We want more. We want to be finishing higher up the league. But certainly there's huge credit goes to the players and the staff for putting us in this position at this stage.
3: Former United manager Sir Alex Ferguson was taken to hospital for precautionary checks after feeling unwell before the game. Tottenham moved out of the relegation zone with a 2-1 victory at Aston Villa. Celtic won at 10-man Hibs by the same score to move level on points with Scottish Premiership leaders Hearts. And after a dramatic race, the Miami F1 Grand Prix was won by Championship leader Kimi Antonelli. That's the latest. I'm Fader Silver.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम, और यहां पे हमने करना है टाइम चेक.
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक.
0: Right, the time in the studio is 8 minutes past 10 in the UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the Parviz Khan. और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त सैयद एहसान है, माशाल्लाह हमारे सुपरस्टार हैं माशाल्लाह. जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है. बड़ा ही अच्छा लगता है जब ये शिरकत करते हैं प्रोग्राम में, माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत इनकी आवाज़ है. और आजकल इनका उठना बैठना बड़े बड़े सुपरस्टार हमारे जो पाकिस्तान के, इंडिया के, होए होए होए क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इनके बारे में. और आपके लिए सर ये आप भी क्या याद करेंगे मेरे भाई, आपको आपके लिए ये अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. हुजूर क्या स्थिति भी आपकी? नहीं नहीं, आप हमारे दिलों में बसते हैं माशाल्लाह, बस रहे हैं माशाल्लाह. और आप हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, और बड़ा ही अच्छा लगा कि आपने हमें टाइम दिया, वक्त दे रहे हैं माशाल्लाह. और आप हमारे लिए क्या लेके आए आज?
2: आज आई थिंक आई वाज फीलिंग अ बिट सैड टुडे, सो मैं कहा यार एक सैड गाना गाना चाहिए.
0: कोई बात नहीं, सैड होना चाहिए, क्यों ना गाना गाना चाहिए. और हमारे जो आपको चाहने वाले हैं और

0: के ऑडियंस के लिए
1: जी
0: सलाम।
1: वालेकुम सलाम। जी जी वाह क्या कहना। हाँ

0: हमने जफान सीखी, उनको जफानाई पत्थर से दिल लगाए, और दिल पे चोट खाए, हमने जफान सीखी।
1: क्या कहने मेरे भाई, क्या अल्फाज है, क्या कहने, वाह ब्यूटीफुल अल्फाज इसके, बड़े बड़े खूबसूरत, वाह।
0: अपने ही दिल के हाथों बर्बाद हो गए हम,
1: होई होई।
0: अपने ही दिल के हाथों बर्बाद हो गए हम, बर्बाद हो गए हम।
1: हाय हाय।
0: से करें शिकायत अब किसकी दूं दुहाई, पत्थर पे दिल लगाया,
1: हाय हाय,
0: और दिल पे चोट खाई, हमने जफान सीखी।
1: वाह,
2: मीनिंगफुल है,
1: बहुत मीनिंगफुल, वेरी मीनिंगफुल, वाह।

0: और दिल पे चोट खाए हमने जहान की थी।
1: वाह क्या कहने,
0: उनको वफ़नाए हमने जहान की थी।
1: हाय हाय हाय हाय क्या कहने। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, जितनी भी मैं तारीफ करूं कम है मेरे भाई। और इतना खूबसूरत गीत, बड़ा ही प्यारा गीत आपने गुनगुनाया। मैं तो गाने में खो गया हूं और कि आपकी आवाज में मैं खो गया
2: हूं।
1: वेरी वेरी मीनिंगफुल, वेरी मीनिंगफुल, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है।
2: खुदा के साथ वो बातें कर रहा है,
1: यू नो। हां हां, गुफ्तगू हो रही है और माशाल्लाह, और बड़ा ही अच्छा लगा जो आपका अंदाज है, बड़ा ही प्यारा अंदाज है, बड़ा ही खूबसूरत है, थोड़ा सा हटके है। और बहुत क्या कहने, आपके जो एंजॉय करते हैं जब सिंगिंग करते हैं, जब आपको एंजॉय करते हैं, तो दिस इज व्हाट इट्स अबाउट द सिंगर एज वेल। बड़ा ही एंजॉय करता हूँ, मैं भी खुद एंजॉय करता हूँ आपकी, माशाल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, वक्त दिया, माशाल्लाह। और कुछ आपने कहना है, कोई आपको गाना गुनगुनाना है?
2: अगर आपकी ऑडियंस को कुछ चाहिए,
1: गो हेड टू, गो हेड, गो हेड करें जी। बिस्मिल्लाह, जी जी,
2: आपके लिए ये ट्राई नहीं है, मतलब चलो मीठा गाना गाते हैं।
1: जी जी, गो हेड, गो हेड,
2: मीठा गाना। आपकी ऑडियंस ही
1: माशाल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। नहीं नहीं, आपका ये आपका भाई बैठा हुआ यहाँ पे, आपका प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम ही आपका है। और माशाल्लाह अच्छा लगता है जब आप आते हैं, माशाल्लाह जी।
2: थैंक यू, ऐसे करता हूँ विदाउट म्यूजिक, ये गाना एक्चुअली डुएट है।
1: जी जी जी, गो हेड,
2: मैं सोलो गा लेता हूँ।
1: जी जी जी, गो हेड, गो हेड जी।
2: साहब लता ने गाया था।
1: जी जी,
0: खामोशियां,
1: हाय हाय हाय हाय।

0: वाह
1: आई
0: जवान
1: वाह क्या कहने वाह वाह वाह वाह
0: सर्दी का मौसम बदन कांपे थर-थर सर्दी का मौसम बदन कांपे थर-थर यही बर्फ के धुरिया
1: हाय हाय
0: मैं क्यों अपने नत यहाँ खामोशिया
1: होय होय होय क्या कहने क्या कहने वाह क्या कहने बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का और काफ़ी दोस्त मुझे पूछ रहे हैं इनका सिंगर का नाम क्या है और माशाल्लाह और वाह जी वाह देखो ये देखो इतनी खूबसूरत मैसेज आया इतना प्यारा मैसेज माशाल्लाह शाली ने हमें मैसेज किया है ऑल द वे फ्रॉम लंदन से माशाल्लाह तो वो आपकी आवाज़ को पसंद कर रहे हैं आपके गाने को पसंद करें उन्होंने शुक्रिया अदा किया उन्होंने कहा कि आप आते रहें और प्रोग्राम में शिरकत किया करें और हम इंतज़ार करते हैं आपका देखो कितना खूबसूरत मैसेज माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड दैट वाज अ वंडरफुल वंडरफुल सिंगर माशाल्लाह वाओ बहुत बहुत शुक्रिया ये थे हमारे एहसान सैयद एहसान साहब जो हमारा हमारे मोहतरम है ऑल द वे लंदन से माशाल्लाह ने हमें याद किया बहुत बहुत शुक्रिया इनका वेतन की वैली मुझे अल्लाह पाक मिशन को खुश रखे शादाबाद रखे बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी करेंगे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे ब्रेक के फ़ौरन बाद यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त हैं जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का जो भी मेरा साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ छोटी सी ब्रेक करेंगे कीप इट अप
2: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
3: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
2: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
4: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ
5: मैं जानती हूँ उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था
4: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है
5: Sophie Jewelers 119-2121 Oak Lane Bradford 9 telephone 01274-056-014 Sophie Jewelers
6: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस चार छः और आठ बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल बेलव्यू रेजिडेंसेस लग्जरी कुशादगी और स्टाइल अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें
1: राइट वेलकम बैक लिसनिंग योर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम बहुत शुक्रिया सब दोस्तों जो भी मेरे बहन भाई हैं साथी हैं दोस्त अहबाब हैं अजीज़ हैं और यहाँ में हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतर हमारे दिल अजीज़ हमारे मोहसिन हैं जितनी इनकी मैं तारीफ़ करूँ कम है बिलीव करें कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ही क्या कहते हैं कि टाइम हो रहा है और ये वो ऐसा टाइम है कि नींद में कहल है और ये हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे मोहतरम चौधरी फरियाज साहब हमारा साथ दे रहे हैं पाकिस्तान से और वेलकम कहेंगे जी हैं कहेंगे सत बिस्मिल्लाह कहेंगे ये हमारे मोहसिन हैं ये मेरे अपने हैं ये मेरे सज्जन हैं और सज्जनों की महफिल है और यहाँ पे बिस्मिल्लाह कहेंगे यहाँ पे इनके लिए और सोने हो तो मनमोहन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
7: बिस्मिल्ला
1: चौधरी साहब बिस्मिल्ला
7: जी असाने पास लाख बिस्मिल्ला
1: करोड़ वाली
7: शुक्रिया
1: मेरे ख्याल में पाकिस्तान 2 बजे तक 20 मिनट होने पे क्या हाल है ऐसे ही कोई टाइम होना है पाकिस्तान
7: जी जी
1: ऐसे ही टाइम होना है बड़ी मेहरबानी जी बड़ी मेहरबानी सर शुक्रिया
7: रात का जागना बहुत मुश्किल
1: बड़ा ही मुश्किल बिलीव करें बड़ा ही मुश्किल है इसीलिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं दिल के तह गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे पास अल्फाज में मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया
7: और लोग जिन्हें ना वो जागे जिन्हें लोग इबादत गुजार होने या जिन्हें कोई अपने संगियां साथियों गल करने
1: माशाल्लाह जी जी जी वाकई मेरे दोस्त है माशाल्लाह वाकई मैं फकर है मुझे फकर है कि चौधरी फरियाद साहब मेरे दोस्त है और देखो मैं पूरी दुनिया में लान करना जितना जहाँ जहाँ भी आवाज पहुँचनी है तो चौधरी फरियाद साहब मेरे दोस्त है मेरे भाई हैं माशाल्लाह देखो इस वक्त कोई होर होता ना कहना कि छोड़ो रहने दो यार मैं क्यों फोन करूँ चलो बिस्मिल्लाह कहने चौधरी साहब जी
7: पर दूसरे पास दूसरा नहीं मैं पर जो सा कि इतना खलूस रबना
1: जी
7: ते फिर ऐसा क्यों ना जागा जरा
1: हाय हाय हाय
7: हाय खलूस है के
1: जी
7: सादा जागना सादी नींदर कोई मायना नहीं रखने
1: हाय हाय हाय हाय सदके जावा कुर्बान जावा
7: दूसरा नहीं मैं पर ने खलूस दूसरा ना खलूस
1: जी जी
7: बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया जनाब साहब से पहले मेरे अतीका बाजी ने
1: जी
7: उन्होंने बहुत बहुत सलाम
1: जी
7: और उन्होंने हौसला अफजाई ने शुक्रिया और उन्होंने लाल मशीन जी ने
1: जी जी
7: वो भी हमेशा मेरी हौसला अफजाई करने में मैं उन्होंने बेहद शुक्र गुजार सलामत रखा
1: वालेकुम
7: उन्होंने लाल सिमी जी ने
1: जी
7: जी और उन्होंने अम्मा जी ने
1: जी
7: गजाला बाजी ने उमे कुलसूम जी ने सीमा जी ने
1: जी
7: शाहपरी जी ने जुलेखा जी ने सतारा जी ने और फरजाना जी ने साइमा जी ने
1: जी
7: भाभी साहिबा ने गिदर भाई ने सब ने मेरा बहुत बहुत सलाम
1: वालेकुम
7: सारे मोहतरम
1: जी
7: अमर भाई ने महबूब राय साहब ने मुदसर साहब ने और अजय सलीम साहब ने
1: जी
7: चौधरी मनीष सिंह चक्की अली ने शकील साहब ने हीरा साहब ने अयूब चौहान ने
1: जी
7: वाजिद भाई ने जावेद मीर भाई ने अब्दुल कयूम भाई ने नवीद राणा साहब ने
1: जी
7: जनाब तारक वर साहब ने चौधरी मुजफ्फर साहब ने चौधरी आसिफ रियासत साहब ने
1: जी
7: डॉक्टर चौधरी मारक साहब ने चौधरी रुसार साहब ने
1: जी अहमद
7: खान साहब ने मंसूर भाई ने राजा वकास राजा जुलकर नैन और जफर अली रोज साहब ने और महमूद भाई ने और राजा शोएब साहब सारे दोस्त और जनाब तुसा ने उन जे सैयद आसान साहब उन्हें
1: जी जी जी जी
7: माशाल्लाह
1: बड़ी और एक और हमारे भाई ने शुक्रान भाई ने उनकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है और जब भी आपको मौका मिले मेरे भाई दोबारा फोन कर लेने में बहुत बहुत शुक्रिया जी
7: सारे दोस्तों भरावों मेरा बहुत बहुत सलाम
1: वालेकुम अस्सलाम
7: बिस्मिल्लाह करा शायर लिखना के नूरे नबी नाल होई कायनात पैदा
1: सुभान अल्लाह माशाल्लाह
7: नूरे नबी नाल होई कायनात पैदा
1: माशाल्लाह
7: ए कुरान नाज़िल उसकी शान दे विच चन तारे मनवर आसमान उते शामिल नूर है शक्ले इंसान दे विच
1: हाय हाय हाय क्या कहने
7: नूर नूर दी शान वदान खातर सदिया कोल अपने ला मकान दे विच अब दी क्यों ना करा तारीफ उसकी मालिक चढ़िया ने फर्क बनान दे विच
1: वाह वाह वाह वाह क्या कहने
7: ते मिजाज ने रंग
1: जी जी
7: किस दो अशआर बड़े खूबसूरत जे बड़े शौक जे
1: जी जी
7: जनाब खलील आसम साहब ने
1: हाय हाय हाय
7: और तने पूरी महफिल नजर करसा
1: जी जी
7: इतने शेर और सुखन की पसंद करने ने
1: जी जी
7: सब बाकी
1: जी जी
7: क्या बाजी जी नशीन जी और तुसा नशीन जी तुसा पूरी टीम
1: जी जी
7: इतने में तुसा ने मेहमान ने
1: जी जी
7: और सीमें जी और उन्होंने अम्मा जी ने सारे
1: माशाल्लाह क्या
7: कहने डॉक्टर चौधरी मालिक साहब ने वाजिद भाई ने चौधरी मुजफ्फर साहब ने सब दोस्त है ना
1: जी
7: ये लिखने के ख्वाहिश मुजस्सी सीने विच पल रही है
1: वाह जी वाह
7: ख्वाहिश मुजस्सी सीने विच पल रही है अंदरों अंदर कलेजे नु सड़ रही है
1: वाह जी वाह
7: हाथ चांद से पहले मंजूरी होवे मौला फजल करे ते दूर दूरी होवे हिक तू आवे ते हिक मैं आवां
1: हाय हाय क्या कहने क्या कहने
7: ख्वाहिश मुजत सी सीने विच पल रही है अंदरों अंदर कलेजे सीने नु सल रही है हाथ चांद ते पहले मंजूरी होवे मौला फजल करे ते दूर दूरी होवे
1: हाय हाय
7: हिक तू आवे ते हिक मैं आवां
1: हाय हाय क्या कहने
7: ਅਖਿਆ ਸੋਨਾ ਸਮਾਂ ਅਲਬੇਲਾ ਬਹਾਰ ਹੋਵੇ ਚਮਨਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕੀ ਮਹਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਕਲੀਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਨਖਾਰ ਹੋਵੇ ਪੀਆ ਪੀਆ ਹਰ ਸੂ ਪੁਕਾਰ ਹੋਵੇ
1: ਇੱਕ
7: ਤੂੰ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ
1: ਆਵਾਂ ਕਿਆ ਕਹਿਣੀ ਵਾਹ
7: ਅਖਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਰਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਜਾਮ
1: ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਰਹਾਂ
7: ਮਰਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਮਰ ਮਰ ਜੀਂਦਾ ਰਹਾਂ
1: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਹਿਣੀ
7: ਸਾਇਆ ਉਲਫਤ ਦਾ ਐਸਾ ਸਰੂਰ ਹੋਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਖਮੂਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਵਾਂ
1: ਕਿਆ ਕਹਿਣੀ
7: ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਵੇਖਾਂ ਐ ਦਿਲ ਸ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਵੇਖਾਂ ਐ ਦਿਲ ਸ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੋਵੇ ਮਦਾ ਹੋਸ਼ ਸੁਤੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੋਵੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਵਾਂ
1: ਕਿਆ ਕਹਿਣੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ
7: ਅਖਿਆ ਫੇਰ ਦਾਮਨ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਦਾਮਨ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਕੀਬ ਰਵਨ ਸ਼ਾਲਾ ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵਣ ਇੱਕ ਤੂੰ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕ
1: ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਕਿਆ ਕਹਿਣੀ
7: ਅਖਿਆ ਮਦ ਬਰੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਜੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਫੁਹਾਰੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ ਪਵਨ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਗਮੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਮੁਸਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਵਾਂ
1: ਕਿਆ ਕਹਿਣੀ
7: ਆਖਿਆ ਨਾਲੇ ਵਸਲ ਲਬਰੇਜ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਵੇ ਵੈਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਭਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ
1: ਇੱਕ
7: ਤੂੰ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਵਾਂ
1: ਕਿਆ ਕਹਿਣੀ
7: ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਫਰਾਕ ਦੇ ਦੁੱਲ ਜਾਵਣ ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਫਰਾਕ ਦੇ ਦੁੱਲ ਜਾਵਣ ਆਸਮ ਗਿਰੇ ਚਿਕਵੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਜਾਵਣ ਸ਼ਬ ਰੋਜ਼ ਵਸਾਲ ਵਸਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕ
1: ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਕਿਆ ਕਹਿਣ
7: ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਾਈ
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ
7: ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ
1: ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਕੋ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਸ਼ਾਦ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ
7: ਤੁਸਾਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ
1: ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆ ਕਹਨੇ ਔਰ
7: ਸਾਰੇ ਨੇ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ
1: ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਆਪਕੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਫੂਲ ਭੇਜਨੇ ਬੜੇ ਗੁਲਾਬ ਕੇ ਫੂਲ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਆ ਕਹਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਟੁਕੜਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟੁਕੜਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਆ ਕਹਨੇ
7: ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ
1: ਬਹੁਤ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾਹ ਸੋਨੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਵਾਓ ये थे हमारे मोहतरम हमारे भाई चौधरी फरियाज साहब कमाल ही कर दिया इन्होंने कमाल ही करते हैं और कमाल ही कर दिया और कमाल पे कमाल हो गया क्योंकि हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त जितनी की मैं तारीफ करूँ कम है यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे धमाका होगा ओए होए होए सदके जावा मैं सदके जावा कुर्बान जावा वारी वारी जावा क्या कहने क्या कहने
2: Music. Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
3: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
2: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
4: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे पता नहीं कहां से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां
5: मैं जानती हूं उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था
4: सूफी ज्वेलर्स वो कहां है
5: Sophie Jewelers 119-2121 Oak Lane Bradford 9 Telephone 01274-056-014 Sophie Jewelers
6: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस चार छः और आठ बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल बेलव्यू रेजिडेंसेस लग्जरी कुशादगी और स्टाइल अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें
8: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: Right, welcome back, listener. You're listening to Radio 103.2 FM. और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है. ये हमारे वाकई हमारे भाई हैं और चौधरी रुखसार भाई हैं. और नाम ही बड़ा प्यारा है तो खुद भी बड़े प्यारे हैं. हमारे बड़े ही नफीस इंसान हैं, बड़े प्यारे इंसान हैं. और माशाल्लाह हमारे मोहसिन, हमारे मुश्ताक, हमारे खलील क्या कहेंगे इनके बारे में. वेलकम कहेंगे, जिया कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे. यहाँ पे उनके लिए ये और सब तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, क्योंकि हमारे भाई आ रहे हैं. और भाई जो है ना, भाई के लिए ये अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. और मेरे भाई कैसी तबीयत है आपकी, कैसे ठीक है, सही ठीक है आपकी, माशाल्लाह. जज्बा आ गया, जज्बा देखो ना आपके लिए. देखो सब जो है ना वो ताड़ी बजा रहे हैं, हेलो हाई कर रहे हैं, तो वो उनको यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा साथ कौन दे रहा है. चौधरी रुखसार भाई ये जी
9: मेरे नहायत ही मोहतरम आली जनाब, इज्जत माब, साहबे सदर ग्रामी कदर, हर दिल अजीज शख्सियत, बाजमत, बाइफत, काबिल एहतराम भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात.
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात. जी अजू कैसे थे वीर मेरे भाई की
9: सरकार, अल्हम्दुलिल्लाह. तो मुर्शिद आप सुनाओ, आप कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, आप आ गए और हमें क्या चाहिए. देखो आप इतनी खूबसूरत है, जो जुल्मे, जो जो जो अल्फाज, जो खूबसूरत जो आपके अंदाज है, और वो सुन के बंदा बीमार भी हो जाना तो वो ठीक हो जाना. क्या हाल है? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास A1.
9: माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको फर्स्ट क्लास रखे और A1 रखे, ये तो मेरी दिली दुआ है आपके लिए
1: जी.
9: तो आप मुझे बताएं कि मेरे पीछे कौन सी हस्ती है.
1: आप वरी ना करें कि मैं आपको कहूंगा ना तो फिर पहले कहेंगे ए लो पेन, तो ए लो पेपर, तो ए लो मैं चले आ. तो आप अपना सुनाओ, ठीक है, अपनी शेरी सुनाओ, गाना सुनाओ, ठीक है.
9: यकीन कीजिएगा कि आपको सभी जो आते हैं ना, माशाल्लाह जो आ चुके हैं और जो आएंगे ना
1: जी,
9: वो मैं हकीर, मैं नाचीज और मैं खाकसार से, वो बहुत आला हर
1: लिहाज से, यकीन करें कोई शक नहीं है. ये जो महफिल है ना, ये खूबसूरत महफिल है, क्योंकि आप सब आ रहे हैं माशाल्लाह, सपोर्ट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं. ये हमारा घर है और घर में जो भी वो दरवाजे से आ रहे हैं ना, तो एक से बढ़कर एक है.
9: अल्लाह ताला आपको सलामत रखे. ये तो आपकी मोहब्बतें हैं, आपका प्यार है, ये आपकी बेलोस उल्फत है, यकीन करें, जो आप बांट रहे हैं ये.
1: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए जो ना अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बराबर हैं. मेरे लिए ये नहीं है कि मैं कहूँगा कि यार ये मेरा फेवरेट है, वो मेरा फेवरेट. मेरे लिए सब काबिल तारीफ है और सर आंखों पे माशाल्लाह. और जो भी मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं, जो ये मेरा घर है और घर के अंदर जो दरवाजे से आ रहे हैं ना माशाल्लाह, तो वो माशाल्लाह जितनी की मैं तारीफ करूँ कम है माशाल्लाह. क्या कहेंगे?
9: सही फरमा रहे हैं आप
1: जी.
9: तो मैं ज्यादा देर उनको इंतजार ना करूँ, ठीक है. और भी काफी लोग लाइन में लगे होंगे, काफी हस्तियां हैं जो इस वेट में होंगी कि मैं जाऊं तो वो आए, ठीक है
1: जी.
9: तो सबसे पहले तो मोहतरम अहमद शहजाद साहब हैं, और जनाबे सारे मोहतरम शकील साहब हैं, और नहायत ही मोहतरम अहम खान साहब, चौधरी फरियाद साहब आए थे, लेकिन मैं तो उनको सुनने से कासिर ही था, क्योंकि आप ही हमें वो कहते हैं ना, जो बंद कोठरी में बंद कर देते ना सुन सकते हैं ना.
1: चलो अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह रहम करेगा.
9: तो मोहतरम महबूब लाई साहब, मैं राणा नजीर साहब हैं, वाकिद भाई हैं, अल्लाह तक्के तंदरुस्ती जिंदगी फरमाए, जमीर भाई हैं, काशिफ भाई हैं, कामरान भाई हैं, चौधरी जफर साहब, आपकी गजाला जदीद है, आतिका आपकी है, अबीबा आपकी है, आपकी शनाज मंसूर साहब है, सिस्टर मेहरा जी हैं, आपकी नहीद है, सैम जी हैं, कंवल साहबा हैं, और जो हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग टैक्सी ड्राइवर हैं, और जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो डिलीवरी ड्राइवर है, जो इस वक्त में माए हमारी हमारे बुजुर्ग किचन में काम कर रहे हैं, मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला सभी को अपनी जो मान में रखे और अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी साफ फरमाए.
1: वाह जी वाह, क्या आमीन आमीन आमीन.
9: तो सर ये मैं एक पोएट्री लेके आया हूँ, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, यकीन करें.
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो ये होती है खूबसूरत, देखो ना, देखो ये बात है, वाह क्या कहने.
9: लेकिन ये तो मेरी अपनी पसंद है ना, लेकिन मैं जिनके ये अब मैं समझता हूँ कि आपके माशाल्लाह इतने रोशन ख्याल और माशाल्लाह इतनी रोशन समाते हैं, अब उनकी मैं नजर करना चाहता हूँ, और उनको पता नहीं ये पहचान आती है नहीं
1: आती। सर ऐसे क्यों मुझे शर्मिंदा कर दे, क्यों शर्मिंदा करते हैं हम सबको? जी गो अहेड।
9: शेर लिखता है
1: जी जी,
9: गूंद के मिट्टी जो कभी चाक पे आ जाती है,
1: हाय हाय हाय हाय हाय, बहुत ही गहरा।
9: पाक के मेरी ये अखलाक पे आ जाती
1: है, हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने।
9: बहुत शुक्रिया सर, आपकी मोहब्बतें हैं ये, आपका प्यार,
1: हाय हाय, बहुत ही गहरा, बहुत ही गहरा, वाह।
9: शेर अर्ज है
1: जी जी,
9: आसमानों पे उड़ो ज़हन में रखो के जो चीज
1: जी जी
9: खाक से उठती है वो खाक पे आ जाती है,
1: हाय हाय हाय हाय, वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
9: बेहद बेहद ममनून है आपकी,
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने मेरे भाई, क्या कहने।
9: शेर अर्ज है
1: जी जी,
9: रंग और खुशबू का कहीं कोई करे जिक्र तो बात, घूम फिर कर तेरी पोशाक पे आ जाती है,
1: ओए होए होए होए होए होए होए होए, क्या कहने मेरे भाई का, क्या कहने, वाह,
9: बेपनाह मोहब्बतें आपकी,
1: माशाल्लाह माशाल्लाह जी जी।
9: बिखरा बिखरा सा है अंदाजे तकल्लम उनका, और तोहमत मेरे इदराक पे आ जाती है,
1: ओए होए होए होए, वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, वाह वाह वाह, क्या कहने,
9: बहुत शुक्रिया। और ये जो ये शेर जो है ना, ये असल नज़्म शेर है
1: जी जी जी जी जी, माशाल्लाह।
9: अर्ज किया, नखल महफूज रहे बादे हवादिस जो चले, एक आफत खसो खशाक पे आ जाती है,
1: होई होई होई होई, बहुत ही गहरा, बहुत गहरा, वाह वाह वाह वाह वाह।
9: आखिरी शेर में जनाब आप
1: जी जी जी जी, माशाल्लाह, क्या कहें जी जी।
9: शेर लिखता है
1: जी जी,
9: और जाए जो कोई चाहने वाला फरताश, जिंदगानी राय सफाक पे आ जाती है,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने मेरे भाई, क्या कहने
9: भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, टाइम देने का बहुत
1: सर जी, बहुत ही खूबसूरत जो शायरी आपने किए ने, बेमिसाल, कमाल ही कर दिए, कमाल पे कमाल, सुपर कमाल कर दिए, ऊपर से सुपर हो गया, क्या कहने जी, क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई,
9: मैं आपका न्याज मान दूं
1: मेरे भाई, अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे। देखो ये, देखो ये खूबसूरती आप में अंदर इतना खूबसूरत है, और आपके जो अंदर जो वो उसको निकाले हैं, उसको जो भी शेर शायरी है, गाना है, नज़म है, गज़ल है, और कथा है, जो भी है आपके अंदर, और जो मैया वरस ना रहे, तो वो हम इंतज़ार करते हैं, करेंगे जो नेक्स्ट आवर में, जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह, तो उसमें हम इंतज़ार करेंगे मेरे भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई,
9: मतलब ये आपकी हैं, और माशाल्लाह आपके इतने अच्छे खूबसूरत और सुनने वाले हैं, जो मेरी खट्टी मीठी बातें,
1: नहीं नहीं नहीं मेरे भाई, हम जो ना सब इंतजार करते हैं, पसंद करते हैं आपको, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया, वाह जी वाह, वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। और भाई शुक्रान यहाँ पे, भाई शुक्रान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, भाई शुक्रान, आपने होल्ड करना है, वहाँ पे खामोशी होगी, ठीक है, आपने लाइन ड्रॉप नहीं करनी है, पहले आपने ड्रॉप कर दी है, तो यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेंगे, तो मैं थोड़ी देर के बाद में आपको लेके जाऊँगा, ठीक है ना, आपने लाइन ड्रॉप नहीं करनी है, पहले आपने ड्रॉप कर चुके हैं, ठीक है ना, दोबारा ड्रॉप नहीं करनी है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, लव यू सर, बहुत थोड़ा होल्ड करें, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमारा साथ देने हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, और ये हैं हमारे मोहतरम, हमारे दिल अजीज, हमारे शान बान आन, हमारे सन रेडियो की अब्दुल कयूम साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
10: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आपने मेरी इतनी तारीफ कर दी कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ
1: सर जी, आप काबिल के हकदार हैं, हकदार हैं,
10: शुक्रिया आपके हुस्न ज़न का। तो तमाम सुनने वालों को जो इस वक्त घरों में, बाजारों में, दुकानों, फैक्ट्रियों, कारखानों में, होटलों में, रेस्टोरेंटों में, खेतों में, खलिहानों में, इस पार या उस पार, बल्कि पूरी दुनिया में जो ये नशरियात सुनी जा रही है, मैं सबको सलाम कहता हूँ।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
10: और एक गजल आज आपकी खिदमत में लेके आया, उम्मीद आप पसंद करेंगे।
1: जी जी।
10: किसी ने लिखा है, कोशिश ये तर के मोहब्बत राय गाँ होने लगी,
1: वाह,
10: कोशिश ये तर के मोहब्बत राय गाँ होने लगी,
1: वाह,
10: मेरी गैरत उनके चेहरे से अया होने लगी,
1: अया होने लगी, क्या कह रहे, बहुत खूब, वाह
10: शुक्रिया, कोशिश तरके मोहब्बत राय गाँ होने लगी, मेरी गैरत उनके चेहरे से अया होने लगी,
1: वाह,
10: और क्यों ना हम समझें भला इस मेहरबानी को सितम,
1: वाह वाह,
10: क्यों ना हम समझें भला इस मेहरबानी को सितम,
1: वाह,
10: तुम हुए अपने तो दुनिया मेहरबान होने
1: लगी। हाय हाय क्या कहने,
10: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया जनाब,
1: वाह
10: क्यों ना हम समझें भला इस मेहरबानी को सितम,
1: वाह
10: तुम हुए अपने तो दुनिया मेहरबान होने लगी।
1: हाय हाय जी
10: शेर है, अजमत गम का तकाजा है कि गम जाहिर ना हो,
1: वाह
10: शुक्रिया, अजमत गम का तकाजा है कि गम जाहिर न हो,
1: वाह
10: रोक ले आंसू के तोहीने फगा होने लगी,
1: बहुत खूब,
10: और अजमत गम का तकाजा है कि जाहिर के गम जाहिर न हो, रोक ले आंसू के तोहीने फगा होने लगी, और हो सका उनसे बिछड़ कर भी न पेवंद जमीन,
1: वाह क्या कहने,
10: हो सका उनसे बिछड़ कर भी न पेवंद जमीन, वक्त जब बिगड़ा तो मिट्टी भी गरा होने लगी,
1: वाह वाह वाह वाह वाह क्या कहने,
10: हो सका उनसे बिछड़ कर भी न पेवंद जमीन, वक्त जब बिगड़ा तो मिट्टी भी गरा होने लगी, और शेर है
1: जी,
10: रात भर पेदार रखा मुझको शोरे चिंग ने, रात भर बेदार रखा मुझको शोरे चिंग ने, नींद नींद जब आई तो मस्जिद में हजा होने लगी,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या कहने,
10: रात भर बेदार रखा मुझको शोरे चिंग ने, नींद जब आई तो मस्जिद में अजा होने लगी,
1: वाह
10: और खाना वीरानू का दिन तो कट गया परवाज में, शाम होते ही तलाशे आशिया होने लगी, और आखिर
1: जी जी
10: लग गई पाबंदियां बाहर निकलने पर शकील,
1: हाय हाय हाय
10: दुन जब जर शीश महल, बस इतना ही ठीक है,
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत
10: जब शीश महल में होने लगी,
1: वाह
10: शुक्रिया जनाब,
1: बड़ी मेहरबानी सर, आपने इतने खूबसूरत अशआर लेके आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एंजॉय किया, और आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं हमारे अली भाई हैं, हमारे रेखा जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, उन्होंने पसंद करें, बहुत बहुत शुक्रिया
10: मेरी तरफ से भी उनको शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। और ये थे हमारे मोहतरम, और यहाँ भी हमने शुक्रिया अदा करना है अब्दुल कयूम साहब का, शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब, बहुत खूबसूरत इन्होंने शायरी की है और काफ़ी फ्लशीज आ रही हैं, उन्होंने पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं, कितनी की मैं तारीफ करूँ कम है, और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम भाई दोस्त है, और शुक्रान भाई हमारी जान है, हमारी जान आ गई, वाह वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
11: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। भाई जिन कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप आए और क्या कहेंगे कि ईद होगी हमारी?
11: जैसे कहते हैं ना कि फलों में बादशाह होता है आम,
1: हाय हाय,
11: और फूलों में बादशाह होता है गुलाब,
1: गुलाब वाह वाह,
11: और हमारे सनराइज के जो बादशाह है वो है आप,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या कहने, वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या कहने मेरे भाई, क्या कहने, वाह शुक्रान वाह, देर आए दोस्त भाई, क्या कहने वाह।
11: अब मैं एक शेर सुनाऊंगा आपको,
1: जी जी जी,
11: और एक गाना गुनाऊंगा,
1: जी जी जी, गो हेड जी जी।
11: तो कहते हैं कि कहा था ना जो सोते हुए मत छोड़ के जाना,
1: हाय हाय हाय हाय हाय क्या कहने,
11: मुझे बेशक जगा देना,
1: वाह
11: बता देना,
1: बता देना,
11: तुम्हें रास्ता बदलना है, मेरी हद से निकलना है,
1: आहा,
11: तो तुम्हें किस बात का डर था,
1: आहा,
11: अरे पागल मोहब्बत की तबीयत में जबरदस्ती नहीं होती,
1: हाय हाय,
11: जिसे रास्ता बदलना हो उसे रास्ता बदलने से,
1: वाह,
11: जिसे हद से निकलना हो,
1: वाह,
11: उसे हद से निकलने से,
1: वाह वाह,
11: ना को रोक पाया है तो ना को रोक पाएगा,
1: आहा क्या कहने,
11: तो तुम्हें किस बात का डर था,
1: आहा,
11: मुझे बेशक जगा देते,
1: वाह,
11: बता देते मैं तुमको देख ही लेता,
1: आहा,
11: कम अज कम यूं तो ना होता,
1: वाह वाह,
11: कोई दुआ देता,
1: आहा,
11: मेरे साथी ये हकीकत है तेरे बाद मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बाकी,
1: हाय हाय हाय हाय क्या कहने,
11: मगर मैं अब खोने से डरता हूँ,
1: खोने से डरता हूँ, आई आई
11: आप मैं सोने से डरता हूँ,
1: आप मैं सोने से डरता हूँ, मेरे भाई क्या कहने मेरे भाई का, बहुत खूबसूरत तो अंदाज़।
11: गाना है थोड़ा सा लेटेस्ट है,
1: जी जी,
11: कहते हैं कि अल्लाह भी सजना दे ही वरदान,
1: वाह
11: अल्लाह

जो वगदे नाते नि तेरे दिलों में खबरा तू वापस नहीं आना फिर भी क्यों तेरी तस्बीह जी फेरे ऐनी वे सजना जुदाई नहीं चंगी पर ना साडे सबरानू सबरा

0: क्यों तेरी
1: हाय हाय हाय हाय मेरे भाई, कमाल कमाल ही कर दिए मेरे भाई। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें मेरे भाई, और हम आपका इंतज़ार करेंगे मेरे भाई। जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा ना, उसमें आपने शिरकत करनी है बुध के रोज की शाम के वक्त। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे और शादाबाद रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा साथ दे रहे शकील साहब, हमारा साथ दे रहे, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और बहुत अच्छा लगा वो भी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और बहुत ही अच्छा लगा कि वो हमारा साथ दे रहे हैं। शकील साहब वेलकम, जी अनु खुश आमदीद, बिस्मिल्लाह कहेंगे आपको भी, और वेलकम जी अनु खुश आमदीद, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ भी हम देखते हैं कि यहाँ भी हमारा साथ कौन दे रहे हैं, वेलकम जी अनु खुश आमदीद कहेंगे यहाँ पे इनको, और यहाँ पे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
2: वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त, कैसे हो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ओए होए होए होए होए, सुपरस्टार, वन वन एंड ओनली वन सुपरस्टार जी, वेलकम वेलकम जी, एंड कुछ आमद नहीं,
2: यू आर द सुपरस्टार माशाल्लाह। तो मैं सबका सलाम मेरी तरफ से, और
1: जी
2: सुपर जबरदस्त शो एज ऑलवेज,
1: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
2: एक सॉन्ग सुना देते हो?
1: जी जी, गो अहेड गो अहेड।
2: मुझे इश्क है तुझसे, मेरी जान है जिंदगानी, पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझसे,
1: हाय हाय,
2: मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिजा का वो बहार तू ने दी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिजा का वो बहार तू ने दी है। तेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से, तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, के हसीन लब नशीले, झुकी झुकी निगाहें, तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, हसीन लब नशीले ये झुकी झुकी निगाहें, जुल्फ से उठी है ये घटाओं की जवानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से।
1: अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, वाह मेरे भाई कमाल ही करते हैं। और मेरे भाई आपने बड़ी गैर हाजिरी करते हैं मेरे मेरे प्रोग्राम में, बड़ी गैर हाजिरी है, बड़ी बड़ी गैर हाजिरी है, बड़े गिले शिकवे आ रहे हैं आपके लिए, क्या कहेंगे?
2: नहीं, आपके साथ होता जरूर, लेकिन कभी
1: जी
2: काम की वजह से
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सुपरस्टार, बहुत अच्छा लगा, इतना खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। वाओ, ये थे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितने की मैं तारीफ करूँ कम है। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे अली हैं, और अली ब्रो देखते हैं कि ये कौन है हमारे साथ दे रहे हैं, और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
3: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेलकम जी अनु खुश आमदीद कहेंगे मेरे भाई आपको, और मेरे मेरे ख्याल में आपने पहली दफा मेरे प्रोग्राम में शिरकत की है जी।
3: Yeah, how are you? You're okay, by Parvez?
1: I'm good, good. Who am I speaking to?
3: This is Saad Sabri from Scotland.
1: Oh my God, आप तो मेरे भाई हैं ना, यहाँ पे कुछ और नाम लिखा आ रहा है, तो मैंने कहा कि पता नहीं ये कौन है और कहाँ से, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे भाई।
3: My जासूसी
1: name. Is that your name, Vasuma? ये भी मैं सोच रहा हूँ कि आपका भाई भी आ चुका है और मेरा भाई भी, वो जो आए हैं अभी शाजिद भाई हो चुका है माशाल्लाह, वो भी आए हैं और कमाल कर दिया उन्होंने, बड़ा ही खूबसूरत.
3: ओह वेरी गुड, आई नेवर आई मिस्ड
1: इट, जस्ट केम बिफोर यू नाउ माशाल्लाह. एंड हाउ आर यू एनीवे?
3: इट्स बीन गुड. व्हाट डिड साज सिंग?
1: इट वाज मुझे इश्क है तुझसे और
0: दिस वन मेहरबानी
1: तेरे पास मेरा दिल. दिस वन ही जो ना, यू नो वाज अमेजिंग ट्रैक. और आपकी भी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है, तो पता नहीं यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे क्यों लिखा है ऐसा. चलो, आप तो हमारे जान है, हमारे सुपरस्टार है माशाल्लाह, हमारे स्कॉटलैंड की माशाल्लाह, हमारे यूके की, पूरे दुनिया के सुपरस्टार है माशाल्लाह. और यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह, ग्रेट जॉब, वेरी, आई एम वेरी यू नो ब्लेस्ड टू हैव यू माशाल्लाह.
3: You're too nice, brother.
1: No, but you know what? You are doing a, you know, great job. You know, because you know, you're doing a fantastic. And I love the way you sing, mashallah, the way you present yourself, mashallah. Oh, what an amazing, mashallah. Bahut acha laga ki aap aaye hain, mashallah, ji. Aur bahut, bahut shukriya. Aur hamare liye kya leke aaye hain?
3: I thought I'd do something
1: ji.
3: More modern this time. Normally, we do a lot of old songs.
1: Ji, mashallah. Ji, go ahead.
3: I thought I'd do something a bit more modern.
1: Ji. Go ahead.
3: And see what you think, ठीक है
1: ना? No problem. मेरे भाई, आपकी आवाज वैसे भी प्यारी है और इस आवर का माशाल्लाह टाइम थोड़ा सा कम हो रहा है. चलो, go ahead.
3: And if you, we can always do another one after, it's up to you, ठीक है ना?
1: No problem. जी, go ahead. जी, बिल्कुल. जी,
3: here it goes. वाह. गलत क्या सही क्या,
1: आई हाय हाय,
3: मुझे ना पता है
1: ओए
3: तुम्हें.

0: दिया
1: तो
0: ही मंजिल है, या के दे है इतना बता, तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल है थोड़े बादल, बादल है भीगे बरसे, बरसे भीगे आ जरा, पहले भी मैं
1: हाय हाय हाय
0: तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिल के लगा, तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा, वो
1: वाओ।

0: How was that, brother? Tixi?
1: That was mind-blowing. 10-10, bro. You know what?
0: Amazing.
1: That was a very popular movie. Very up-to-date track as well.
0: Yeah.
1: Very beautiful movie. Very beautiful track. And you know what? Bless you, brother. You know what? It's an amazing track. I wish I had a bit more time. I could have done a couple of more tracks from you. And I could have heard
0: No problem.
1: Yeah, you know what? It's such an amazing feeling that I have. And you know the voice you got, mashallah, amazing voice, mashallah. And you know what? I'm blessed to have you as a friend, as a family, mashallah, as a singer, mashallah. Jitni bhi main aapki tareef karun, mere bhai kam hai. And you know what? The work you doing, bro, keep up with the good work as well. And you know, keep hitting all the roads and all the boxes as well, mashallah. And 10-10, bro. And look after yourself.
0: Jinta, bro, and you keep up the good work, man. You do an amazing job. Wow. Entertain so many people, man.
1: Mashallah. Baba shukriya. Or inshallah, Wednesday or Sunday, I do program anyway, between hours of 8 and 11. And if you have a time and do come in, do pop around as well. And, you know, do your beautiful songs. You know, it's an honor to have you, mashallah. And, you know,
0: Baba shukriya.
1: Thank you very much. Do look after
0: yourself. Brother.
1: Allah Hafiz. Wow. What an amazing gentleman. Jitni bhi main ki tareef karu, he is a mashallah amazing singer. Badi khoobsurat ki awaaz hai, badi pyari awaaz hai. No doubt as well. Isme koi shak hai nahi hai jo inhone gana gunaya. Wow. Amazing. 10-10. Aur bahut shukriya inka. Aur yahan pe mera saath de rahe Abdul Qayyum sahab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातु. एक अच्छी सी गजल मेरे सामने, मैंने
1: जी,
2: मुझे सब्र नहीं हो सका कि मैं अगले हफ्ते तक
1: यूनिवर्सिटी
2: गजल में तुम्हें अर्ज करता हूँ. गरीब शहर हूँ, हर्फ आशना नहीं कोई. गरीब शहर हूँ, हर्फ आशना नहीं कोई.
1: वाह क्या कहने जी.
2: गरीब शहर हूँ, हर्फ आशना नहीं कोई. सुनेगा कौन यहाँ, देखता नहीं कोई. और खुद अपने साय से हर आदमी लरजता है. खुद अपने साय से हर आदमी लरजता है कि जैसे उसका अदू दूसरा नहीं कोई. और किसी के पैरहन तार की शिकायत क्या. किसी के पैर तारहन की शिकायत क्या. यहाँ तो एक भी तन पर कबा नहीं कोई. और फलक से टूट रही है कबा कयामतें, लेकिन फलक से टूट रही है कयामतें, लेकिन किसी के लब तक भी हर्फे दुआ नहीं कोई. आसले कलाम है ये शेर. फलक से टूट रही है कबा कयामतें, लेकिन किसी के लब पर भी हर्फे दवा नहीं कोई. और अजीब बस्ती है जिसमें कड़े जराइम पर, जजा तो आम है लेकिन सजा नहीं कोई.
1: वाह वाह वाह क्या कहने.
2: और जो सोचिए तो वफा एक हर्फ बेमफहूम, जो सोचिए तो वफा एक बेहर्फ के हर्फ बेमफहूम, जो दो जो देखिए तो बेवफा नहीं कोई. और फरात रूह पे पहरे यजीद जिस्म के हैं, ये वहमा है यहाँ करबला नहीं कोई. और शेर है, हर एक शख्स को दावा है यूं खुदाई का. हर एक शख्स को दावा है यूं खुदाई का कि उसके दयार का जैसे खुदा नहीं कोई. और सभी तो गुम्बदे बेदर हैं मैं कह रहे आरफ. सभी तो गुम्बदे बेदर में कह रहे आरफ, गिला हो यहाँ बोलता कोई नहीं.
1: बहुत ही खूबसूरत मेरे भाई, बहुत ही कमाल ही कर दिए. ब्यूटीफुल. जितनी भी मैं आपकी तारीफ करूँ कम है मेरे भाई. बहुत बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत
0: शुक्रिया.
1: वालेकुम सलाम. बहुत बहुत शुक्रिया. रब रखा. अल्लाह हाफिज. और यहाँ भी देखते हैं यहाँ पे कौन और कहाँ से. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
3: वालेकुम सलाम जी.
1: और बिस्मिल्लाह पापा जी, बिस्मिल्लाह. आप आए हो देर होगी, अभी एक महीने में क्या होगा पापा जी. बिस्मिल्लाह पापा जी.
3: कैसे हो मेरी जान.
1: मैं तो ठीक ठाक हूँ और टाइम बहुत ही कम है पापा जी. अच्छा, प्रोग्राम का
3: एक छोटी सी गजल सुना दूँ फिर अगले हफ्ते आऊँगा इंशाल्लाह.
1: जी जी जी जी जी जी
3: ठीक है
1: जी.
3: दोस्तों की नजर आपकी नजर करूँगा.
1: जी जी.
3: छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो.
1: वाह वाह.
3: छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो.
1: वाह.
3: जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो.
1: वाह वाह. वाह.
3: कोई रूठा हो तुमसे
1: वाह वाह,
3: इसके लिए इस अंदाज में खुश रहो.
1: वाह वाह.
3: जो लौट के नहीं आने वाले इन लम्हों की याद में खुश रहो।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वा, वा।
3: कल किसने देखा है
1: वाह वा।
3: अपने आज में खुश रहो
1: वाह वा।
3: खुशियों का इंतजार किस लिए दूसरों की मुस्कान में
1: हाय हाय हाय हाय
3: खुशियों का इंतजार किस लिए दूसरों की मुस्कान में खुश रहो
1: वाह
3: क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ को
1: वाह
3: कभी तो अपने आप से खुश रहो
1: वाह पापा जी वाह वाह
3: छोटी सी तो जिंदगी है हर हाल में खुश रहो
1: वाह पापा जी वाह
4: छोटी सी जिंदगी
1: खुश रहो वाह पापा जी बहुत खुश
4: पापा जी वाह छोटी सी जिंदगी खुश रहो वाह पापा जी वाह
1: वाह पापा जी वाह क्या कहें
4: A house explosion which has killed a man and a woman in Bristol has been described by police as a domestic-related incident. Officers were called early this morning with three people, including a child, taken to hospital.
1: बहुत बहुत शुक्रिया पापा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़. और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़
5: इंशा अल्लाह. Anyone else, and this is not being treated as a terror-related incident. However, they are carrying out inquiries at another address. It's around 3 miles away. That address is believed to be linked to the man who died.
4: The Transport Secretary says there's no current disruption to supplies of jet fuel as the government introduces measures to ensure there are still flights this summer. Airlines will be allowed to run fewer empty planes to reduce last-minute cancellations. Sports: Manchester United boss Michael Carrick says he's very affected by the news Sir Alex Ferguson was taken to hospital from Old Trafford. He hopes their 3-2 Premier League win over Liverpool will give the club's legendary former manager a boost. We're told the 84-year-old's conscious and has had precautionary checks. Tottenham climbed out of the bottom three with a 2-1 win at Aston Villa. Here's Spurs boss Roberto De Zerbi.
6: I'm really pleased. Really pleased for the performance with the ball, without the ball. Without the ball, we showed a great courage, and with the ball, great qualities.
4: In the Scottish Premiership, Celtic are only off the top on goal difference. It's following a 2-1 win at 10-man Hibs. While Italian Kimi Antonelli made Formula One history with victory at the Miami Grand Prix, the championship leader became the first driver to win his first three races from pole position. That's the latest. I'm Fader Silver.